नमस्कार। FM बैंड 103.7 MHz पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। आज बुधवार है, सक संवत 1948 के श्रावण मास की पहली तिथि, तदनुसार 22 जुलाई सन 2026। श्रोताओं, सुबह के 8:55 होने को है। हमारी आज की प्रसारण सभा इस मंगल ध्वनि के साथ आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 8:57 होने को है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे आज के शेष और विशेष कार्यक्रमों का विवरण और उसका प्रसारण समय।

0: साथियों, अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 9 बजे आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। उसके बाद दोपहर 1 बजे और शाम 6:30 बजे 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान। भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदना का समय रहेगा 9:20। 9:40 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम गोरबंद। श्रोताओं, 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत में गाने पुराने जमाने के और 10:30 पर आप सुनेंगे गाने नए तराने नए। शाम 5 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम युववाणी का। 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पणिहारे। 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत में प्यारे से नगमे। श्रोताओं, शाम 6:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम माटी के स्वर और शाम 7 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम खेतीबाड़ी का। सात बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा। 8:15 पर आप सुनेंगे लोक गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हैलो गोरबंद। साथियों, रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। तो ये थे हमारे आज के शेष और विशेष कार्यक्रमों का विवरण और उसका प्रसारण समय। सुबह के 9 बजे हैं। अब आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। प्रधान खनिजों के 141 ब्लॉकों की ई नीलामी के साथ राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर। राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के खिलाफ अपराधों में पिछले 2 वर्षों में 28% की कमी दर्ज की गई। और प्रदेश में फिर से सक्रिय हुए मॉनसून के कारण कई स्थानों पर बारिश। आगामी 4 से 5 दिनों में पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मानसरोवर से छोटी चौपड़ मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो यात्रा भी करेंगे। सीतापुरा स्थित मेट्रो यार्ड में प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक प्रस्तावित जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना का कॉरिडोर 41 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 36 स्टेशन प्रस्तावित है। ये

0: योजना केंद्र और राज्य सरकार की 50-50 प्रतिशत वित्तीय भागीदारी से राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के जरिए पूरी की जाएगी। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 4 जुलाई को किया था। प्रधान खनिजों के 141 ब्लॉकों की ई नीलामी के साथ राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर पहुंच गया है। खान एवं भू विज्ञान विभाग ने ये जानकारी दी। इनमें 105 माइनिंग लीज और 30 कंपोजिट लाइसेंस के लिए नीलामी शामिल है। विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के शुरुआती 3.5 महीनों में 14 खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी की है, जबकि पूरे साल में 55 ब्लॉकों की नीलामी का लक्ष्य रखा गया है। विभाग का कहना है कि ई नीलामी से वैध खनन को बढ़ावा मिला है और निवेश, रोजगार तथा राज्य के राजस्व में वृद्धि हुई है। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच और उपचार सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग प्रत्येक गर्भवती महिला की ट्रैकिंग कर रहा है। इस संबंध में कल जयपुर में स्वास्थ्य भवन में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य कर्मी नियुक्त किए गए हैं और उनकी नियमित निगरानी की जा रही है। जुलाई महीने की प्रस्तावित प्रसूति सूची में 7,000 से अधिक उच्च जोखिम वाली गर्भवतियां चिन्हित हुई हैं। इन महिलाओं की लगातार मॉनिटरिंग के साथ आवश्यक उपचार और चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: सीवियर एनीमिया केसेस को नॉर्मल केसेस में, लो एनीमिया केसेस में क्या क्या मेडिकल इंटरवेंशन से पॉसिबल है, SMS फैकल्टी भी था। जुलाई के प्रेगनेंसी जो ड्यू है महिलाओं की, उनके ऊपर विशेष फोकस है और हर महिला के साथ जहां जहां रेफरल हॉस्पिटल्स का मैपिंग भी कर दिया गया है और बहुत अच्छा है, सकारात्मक है। 54,000 आशा, 17,000 ANMs, सारे मेडिकल कॉलेजेस, CHCs, PHCs इस बैठक में 4 दिन से मेरे साथ बैठे थे और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रहा है और सभी एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं कंटिन्यूम केयर के।
0: प्रदेश के सभी जिलों में शहरी और ग्रामीण सेवा फॉलो अप कैंप शुरू हो गए हैं। इन शिविरों में आमजन के लंबित प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। सवाई माधोपुर में पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोगों ने पट्टे, नामांतरण, पेंशन, जन्म मृत्यु और विवाह पंजीकरण सहित विभिन्न कार्यों का लाभ लिया। नगर परिषद प्रशासन ने बताया कि राजकीय अवकाश को छोड़कर ये शिविर नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। वहीं पाली में भी फॉलो अप शिविरों के माध्यम से आमजन की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। अधिकारियों को सभी प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने और शिविरों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के विरुद्ध अत्याचार के मामलों में कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2025 में ऐसे मामलों में लगभग 28% की कमी आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक में इन आंकड़ों की समीक्षा की। श्री शर्मा ने अधिकारियों को SC/ST वर्ग के विरुद्ध अपराध करने वालों पर सख्त कार्रवाई, संवेदनशील मामलों की त्वरित जांच और पीड़ितों को समय पर आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज लगभग 68% मामलों का निस्तारण अब 60 दिन के अंदर किया जा रहा है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए करोड़ों रुपए के साइबर घोटाले के मामले में डीडवाना पुलिस मुख्य आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्यारेलाल शिवरान ने बताया कि इस मामले के मुख्य आरोपी इमरान अली से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी और उसका अंतर्राज्यीय गिरोह राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी सरकारी छात्रवृत्ति और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर साइबर फर्जीवाड़ा कर चुका है। ये गिरोह दिव्यांगजन और गर्भवती महिलाओं के लिए संचालित सरकारी पोर्टलों पर फर्जी लाभार्थी तैयार कर योजनाओं का दुरुपयोग भी करता था।
2: इमरान नाम का व्यक्ति है जो इनका मास्टरमाइंड है, ये लोग ऑनलाइन फ्रॉड करके और सभी प्रकार की जो छात्रवृत्तियां हैं, चाहे ये अल्पसंख्यक हो या दूसरी तरीके की है, उसमें ऑनलाइन सेन लगा के और फ्रॉड करके और वो छात्रवृत्ति का पैसा उठा रहे थे। तो इसमें इमरान को भी हमने गिरफ्तार किया है, पूर्व में 3 गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इसमें जितने भी अपराधी और इन्वॉल्व हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, उन सबको गिरफ्तार करके प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।
0: राज्य में साइबर ठगी की रकम तुरंत रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन और बैंकों के बीच समन्वय और तेज किया जाएगा। इसे लेकर जयपुर में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की साइबर समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि शिकायत मिलने और बैंक खाते पर रोक लगाने के बीच का समय न्यूनतम होना चाहिए ताकि ठगी की राशि समय रहते रोकी जा सके। उन्होंने सभी बैंकों के प्रतिनिधियों को 1930 कॉल सेंटर की कार्यप्रणाली समझने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने संदिग्ध बैंक खातों की निगरानी बढ़ाने और बैंकों तथा साइबर पुलिस के बीच समन्वय मजबूत करने पर जोर दिया। बैठक में 190 चिन्हित बैंक शाखाओं पर AI आधारित निगरानी व्यवस्था करने पर भी सहमति बनी। प्रदेश में एक बार फिर से सक्रिय हुए मॉनसून के कारण कई स्थानों पर बरसात हो रही है। अगले 4 से 5 दिन तक बारिश की गतिविधियां जारी रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार इस दौरान पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। आज भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में मध्यम तो कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है। जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान पिलानी में 36 मिलीमीटर, कोटा में 28.6 और चूरू में 14 मिलीमीटर बारिश हुई। पाली में कल शाम से शुरू हुआ बारिश का दौर आज भी जारी है। बारा जिले में कल मूसलाधार बरसात हुई जिससे लोगों को उमस से थोड़ी राहत मिली।
3: लंबे इंतजार के बाद मंगलवार को बारा जिला मुख्यालय समेत संपूर्ण जिले में जोरदार बारिश हुई। छिपाबड़ो क्षेत्र में सुबह से शाम 4 बजे तक 5 इंच बारिश दर्ज की गई, जिसके चलते अंधेरी नदी में उफान आ गया। वहीं शाहबाद क्षेत्र में अच्छी बारिश होने से सिरसा नदी भी उफान पर रही। अच्छी बारिश होने से खेतों में सूखती फसलों को भी जीवन दान मिल गया, तो वहीं तापमान में गिरावट होने से आम जन को भी भीषण गर्मी व उमस से राहत मिली। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार, बारा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। प्रधान खनिजों के 141 ब्लॉकों की ई नीलामी के साथ राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर। राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के खिलाफ अपराधों में पिछले 2 वर्षों में 28% की कमी दर्ज की गई। और प्रदेश में फिर से सक्रिय हुए मॉनसून के कारण कई स्थानों पर बारिश, आगामी 4 से 5 दिनों में पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM में 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 9:10 में अब आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान।

राम लक्ष्मण को छोड़ जब सीता को भी किसी भांति गंगा तट से लौटा लाने की मंत्री सुमंत्र की सभी युक्तियां निष्फल रहीं, तो उन्होंने रथ को अयोध्या की ओर हांका। राम से बिछुड़ते हुए रथ में जुटे अश्वों की

हिनहिनाहट रूपी विकलता देख पास खड़ा निषाद समूह सिर धुन-धुन कर पछताने लगा। गंगा पार करने के लिए नाव की आवश्यकता थी। राम ने नाव मांगी किंतु केवट नाव नहीं लाता। कहता है, मैंने तुम्हारा भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के बारे में सभी कहते हैं कि वो मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। यदि उसकी नाव भी मुनि पत्नी की भांति उड़ गई तो उसके परिवार की तो रोजी मारी जाएगी। लक्ष्मण यदि उसे तीर भी मार दें तो भी वो बिना राम के चरण पखारे उन्हें नाव पर नहीं चढ़ाएगा। कैसा विलक्षण दृश्य है! एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं। जिन्होंने वामनावतार लेकर जगत को तीन पग से भी छोटा कर दिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र गंगा पार कराने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। और फिर गंगा पार ले जाकर वही केवट उतराई नहीं लेता। कहता है, नाथ आज मैं कहा न पावा।

श्रोताओं, अभी आपने सुना हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 9:20 में अब आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, जिसमें आप सुनेंगे अनूप जलोटा को।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़े कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं, ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

श्रोता हूँ, अभी आपने सुना भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, जिसमें आपने सुना अनूप जलोटा को। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, सुबह के 9:40 में। अब आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम गौरवंद।

श्रोता हूँ, अभी आपने सुने लोक संगीत का कार्यक्रम गौरबंद। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM 103.7 MHz पर। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने पुराने जमाने के। साथियों, शुरुआत करते हैं फिल्म ज्वेल थीप से। आवाज़ किशोर कुमार की है, संगीत SD बर्मन का और गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: साथियों, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जूटा कहीं कहां से। आवाज किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की है। संगीत आर डी बर्मन का और गीत लिखा है गुलशन बावरा ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने पुराने जमाने के। कार्यक्रम का

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म सागिर्द से। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म शक्ति से। संगीत आर डी बर्मन का और गीत आनंद बख्शी का।

श्रोताओं, अभी आपने सुने कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने पुराने जमाने के। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM 103.7 MHz पर। श्रोताओं, सुबह के 10:30 होने को है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने नए तराने नए। साथियों, शुरुआत करते हैं फिल्म जीरो से। ज्योति नोरन, राहत फतेह अली खान और अतमज फरीदी की आवाज़ में फिल्म जीरो का ये प्यारा सा नगमा। संगीत नुसरत फ़तेह अली खान और तनिष्क बागची का है और गीत लिखा है ख्वाजा परवेज़ ने।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: श्रोताओं, फिल्म संगीत का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं तुलसी कुमार की आवाज़ में फिल्म एक पहली लीला से। संगीत अमाल मलिका और गीत लिखा है कुमार ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं वाजिद की आवाज़ में फिल्म सत्यमेव जयते से। संगीत साजिद वाजिद का और गीत लिखा है दानिश सबरी ने।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने नए तराने नए। कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं पवनी पांडे की आवाज़ में फिल्म रईस से।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल से।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं हिमेश रेशमिया और हनी सिंह की आवाज़ में फिल्म खिलाड़ी 786 से। संगीत हिमेश रेशमिया का और गीत लिखा है साबिर अहमद ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने नए तराने नए। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM बैंड 103.7 MHz पर। सुबह के 11 बजे अब आपको ले चलते हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरली धड़कन की ओर। सुनवाते हैं विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

हेमा सरदेसाई की आवाज में ये गीत आपको सुनवाते हैं, समीर के बोल, जवाहर वत्तल का संगीत और एल्बम का नाम सजना।

मिताली सिंह की आवाज में ये गजल आइए सुनते हैं। शब्दकार इब्राहिम अश्क, संगीत भूपिंदर सिंह का, और एल्बम कुछ इंतजार है।

0: वसुंधरा की आवाज में पीयूष मिश्रा का लिखा हुआ गाना, प्रवीण मणि का संगीत एल्बम मेरी जान।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
0: एक और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: ये है हरिहरन की आवाज, शब्दकार ताहिर फराज, संगीत हरिहरन का एल्बम जश्न।

दलेर मेहंदी की आवाज में ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। दलेर मेहंदी का ये संगीत है और गीत है दलेर मेहंदी और संजीव आनंद का।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। अब मधुश्री की आवाज में जावेद अख्तर का लिखा हुआ गाना, राजेश रोशन का संगीत एल्बम मोक्ष।

अगली जो आवाजें हैं जगजीत सिंह और अलका याग्निक की आवाजें हैं, बोल निदा फाजली के, जगजीत सिंह का संगीत और एल्बम किसका चेहरा।

रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं पामेला जैन की आवाज में मनोज दर्पण का लिखा हुआ ये गाना, बबली का संगीत, एल्बम मेरा घूंघटा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्के में एनएचपीसी की तीस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में हुई दुखद दुर्घटना में जान मान की हानि पर शोक व्यक्त किया है। श्री राधाकृष्णन ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये उपलब्धि पर्यावरण अनुकूल परिवहन और मानवता के हित में वैकल्पिक हरित ऊर्जा के उपयोग की दिशा में भारत की प्रगति को और मजबूत करेगी। इसके बाद सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवान को बेड़े में शामिल किया। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
1: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैड कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ

0: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भागीदारी की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने हिंद प्रशांत भू राजनीतिक परिदृश्य की समीक्षा की और हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत आसियान को केंद्र में रखते हुए स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति वचनबद्ध है। इस बैठक से अलग डॉक्टर जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। भारत ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के तहत कल चंडीगढ़ में पारंपरिक पूरक और एकीकृत चिकित्सा पर ब्रिक्स सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की। ये सम्मेलन चंडीगढ़ में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्यक्रम के 4 दिवसीय व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा था। जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। तीर्थयात्रियों को यात्रा फिर शुरू होने के संबंध में आधिकारिक माध्यमों से अपडेट रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे लता मंगेशकर और मुकेश के गाए कुछ दो गाने। वीर दुर्गादास फिल्म का गाना सबसे पहले आपको सुनवाते हैं भरत व्यास के बोल, एस एन त्रिपाठी का संगीत।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में अब आपको सुनवाते हैं शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म का नाम उजाला।

0: हाथ रख कर वो जा रहे हैं देखो दो प्यार करने वाले दुनिया वालों से दूर करने वाले।
1: यादों की महफिल कार्यक्रम के बाकी गाने आप सुनेंगे एक ब्रेक के बाद।

0: हम हाजिर हैं यादों की महफिल।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए,
5: लीजिए अब सुनिए शोर फिल्म का गाना, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाजों में संतोष आनंद का लिखा हुआ गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गाना सावन फिल्म से है, प्रेम धवन के बोल, संगीत है हंसराज बहल का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश के गाए कुछ युगल गाने। पूनम की रात, इस फिल्म का गाना, शैलेंद्र का लिखा हुआ, सलील चौधरी का संगीत।

आज के यादों की महफिल इस कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना राज फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, कमर जलाल आबादी के बोल, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरली धड़कन। FM में 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। दोपहर के 1 बजे अब आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: अजमेर केंद्र है, अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की परियोजना का आज भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत कर रहे हैं। ये परियोजना प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक प्रस्तावित है। लगभग 41 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 36 मेट्रो स्टेशन बनेंगे। ये परियोजना केंद्र और राज्य सरकार की 50-50% वित्तीय भागीदारी से राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के माध्यम से पूरी की जाएगी। इस परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को किया था। प्रदेश के कई सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अन्य संस्थानों के नए नामों को मंजूरी दी गई है। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में जयपुर में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक में हनुमानगढ़ मेडिकल कॉलेज का नाम बलिदानी योद्धा मेजर विकास भांबू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, श्रीगंगानगर मेडिकल कॉलेज का नाम महाराजा गंगा सिंह राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पाली मेडिकल कॉलेज का नाम महाराणा प्रताप राजकीय मेडिकल कॉलेज और अलवर मेडिकल कॉलेज का नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय मेडिकल कॉलेज करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा अजमेर के कोटड़ा स्थित राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय और बारा के छबड़ा स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय के नए नामकरण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। श्रीगंगानगर में अंगदान महादान जागरूकता अभियान के तहत राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला चिकित्सालय में आज अंगदान जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और राजकीय सामान्य नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र के छात्र छात्राओं ने भाग लेकर आम जन को इसके महत्व के बारे में जानकारी दी। अभियान के अंतर्गत अंगदान विषय पर पोस्टर और रंगोली प्रतियोगिताएं भी रखी गई। विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से अंगदान को मानव सेवा और जीवनदान का प्रभावी माध्यम बताया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार की परिवर्तन योजना के तहत भरतपुर में 1311 पुराने वाहनों की पहचान की गई है। इनमें 1011 ट्रक और 300 बसें शामिल हैं। योजना का उद्देश्य पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के स्थान पर BS6, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। योजना के तहत वाहन मालिक स्क्रैपिंग सेंटर पर पुराने वाहन का निस्तारण कर नया अनुपालक वाहन खरीदने पर विभिन्न वित्तीय रियायतों का लाभ ले सकेंगे। इनमें नए वाहन पर मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क में 100% छूट और पुराने वाहन के प्रतिस्थापन पर 50% तक कर छूट का प्रावधान किया गया है। राज्य पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने पिछले 9 महीनों में विभिन्न राज्यों से 80 इनामी मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों पर कुल 21,28,000 रुपए का इनाम घोषित था। ये कार्रवाई राजस्थान सहित 8 राज्यों में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान की गई। इनमें कई ऐसे आरोपी भी शामिल हैं जो वर्षों से फरार चल रहे थे। पुलिस ने बताया कि अब नार्को 25 सूची में शामिल बड़े तस्करों के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आमजन से भी मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी सूचना पुलिस को देने की अपील की गई है। स्क्वैश में भारत की अनाहत सिंह और आर्यवीर दीवान ने विश्व जूनियर व्यक्तिगत चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। महिला वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त अनाहत ने राउंड ऑफ 32 में हांगकांग की पुई यिन चोलेलो को सीधे गेमों में हराया। अनाहत का अगला मुकाबला मलेशिया की डॉयस ये सानली से होगा। आर्यवीर दीवान ने राउंड ऑफ 32 में दक्षिण अफ्रीका के जोसेफ फीस्ट को सीधे गेमों में आसानी से हराया और अब उनका अगला मुकाबला अमेरिका के यासिन शलाबी से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 24 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1:05 में अब आपको फिर से ले चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरली धड़कन की ओर। सुनवाते हैं विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582401468 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युवावाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

क्या आपसे कभी किसी ने कहा है कि जब मुश्किल हालात हो तब मेरे पास आना और मेरे पास वो सुकून मिलेगा जो तुम ढूंढ रहे हो? ऐसी ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई आवाज आपके पास है तो उसे हमें बताइए। मनोज कुमार और सायरा बानो पर फिल्माया गया ये गाना है। एक साथी की ये बात है कि निराशा के इन घने बादलों के बीच जब जिंदगी से भरोसा उठने लगता है तब रेडियो के किसी कोने से एक बेहद दर्द भरी रूहानी और मखमली आवाज गूंजती है। वो आवाज हमारे टूटते हौसले को संभालती है और गुजरे जमाने की भूली हुई यादों को ताजा कर देती है। भले ही ये दुनिया बड़ी है संगदिल, लेकिन उस आवाज का जादू हर गम को सहने की ताकत देता है। वो दर्द के बादशाह और जज्बातों के जादूगर कोई और नहीं, हमारे अजीज मुकेश जी हैं, जिनकी आवाज ने हर तन्हा दिल को जीने का सहारा दिया है। एक साथी ने ये बात लिखी कि आज की इबारत के कण कण में मुकेश जी समाए हुए नजर आ रहे हैं। दर्द भरे करुण रस से परिपूर्ण गीतों के साथ मुकेश जी के

कुछ और भी गीत हमें सुनने को मिलेंगे। जी हाँ, गीत कई सारे हैं। और इसके पहले जो कार्यक्रम था यादों की महफिल, उस कार्यक्रम में हमने आपको लता मंगेशकर और मुकेश के गाए युगल गीत सुनवाए, बहुत सारे जिनमें बहुत हंसते खेलते गीत थे। लेकिन इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे गीत हैं जो हमारे दर्द से जुड़े हुए हैं, या हमारे दिल के, या हमारे समय के बहुत मुश्किल हालातों से जुड़े हुए जो गीत हैं वो आपको सुनाई देंगे। चलिए, अगला गाना विश्वास फिल्म का गाना, मुकेश जी की आवाज, गुलशन बावरा के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, जितेंद्र और अपर्णा सेन पर फिल्माया गया ये गाना।

हमारे एक साथी ने ये बात लिखी कि बचपन में माता पिता, बाद में वाइफ, और सूरत में जब 2006 में पूर आया था, यानी कि बाढ़ जब आई थी, तब मेरे अंकल यानी कि मेरे जो काका हैं, उन्होंने मुझे कहा था मैं हूं ना। एक साथी की ये बात है कि आज जो इबारत है इंसान के भीतर छिपे उस असीम धैर्य और जज्बे को सलाम करती है जो सबसे गहरे अंधेरे में उम्मीद की लौ जलाए रखता है। ये रूहानी और जादुई आवाज सदी के महान गायक मुकेश जी की है, जिनके गाए गीत जाऊं कहां बताए दिल की गूंज, इस इबारत के हर लफ्ज को महसूस होती है। जब रिश्तों के धागे टूट जाते हैं और अपने ही पराए होने लगते हैं, तब मुकेश जी की आवाज किसी ठंडी छांव की तरह हमारा हाथ थाम लेती है। उनकी गायकी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि केवल सुर नहीं लगाते थे, बल्कि इंसान के एकाकीपन और इसके उसके भीतर चल रहे संघर्ष को अपनी आवाज में जी लेते थे। उनका वो सादगी भरा, दर्द से भीगा अंदाज भरोसा दिलाता है कि बिखर जाना अंत नहीं है, ठोकरे खाकर फिर से खड़े होना जिंदगी का असली नाम है। बहुत अच्छी बात है आपकी, धन्यवाद आपका। और हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं, देखिए कठिन समय हर व्यक्ति के जीवन में आता है, विपरीत परिस्थितियां हर व्यक्ति के जीवन में आती है, लेकिन अपने आप को संभाले रखना बहुत मुश्किल कार्य होता है। आप अपने आप को किस तरह से संभालते हैं? क्या कहते हैं आप अपने दिल को, अपने मन को किस तरह समझाते हैं? और ये भी हमने आपसे पूछा है कि कौन सी आवाजें हैं, कौन सी व्यक्ति हैं जिन्होंने आपसे कहा है कि हाँ मैं हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये हमारे सवाल हैं, दो सवाल हैं, बताइए इसके बारे में। चलिए अगला गाना संगम फिल्म से है, शंकर जयकिशन का संगीत है, और इसमें तीन कलाकार हमें दिखाई देते हैं। तो राज कपूर तो हैं ही, उनके अलावा दो और कलाकार हैं, वो कौन कलाकार हैं ये आप हमें बताइए।

राज कपूर, राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला पर फिल्माया गया ये गाना है। एक साथी लिख रहे हमारे कि जब मैंने कक्षा 10वीं परीक्षा दी थी, लास्ट पेपर के दिन पापा का देहांत हो गया था। मेरे पापा निरंतर विविध भारती सुना करते थे और ऑल इंडिया रेडियो भी सुना करते थे। आज लगभग 30 वर्ष हो गए मैं भी निरंतर रूप से विविध भारती सुनता हूँ और जब कभी परेशानी में होता हूँ तब विविध भारती में एक हिम्मत दिलाने वाला गाना बज जाता है और कहीं से ये सुनाई देता है कि चिंता मत करो मैं हूं ना। एक साथी लिख रहे हैं कि हमारे पास मुकेश जी के गाए गीतों की किताब हुआ करती थी जिसमें से हमने सारे गीत याद कर लिए थे, तो उनके तो सारे गीत ही हमारे फेवरेट हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि चांदी की दीवार ने तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया, पैसे का महत्व धन की महिमा बखान करता, यह गीत बता रहा है कि प्रेम में भी पैसे ने सेंध मारी की है, पैसे की खातिर लोग कैसे दिल तोड़ देते हैं और अलग दुनिया बसा लेते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि मुकेश जी के गाने की बात है तो दिल की गहराइयों में समा जाता है वो जो गीत है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि मुकेश जी का व्यक्तित्व उनके गायन की तरह ही अत्यंत सरल, विनम्र और सहज था। वे प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचने के बाद भी जमीन से जुड़े रहे, उनके उनमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं था। वे सहकर्मियों, संगीतकारों और अपने प्रशंसकों के प्रति आत्मीय व्यवहार रखते थे। उनकी सादगी और विनम्रता ही उनके व्यक्तित्व को और अधिक महान बनाती है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, देवर फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। आनंद बख्शी के बोल हैं, धर्मेंद्र शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया ये गाना है। संगीत किसका है आपको बताना है।

देवर फिल्म का ये गाना, इस गाने को संगीतबद्ध किया रोशन ने। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि जब हमारे साथी हमें छोड़कर चले गए, हमारी तो मानो दुनिया ही खत्म हो गई। तब सहारा दिया हमारे कई अपनों ने, जिसमें सबसे ऊपर नाम हमारे पापा का है, उसके बाद बच्चे और कुछ प्यारे से दोस्त। सबसे ज्यादा सहारा मिला विविध भारती का, जिसके साथ हमारा ज्यादा से ज्यादा समय बीता और गीत जो शुरू से शामिल थे हमारी जिंदगी में। एक हमारे जो साथी हैं वो ये बात लिख रहे हैं कि मुकेश की आवाज़ का जादू बयां करते हुए कुछ प्रशंसक पंक्तियां लिख रहा हूं। दर्द में डूबी वो आवाज़ जो रूह को छू जाए, मुकेश के गीतों में सारा जहां समा जाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए कि धुन हर दिल को सुकून और गहराई दे जाए। धन्यवाद आपका। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। दिल ने पुकारा, इस फिल्म का गाना, इन देवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि मैं कभी मुकेश जी के गाने पहले सुनता नहीं था, लेकिन जब गाने सुने तो पता चला कि इन लोगों को या इन गानों को लेजेंड क्यों कहते हैं। इन लोगों के गाए गाने सीधे दिल की गहराई में उतरते हैं। और एक गाना जो हमने देवर फिल्म का सुनवाया था, बहारों ने मेरा चमन लूट के, तो एक साथी हमारी ये लिख रहे हैं कि वाह क्या बोल है, किसी ने चलो दुश्मनी की मगर इसे दोस्ती का नाम क्यों दे दिया, अप्रतिम गाना है। और इसी गाने के बारे में हमारे साथी ने ये भी लिखा है कि देवर फिल्म की ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है, ये इंसानी रिश्तों की मजबूरी, किस्मत के क्रूर खेल और निस्वार्थ प्रेम के बदले मिले धोखे को दर्शाता है। ये गाना सिखाता है कि जब इंसान के पास अपनी बेबसी जाहिर करने का कोई रास्ता नहीं बचता तो वो संगीत का सहारा लेता है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मुकेश जी 1972 में हमारे शहर कटक में आए थे, बाराबाती स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ था, नितिन मुकेश छोटे थे वो भी आए थे, और गाना बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं ये गाना उन्होंने गाया था, और ये बातें इन्हें याद आ रही है। एक साथी लिख रहे हैं कि मुकेश जी की आवाज यानी सादगी, सच्चाई और दर्द का ऐसा संगम जो सीधे रूह को छू जाए। उन्हें विरह के गीतों का बेताज बादशाह यूं ही नहीं कहा जाता, बिना किसी शास्त्रीय तामझाम के भी उनकी गायकी सीधे दिल में उतर जाती है। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं छोटी बहन फिल्म का गाना। मुकेश की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कौन से कलाकार पर फिल्माया गया है ये आपको बताना है।

0: बस कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहां से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की। ये कभी

0: हाथ से गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया? झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
1: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशरम, शेखर, मेरे पास वक्त नहीं है कुछ बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
0: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
1: होता है तो होने दो।

0: मुझे न कोई मंजिल, जाऊं कहां बताए दिल।
1: रहमान पर फिल्माया गया ये गाना है। एक हमारे साथी की बात है कि मुकेश की गायकी कोई दिखावा या बनावटीपन नहीं था, उनके हर गीत में शब्दों का उच्चारण इतना साफ और संजीदा होता था कि हर शेर एक कविता की तरह कानों में रस घोलता था। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि इन गीतों को सुनते सुनते बड़े हुए हैं, एकदम अंदर तक धसे हुए हैं दिल में ये सारे गाने। हम लोग के घर में लॉन्ग प्लेयर था रिकॉर्ड, मुकेश जी का हर तरह के गाने का कलेक्शन हुआ था होता था, बहुत अच्छे लगते हैं उनके ये गाने। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि राज कपूर के रूप में मुकेश को सिनेमा का बेहतरीन साथी मिला, आवारा हूँ या मेरा जूता है जापानी जैसे गीतों में उन्होंने आम आदमी, उसके संघर्ष और उसकी जिंदा दिली को अपनी गायकी से एक मुकम्मल अंदाजे बयां दिया। राज कपूर ने शायद इसीलिए कहा था कि मैंने अपनी आवाज खो दी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हरियाली और रास्ता इस फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। किसने लिखा है ये गाना, ये आप हमें बताइए।

हरियाली और रास्ता फिल्म का ये गीत शैलेंद्र का लिखा हुआ है। आपने सही जवाब हमें लिख करके भेज दिए हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि जिंदगी की राह में कभी ठोकरें मिलती है, कभी बहारें, कभी दोस्त साथ छोड़ जाते हैं, तो कभी वक्त वफा करना भूल जाता है। ऐसे में कुछ आवाज़ें सिर्फ कानों तक नहीं, रूह तक पहुंचती है। वे हमारे दर्द को शब्द देती है, हमारी यादों को सहलाती है और अंधेरे में उम्मीद का दिया जलाती है। ऐसी ही ये आवाज़ें। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में पार्श्व गायक मुकेश चंद्र माथुर जी एक ऐसी आवाज़ का नाम है जो सीधे दिल में उतर जाती है। द वॉइस ऑफ द मिलेनियम और द मैन विद द गोल्डन वॉइस कहे जाने वाले मुकेश जी की आवाज़ में जो दर्द, सादगी और एक अनूठी कसक थी, मुकेश जी की गायकी की सबसे बड़ी खासियत उनकी आवाज का ठहराव और उर्दू की बेहतरीन अदायगी थी। मुकेश जी अपने गीतों में जीवन के दर्शन, प्यार की तड़प और आशावादी दृष्टिकोण को बहुत खूबसूरती से उन्होंने पिरोया था। चलिए, संजोग फिल्म का गाना, संगीत किसका है यह आपको बताना है। दो कलाकार हैं, प्रदीप कुमार और शुभा खोटे, उन पर फिल्माया गया ये गाना है।

0: मदन मोहन का संग।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: जिनको रातों को ख्यालों में वो मुझको आपको मिल ना सके, सुबह के उजालों में कुछ आवाज़ ऐसी रूहानी होती है ढूंढने से नहीं मिलती, गानों के माध्यम से कानों से होकर सीधे हमारे दिल में उतर जाती है। वो आवाज़ मुकेश की, एक साथी हमारी लिख रही कि क्या आवाज़ थी वो, जब गम के साए घेरते तो चुपके से कहीं दूर रेडियो से झड़ती वो आवाज़ हमें अपने आगोश में ले लेती और हम कुछ देर के लिए गम भूल जाते और सब जब सुख के फूल बिखरते हैं तो ये आवाज हमें अपने साथ झूला झुलाती। न जाने कितनी उपमाओं से सजी थी मुकेश जी की आवाज, जितना लिखूं कम है। आकाश में जितने तारे हैं, नदी में जितना पानी है, वैसे ही गायकी की दुनिया में मुकेश की उपस्थिति दर्ज है। सदियां बीत जाएंगी मगर मुकेश जी की आवाज का जादू कम न होगा। चलिए अनीता फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप बताइए।

0: मनोज कुमार और साधना पर फिल्म आया गया ये गाना। एक साथी की ये बात है कि आज की इबारत मानव जीवन के सबसे गहरे दर्शन संग।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।
0: इसका है आपको बताना है।

दिल को सीधे लगती है मुकेश जी की आवाज, बिल्कुल सीधी सादी सादगी सच्चाई भरी आवाज। कौन भला न होगा जो मुकेश जी की आवाज पर मोहित ना हो। एक साथी लिख रहे हैं कि हर इंसान की असली पहचान उसके जीवन की कठिन परिस्थितियों और चुनौती भरे समय उसके जीवन का हिस्सा होती है, कोई भी इससे अछूता नहीं रहता। विपरीत परिस्थितियों में भी असली पहचान व्यक्ति के धैर्य और संयम से होती है, इसमें सफलता मिले या असफलता उसकी परवाह नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की बातें इन्होंने ने लिखी है। समय कम है, चलिए एक गाना आपको सुनवाते हैं। बंबई का बाबू इस फिल्म का ये गाना है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार कौन है ये आपको बताना है।

अब हमें भी चलना होगा। समय जो है हमें अब इजाजत नहीं दे रहा है कि कुछ और बातें की जाए या और गाने सुनवाए जाए। ये जो गाना आपने सुना, इस फिल्म के मुख्य कलाकार देव आनंद और सुचित्रा सेन हैं, और आपने बहुत प्यारी बातें फेसबुक पर लिख करके भेजी, इसके लिए धन्यवाद। और अब मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

नमस्कार, मैं हूं यूनुस खान। आज 22 जुलाई है, कैलेंडर के पन्ने पर एक आम सी तारीख, लेकिन इतिहास के झरोखों में झांकें तो हमारे देश के लिए ये बहुत गौरवशाली और महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि आज ही के दिन 1947 में भारत की संविधान सभा ने हमारे तिरंगे को आधिकारिक रूप से स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया था। देश के आजाद होने के बाद संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया था। इसमें तीन रंग थे, ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा। सफेद रंग की पट्टी में नीले रंग से अशोक चक्र बना था, जिसमें 24 तीलियां थीं जो धर्म और कानून का प्रतिनिधित्व करती थीं। राष्ट्रध्वज तिरंगे का वही स्वरूप आज भी मौजूद है और ये तिरंगा हमारे गौरव का प्रतीक है।

इतिहास के गलियारों में भटकें तो पता चलता है कि सबसे पहले देश के राष्ट्रीय ध्वज की पेशकश 1921 में महात्मा गांधी ने की थी, जिसमें बापू ने दो रंग के झंडे को राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात कही थी। इस झंडे को मछलीपट्टनम के पिंगली वेंकैया ने बनाया था। दो रंगों में लाल रंग हिंदू समुदाय और हरा रंग मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करता था। बीच में था गांधी जी का चरखा, जो इस बात का प्रमाण था कि भारत का झंडा अपने देश में बने कपड़े से बना है। धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होते चले गए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिंगली वेंकैया ने इस झंडे को डिजाइन किया था। 1923 में पहली बार इस तिरंगे का प्रयोग हुआ था नागपुर में एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में। इस दौरान हजारों लोगों ने इस ध्वज को अपने हाथों में थामा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे विश्व युद्ध में इस ध्वज का इस्तेमाल

किया था। आज हम अपने घरों और दफ्तरों में तिरंगा फहरा सकते हैं, इस बात की अनुमति है। तिरंगा भारत के गौरव का प्रतीक है और हम इस तिरंगे को सलाम करते हैं।

साल 2002 से इंडियन फ्लैग कोड में बदलाव किए गए हैं। अब कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी दिन अपने घर, दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर में सम्मान के साथ राष्ट्रध्वज फहरा सकता है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस उपलक्ष्य में देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया और लोगों ने घर घर में तिरंगा फहराया और अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, जिनकी कुर्बानी की वजह से आज हम आजाद हैं। जब किसी खेल में भारत के खिलाड़ी जीतते हैं तो वो तिरंगा उड़ते हैं या पूरे मैदान में तिरंगा लहराते हुए दौड़ते हैं। ये भारत के गर्व को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। हम सब चाहते हैं कि हम ऐसे काम करें जिससे देश का मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाए और हम तिरंगा लहरा सकें।

0: ध्वज दिवस यानी फ्लैग डे पर केंद्रित थी आज की त्रिवेणी। हर साल 22 जुलाई को यह दिन मनाया जाता है। अब यूनुस खान को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को। बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत आईएनएस मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि बहस जितनी भी लंबी चले उतनी लंबी होनी चाहिए और यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस तरह की बाधाएं खड़ी की जिससे प्रतीत होता है कि वे संवाद में शामिल नहीं होना चाहते।
1: देखिए, जो अपोजिशन पार्टी बोलना चाहते हैं तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है।
2: संवैधानिक पद पे रह के संविधान की गरिमा को तार तार किया, उनका ये आचरण बहुत ही खतरनाक मंशा से वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते हैं।
0: भाजपा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विद्यार्थियों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने युवा नेतृत्व वाले विकास के मंत्र को विकसित भारत को मजबूत करने की नींव बनाया है।
3: आप सब जानते हैं कि नीट जैसा एग्जाम जिसमें 20 से 22 लाख कैंडिडेट्स अपियर होते हैं उसकी तैयारी में 6 महीने लगते हैं, लेकिन मात्र 37 डेज में नीट का री एग्जामिनेशन किया गया और रिजल्ट भी मात्र 25 दिन में आप सभी के सामने ला खड़ा कर दिया गया। जो री एग्जामिनेशन हुई उसमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करा गया ताकि कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का लूप होल हो उसको कर्ब किया जाए, उसको प्लग इन किया जाए।
0: सुश्री स्वराज ने बताया कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पेपर लीक के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब वे सभी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। इससे पहले जब लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू करने के लिए एकत्रित हुई तो अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के समय को लेकर सभी को एकमत होना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर श्री बिड़ला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो विपक्ष ने नीट मामले पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये सदस्यों का अधिकार है।
4: आजादी के 50 साल बाद सदन ने यह संकल्प लिया था कि किसी भी हालत में क्वेश्चन आवर और जीरो आवर चलाएंगे। ये मेंबर्स के आवर है। आपके प्रश्नों को उत्तर तैयार करने में कितना श्रम जाता है और जनता का धन जाता है, आप इसकी कल्पना करिए। आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, प्लीज अपनी सीट पर बैठिए और क्वेश्चन आवर चलने दीजिए।
0: बार बार अपील करने के बावजूद विपक्षी सदस्यों ने उपसभापति की सलाह पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सदन को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार आईएनएस कदम्बा नौसेना बेस पर माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। आईएनएस मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
5: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आईएएसवी त्रिवेणी पर सवार होकर पहली बार सभी सेनाओं की महिला सदस्य समुद्री अभियान समुद्र प्रदक्षिणा ने न केवल पृथ्वी का चक्कर लगाया बल्कि इस असाधारण उपलब्धि से करोड़ों भारतीयों को गौरवान्वित भी किया। उन्होंने आईएएसवी त्रिवेणी को आत्मनिर्भर भारत और भारत के नवाचार क्षमताओं और आत्मविश्वास का जीवंत उदाहरण बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।

0: एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की।
1: In this era of volatility and disruption,
2: उथल पुथल के इस दौर में आपूर्ति श्रृंखला पर सबसे अधिक दबाव दिख रहा है। ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है। वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही भारत और आसियान दोनों ही अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से भरे हैं, इसलिए चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें मौकों पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए।
0: बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि बैठक में भारतीय अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अमरीका के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान को हुरमूज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण की अनुमति देना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नौवहन की स्वतंत्रता के लिए एक बेहद खतरनाक कदम होगा। डॉ. जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान फिलीपींस, रूस और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। 16 जिलों में पानी भरा हुआ है। राज्य में बाढ़ में 21 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या 31 हो गई है।
3: आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में 872 गांव अभी भी जलमग्न हैं और 5,64,000 से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 24,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। कामरूप और कामरूप महानगर जिलों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जहां 4,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। राज्य सरकार ने 71 राहत शिविर और 202 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। इन शिविरों में 12,000 से अधिक लोगों को आश्रय दिया गया है, जबकि 1,00,000 से अधिक प्रभावित लोगों को राहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। NDRF, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तथा स्थानीय प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य में लगातार जुटी हुई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 753 अंक गिरकर 76,717 पर और निफ्टी 202 अंक की गिरावट के साथ 23,986 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्रों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। पहला जो गीत है ये उसने कहा था, इस फिल्म का गाना है, मन्ना डे, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, सलील चौधरी का संगीत।

0: तू नहीं और सही इस फिल्म का गाना।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

परख फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं, लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार सलील चौधरी।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: विविध भारती से, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अब आपको सुनवाते हैं मियां बीवी राजी, इस फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, एसडी बर्मन का संगीत।

तीर और तलवार इस फिल्म का ये गाना आपको सुनवाते हैं, आशा भोसले की आवाज, फारूक कैसर के बोल, संगीत निसार का।

अगला गीत सुनते हैं रंगीला राजा फिल्म का गाना तलत महमूद और सुधा मल्होत्रा की आवाजों में असद भोपाली के बोल संगीत शिवराम का।

किया, दिनों का रंग हो गया गुलाबी गुलाबी।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
3: सावधानी रखिए और बारिश में और भी बहुत सारी पानी से संबंधित सावधानियां, खान पान से संबंधित सावधानियां तो वो तो आपको रखनी ही है जब तक ये मानसून चलेगा।
4: बिल्कुल, और जितना ज्यादा हम अपना ध्यान रखेंगे उतना ही इस मानसून का हम लुत्फ भी उठा सकते हैं,
3: आनंद ले सकते हैं, अन्यथा बीमार होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। चलिए आज के विषयों की हम बात कर लेते हैं आरती। तो हाँ, पहला विषय भी हमारा फिटनेस से संबंधित है, महिलाएं और फिटनेस, ये हमारा पहला विषय है। और दूसरा
4: है लेखिका ज्योति जैन जी से ममता सिंह जी की बातचीत होगी, जिसमें वो फिटनेस के बारे में हमें बताएंगी, जानकारी देंगी, तो उसको आप सुनिएगा जरूर। हाँ। और साथ ही हम बात करेंगे साड़ियों के संसार के अंतर्गत, आज हम मणिपुरी साड़ी लेकर आए।
3: अच्छा, जो कि मणिपुर में बनती है।
4: जी हाँ, बिल्कुल।
3: और अगला जो विषय है हमारा, हमारा शब्द, हमारा विचार आपके, तो जो शब्द है वो है फिजूल खर्ची। तो फिजूल खर्ची तो हमें नहीं करनी चाहिए, मितव्ययता से रहना चाहिए, सोच समझ कर कहाँ जरूरत है वहीं पर पैसा खर्चा करें, क्योंकि अगर हमने इस बात का ध्यान नहीं रखा तो हमारे पूरे महीने का बजट बिगड़ जाता है, बचत नहीं हो पाती है। तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है,
4: क्योंकि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो बिल्कुल दिमाग से निकल जाता है कि हमें बजट के हिसाब से चलना है, हम जो हमें जरूरत की चीजें नहीं भी होती है उसको भी खरीद लाते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए। तो आप बताइए, आपने क्या फिजूल खर्ची करी है या फिर आप अपने अच्छी तरीके से अपने बजट के हिसाब से चलते हैं?
3: हाँ, तो ये आप हमें बता सकते हैं, और हमारा जो फेसबुक पेज है www.facebook.com, तो वहां जाकर के आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं इसके बारे में। और व्यंजन की भी आज बात करेंगे। देखिए, आज फिटनेस की बहुत सारी बात है, तो ज्वार के व्यंजन, अब ज्वार भी एक ऐसा अनाज है जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो उससे बनने वाले जो व्यंजन है आपके जिस जगह पर, देखिए हमारा जो देश है विविधता से भरा हुआ देश है, हर राज्य में अलग अलग तरह एक ही चीज से अलग अलग तरह के व्यंजन बनते हैं, तो आप जहां पर रहते हैं आपके एरिया में आपके घर में ज्वार से किस तरह के और क्या व्यंजन बनाए जाते हैं उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं।
4: क्योंकि जो फिटनेस का ध्यान रखते हैं वो अधिकतर ये ज्वार ही खाते हैं, तो आप बताइए आप किस तरीके से आप इसको ज्वार को बनाते हैं?
3: हाँ, तो रोटी तो बनती ही है, ये तो पारंपरिक तौर पर बहुत वर्षों से हम देखते आए हैं हमारी दादी नानी के जमाने से कि ज्वार के आटे से रोटी बनाई जाती है और विभिन्न तरह की उसके साथ दालें सब्जियां उसके साथ खाई जाती है, लेकिन इसके अलावा भी और कोई व्यंजन अगर बनाए जाते हैं तो उनके बारे में आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। और जब फिटनेस की बात आती है तो फिटनेस तो तभी आती है जब हमारा मन चंगा हो, दिल बहुत स्वस्थ हो, दिमाग बहुत स्वस्थ हो, और उसका एक बहुत ही अच्छा साधन है और
4: गीत, संगीत।
3: चलिए सुनते हैं गीत।

0: आरती, देखो पहली फिल्म का ये गाना हमने आपको सुनवाया, हेमलता और सुरेश वाडकर की आवाजें, और इसमें भी बारिश से संबंधित बातें थी, लेकिन बड़ी खुशी वाली बातें थी। लेकिन ये खुशी तभी बरकरार रह सकती जब हम अपने फिटनेस का ध्यान रखें, और खास तौर पर जब बारिश बहुत हो रही हो, मानसून का सीजन हो, तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हुए फिटनेस का ध्यान रखा जा सकता है, तभी इनका आनंद ले सकते हैं।
1: तो चलो फिटनेस के ऊपर हमारे कुछ बताने वाले हैं।
0: हाँ बिल्कुल, एक लेखिका है ज्योति जैन उनका नाम है, और वैसे तो वो लेखिका है, उन्होंने अपने लेखन के बारे में भी हमें बताया है, उनकी पुस्तकों के बारे में भी बताया है, लेकिन आज इस अंक में वो फिटनेस की बातें करने जा रही हैं। तो सुनते हैं उनकी ये बातें, और आने वाले अंकों में हम उनके लेखन के बारे में भी जानेंगे।
1: बिल्कुल, और ममता जी ने इनका इंटरव्यू लिया है, इनसे बातचीत करी है, तो सुनते हैं।
0: बिल्कुल
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, और विविध भारती के स्टूडियो में साहित्यकार ज्योति जैन जी आई हैं, आपका हम सखी सहेली की ओर से और विविध भारती परिवार की ओर से स्वागत कर रहे हैं। ज्योति जी नमस्कार, आपका बहुत स्वागत।
0: नमस्कार ममता जी, और सचमुच सखी सहेली में आकर के मुझे बस सखी वाली ही फीलिंग आ रही है, तो आपका बहुत सारा धन्यवाद।
2: सखी सहेली आप सुनती रही है लगातार?
0: जी, जी बिल्कुल।
2: तो आपको कैसा लगता है?
0: ऐसा लगता है कि देखिए, हम अभी तक जिसको दूर बैठकर सुनते थे सखी सहेली कार्यक्रम, उसके विज्ञापन भी सुनते थे कि सखी सहेली कार्यक्रम सुनने के लिए पुरुष वर्ग भी किस तरह से वो समय सखा भी सुनते हैं, तो अभी तक जिसको दूर बैठकर सुनते थे उसमें खुद आकर के तो एक अद्भुत अनुभूति हो रही है कि अरे वाह, मैं खुद भी एक सखी।

0: बन गई हूँ यहाँ
1: जी
0: आकर।
1: हम सखियों को बता दें कि ज्योति जी के पास बहुत सारे हुनर हैं, और एक ऐसा हुनर है जो आप सबके लिए प्रेरणा की बात है। इन्होंने अपने फिटनेस के लिए बहुत कुछ किया है, डाइट से लेकर जिम जाती हैं। हम इन्हीं से पूछते हैं कि बताइए सखियों को अपने फिटनेस के लिए क्या कुछ करना चाहिए।
0: सबसे पहले तो मैं सभी सखियों से ये कहना चाहूंगी कि स्वयं को कमतर न आके, क्योंकि आपकी जो देखभाल वाली लिस्ट है उसमें आपका नाम सबसे आखिरी में होता है,
1: बिल्कुल।
0: और ये चीज बिल्कुल गलत है। ये आप अपने साथ न्याय नहीं कर रही हैं, क्योंकि आप परिवार में हर सदस्य का ध्यान रखती हैं। आपको पता होता है आपकी सास को क्या पसंद है, ससुर जी को क्या पसंद है, या माता पिता हैं तो उनको क्या पसंद है, पति को क्या पसंद है, बच्चों को क्या पसंद है, हर एक का ध्यान रखती है और उसके अनुसार आप व्यंजन बनाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ईमानदारी से अपने लिए सलाद काटा?
1: अपने अकेले के लिए कभी खाना बनाया?
0: नहीं, अमूमन नहीं होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये पहले तो यहां से शुरू हो जाए कि आपको अपना स्वयं का ध्यान रखना है। आपने जिम की बात कही है, तो ममता जी मैं इसको यहाँ से शुरू करती हूँ कि लगभग 13-14 साल पूर्व मुझे अस्थमा था, और पुराने लोग यह कहते पाए जाते हैं कि दमा जो है वो दम के साथ जाता है। अस्थमा यानी दमा, सांस की बीमारी, तो कहते हैं कि दमा दम के साथ जाता है। मैंने भी सुना ये, कि तो मुझे एक मन में चीज लगी कि अरे ये मुझे बहुत ही गंभीर बीमारी है
1: जी
0: और मुझे इससे अब बचना है। यहां तक कि मेरे स्टेराइड्स पर थी,
1: जी
0: तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मैं चूंकि खिलाड़ी रही हूँ, एनसीसी की कैडेट रही हूँ
1: बैडमिंटन खिलाड़ी।
0: और बैडमिंटन खिलाड़ी रही हूँ, तो मुझे लगता है कि अपने फिजिकल जो फिटनेस है वो आपको बहुत सारी चीजों से बचाती है।
1: जी
0: तो उस वक्त जब मैंने जिम ज्वाइन किया, और धीरे धीरे देखिए अभी क्या होता है, मैं कई लोग मेरे वीडियोस देखते हैं तो उनको लगता है कि अरे डेडलिफ्ट है 40 किलो का, या बेंच प्रेस है 25 किलो का डंबल का, तो उनको लगता है कि बड़ा अच्छा है ये तो। लेकिन कैसे होता है कि आपको ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से चीजें आती हैं। आप एकदम से आप 50 किलो का या 40 किलो का या 25 किलो का डंबल नहीं उठा सकते हो। तो जब मैंने इसकी शुरुआत की, तब मैंने 2.5 किलो के डंबल से शुरू किया, 5 किलो से शुरू किया। तो जब जब मैंने जिम जाना शुरू किया, जब मुझे लगा कि नहीं, सेहत के प्रति हमको जागरूकता चाहिए, तो मैंने महसूस किया कि धीरे धीरे मैं स्ट्रांग होती जा रही हूं। तो जब आप भीतर से भी स्ट्रांग होते हैं, तो आपको बीमारियां फिर थोड़ी सी आपसे दूर भागती हैं, बीमारियां आपसे डरने लगती हैं। ये मैंने जिम शुरू किया, और जब सिक्किम में हम गए पहाड़ी क्षेत्र में, तो वहां से आकर के मैंने जितनी स्टेरॉइड्स थी वो पैक की हुई थी, और वो मैंने घर आके डस्टबिन में डाल दी। मुझे उसके बाद स्टेरॉइड्स नहीं लेना पड़ी। तो एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि आपका शरीर मजबूत होता है, आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, तो बीमारियों पर आप इस तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी
0: और तब मैंने एक कहानी लिखी, फतेह, इसी
1: जी
0: थीम को
1: जी
0: लेकर के तब मैंने कहानी लिखी। दूसरी चीज ये हो गई है कि डाइट का आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप जल्दी छोटी उम्र से शुरू कर दें, ने महिलाएं अगर 30 बरस से भी शुरू कर दें तो भी बहुत अच्छा है, और बड़ी उम्र से शुरू करें तो भी, बोलते हैं ना कि अभी समय नहीं बीता है, जब जागे तभी सवेरा। तो प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल कीजिए।
1: जी
0: प्रोटीन यानी, और मैं ये नहीं कहती कि प्रोटीन पाउडर लीजिए, मैंने कभी प्रोटीन पाउडर नहीं लिया,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन पनीर है, स्प्राउट्स है, मूंग मोठ, चना चवला, तो महिलाएं अपने किचन में रोज गलाएं खाएं, और छाछ लें, सत्तू लें, सत्तू तो आदिकाल से चला आ रहा है हमारे यहाँ पे, हाई प्रोटीन है उसमें। तो अपनी डाइट का अपने को ध्यान रखना चाहिए।
1: जी
0: मैं ये भी नहीं कहती कि आप कचौरी समोसे ना खाओ, सैंडविच ना खाओ, खाएं कभी-कभी, लेकिन आपके पेट में क्या जा रहा है उस बात का आपको ध्यान

0: रखना पड़ेगा।
1: तो ये तो डाइट की बात हो गई, और हमने एक वीडियो देखा था जिसमें आप बहुत बड़ा डंबल उठा के और झुकी हुई हैं, ऊपर नीचे कर रही हैं, और एक में देखा कि आप टायर उठा उठा के फेंक रही हैं। तो ये कितने समय बाद ये शक्ति आपके भीतर पैदा हुई?
0: मेरा ख्याल से डेडलिफ्ट तो मैंने थोड़े टाइम बाद शुरू कर दिया था, लेकिन शुरू में जब हम डेडलिफ्ट करते हैं तो 20 केजी का बार होता है, 20 किलो का बार। तो पहले खाली बार से शुरू किया, फिर उसमें 5-5 किलो के चक्के डाले, पहिए जैसे होते हैं वो डाले, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया। तो वही कि आप एक झटके से नहीं कर सकते। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप जिम जाते हैं तो वहां हर जिम में, या तो आप कुछ ऐसा स्तरीय जिम ढूंढे, जिम में ट्रेनर जो होते हैं वहां, जो भी हैं जो आपको अटेंड करते हैं, वो पहले पूछते हैं आपकी कोई सर्जरी हुई है, आप उसको सब सच सच बताइए,
1: जी
0: है
1: जी
0: ना। फिर वो पूछते हैं आपकी कहीं कोई इंजरी तो नहीं है, वो आप बताइए, आपको बैक पेन तो नहीं है वो बताइए, नी पेन तो नहीं है वो बताइए। मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मुझे एक घुटने में मेरे बहुत सालों पहले पस हो गया था, और उसकी एक छोटी सी सर्जरी हुई और करीब 2.5 महीने तक वो प्लास्टर रहा। तब मैं घुटना नहीं मोड़ पाती थी, मुझे नीचे बैठना मना था क्योंकि मैं नहीं बैठ पाती थी। लेकिन फिर जब जिम शुरू किया तो स्क्वाट्स लगाए तो मैं नहीं लगा पाती थी, लेकिन ट्रेनर के देखरेख में धीरे धीरे स्क्वाट्स लगाना शुरू किया और आज मैं बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। तो कोई भी चीज को आप निरंतर अभ्यास से करेंगे और धीरे धीरे एक एक सीढ़ी को ऊपर चढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आप जिस जगह में हूं आप भी उस जगह पर आ सकते हैं।
1: बिल्कुल। और एक लेखक को तो हाथ की तकलीफ अमूमन हो जाती है,
0: होती है
1: क्योंकि वो नियमित रूप से
0: गर्दन की
1: कल
0: होती है,
1: हाँ
0: गर्दन की
1: गर्दन की,
0: होती
1: हाथ
0: है।
1: की।
0: तो मैं भी जब लिखती हूं, मैं अभी भी कागज कलम पे लिखना ज्यादा पसंद करती हूँ। मैं अभी कंप्यूटर युग में है पर मैं कंप्यूटर वाली अभी भी नहीं हूँ, मुझे लिखने के लिए कागज और कलम ही चाहिए। तो मैं लिखती हूँ, कई बार लंबा भी लिखना पड़ता है, लेकिन बीच में आप थोड़ा सा गर्दन को चारों तरफ घुमा लीजिए और फिर लिखना शुरू कीजिए। जब आप अभ्यास में, आप शारीरिक रूप से आप मजबूत हैं, तो फिर ये छोटी मोटी चीजें आपको परेशान नहीं करती हैं।
1: जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही। और अब चलते चलते हम हमारी तमाम सखियों को बताइए कि आपने तो अपनी जिंदगी के साथ बहुत सारे समझौते किए, समझौता कहें या अपनी चॉइस पर, अपनी शर्त पर आपने छोड़ी, कैजुअल अनाउंसर रही, फिर आकाशवाणी में अनाउंसर बनी, वो आपने छोड़ा परिवार के लिए, अपने प्रेम के तहत, और पायलट बनते बनते रह गई, रिटर्न में आप क्वालिफाई की। लेकिन सखियों से आप क्या कहेंगी कि आज के जमाने में उन्हें क्या करना चाहिए?
0: देखिए, जमाना बदला है ना। इस बदलाव को सभी लोगों ने स्वीकार किया है।
1: जी
0: एक जमाना था जब मैंने ये चीजें छोड़ी, लेकिन आज मैं मीडिया के बच्चों को हिंदी पढ़ा रही हूं। और जमाना बदला है तो, और अब चीजें भी बदली हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आजकल लड़कियों को ये सब कुछ छोड़ के और करना पड़ता है। आजकल की जो बच्चियां हैं वो दोहरी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा लेती हैं, और मुझे लगता है कि अपने सपनों को जीवित रखें, उनको जीवित रखना बहुत जरूरी है। जिंदगी के प्रति जो अपना नजरिया है वो सकारात्मक रखें, तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं।
1: बिल्कुल।
0: मैं यहाँ एक चीज और कहूंगी कि
1: हाँ
0: हक तो है ही। देखिए, जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो वहां कर्तव्य भी जुड़े होते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो कर्तव्यों के साथ अपने अधिकार को प्राप्त करें,
1: जी
0: इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता।
1: जी और इस समय बहुत बेहतर होगा कि एक गाना हम सुनवा दें अपनी सखियों को। कौन सा गाना?
0: मैं ना खूब मस्तीखोर हूं, मैं खुल के जीती हूँ, खुल के नाचती हूँ जब मौका मिलता
1: जी
0: है।
1: जी
0: मुझे नृत्य करना अच्छा लगता है। मैंने विधिवत नहीं सीखा है, पर जहां म्यूजिक होता है मेरे पैर अपने आप उठ जाते हैं।
1: थिरकने लगते
0: तो
1: हैं।
0: मुझे ना एक कॉलेज में मुझे एक टाइटल मिला था मेरे आचरण को देखते हुए, तो हम वही गाना सुनते हैं, और वो टाइटल था जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने
1: किसने
0: जाना,
1: जाना, सुनते
0: तो
1: हैं।
0: बस यही गाना सुनते हैं।

0: ज्योति जी, बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी
0: आपका। विविध भारती के स्टूडियो में आई और सखियों सहेलियों से इतनी उम्दा जानकारी वाली
1: जी
0: बातें की और इतनी इतनी प्रेरक बातें आपने साझा
1: जी
0: की।
1: जी बहुत
0: शुक्रिया
1: धन्यवाद ममता जी। आपका दिन शुभ हो और स्वस्थ हो।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
1: नमस्कार। तो आरती देखो, हमारी जो सखी ज्योति जैन है उनके ममता सिंह से जो बातचीत हुई वो हमने सुनी, और उन्होंने भी फिटनेस के बारे में काफी कुछ बातें हमें बताई।
0: जी
1: और देखिए, हंसना, खिलखिलाना, नृत्य करना, गीत सुनना, ये भी फिटनेस के
0: बिल्कुल, ये
1: कुछ
0: भी
1: राज
0: फिटनेस में ही आता
1: तो ये उन्होंने हमें
0: है
1: बताया। चलिए, अब हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं
0: जी।
1: कि अक्सर महिलाएं क्या करती हैं, पूरे परिवार का ध्यान रखती है, लेकिन जब बात अपनी सेहत की आती है तो उसे वो सबसे आखिर में रख देती हैं। जबकि सच ये होता है कि यदि महिला स्वस्थ और फिट होगी तभी परिवार की भी खुशहाल और स्वस्थ रहेगा,
0: बिल्कुल।
1: ना?
0: और फिटनेस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम पतले दिखें। पतले दिखना ही फिटनेस नहीं होता है। फिटनेस का अर्थ होता है शरीर का स्वस्थ होना, मन का प्रसन्न होना और ऊर्जा से भरपूर जीवन जीना। और महिलाओं के लिए रोजाना 30 से लेकर 45 मिनट की जो शारीरिक गतिविधि होती है वो बहुत लाभदायक होती है
1: हाँ,
0: उसमें।
1: और बहुत सारी महिलाएं ये सोचती कि हम घर का काम करते हैं ना तो उससे तो हमारे शरीर की हलचल हो जाती है, तो अब हमें और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है। लेकिन जो एक्सरसाइज जो हम करते हैं उसके जो पोस्चर होते हैं
0: बिल्कुल।
1: वो हमारी सेहत के लिए, हमारे शरीर की बनावट के लिए वो काफी उपयोगी होते हैं। तो काम अपनी जगह बहुत अच्छी बात है कि
0: जी
1: करना चाहिए, लेकिन कम से कम 30 मिनट के लिए हम थोड़ा सा व्यायाम करें, थोड़े आसन करें, तो
0: बिल्कुल,
1: वो भी हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं।
0: क्योंकि
1: इस
0: इतने काम के बीच में अगर हम अपने लिए 30 मिनट ना निकालें ये तो अपने खुद के साथ नाइंसाफी हो
1: हाँ,
0: जाएगी।
1: लेकिन कई महिलाएं नहीं निकाल पाती,
0: जी
1: घर की व्यस्तता बहुत ज्यादा होती
0: जी
1: है, बड़ा परिवार होता है, दिन भर काम करते हैं, और उसके बाद में अगर वो अपने लिए समय निकालती है तो कई बार घर के लोग कहने भी लग जाते हैं कि अरे इतना काम पड़ा है कि तुम ये क्या करने लगी हो। तो कई महिलाओं के साथ इस तरह की परिस्थितियां भी होती हैं। खैर, लेकिन तेज कदमों से चलना, योग, प्राणायाम, साइकिल चलाना, नृत्य या हल्की एक्सरसाइज, इनमें से कोई भी गतिविधि नियमित रूप से अगर अपनाई जाए तो काफी अच्छा होता है, और संतुलित आहार भी फिटनेस की मजबूत नींव होता है।
0: बिल्कुल। और आप खाने में हरी सब्जियां ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, दालें हैं, दूध है, मोटे अनाज हैं, पर्याप्त पानी और प्रोटीन की जो भी चीजें हैं, जैसे कि बहुत से लोग जो नहीं खाते उस तरीके के, तो

0: वो अंडे नहीं खाते हैं, तो वो पनीर खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पनीर ले सकते हैं, दूध की बनी चीज़ें ले सकते हैं, और ये जो जंक फूड होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मीठे चीज़ें होती हैं, उनको अपना लें तो ज़्यादा बेहतर है।
1: हाँ, डिब्बा बंद जो भोजन आजकल बहुत प्रचलन में है,
0: जी
1: तो उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी ले लें और उसके बाद ही उनका उपयोग करें। और हमारा तो सुझाव यही है कि उसकी बजाय आप घर में कोई भी चीज़
0: बिल्कुल,
1: बनाकर
0: क्योंकि हम
1: खाएं तो
0: छोटी सी भी चीज़ जो जंक फूड वाला लेते हैं ना, उसके ऊपर आप देखिए कितनी कैलोरी लिखी होती है ना, तो
1: बिल्कुल
0: उसमें हमें जितना चाहिए उसे कहीं कई गुना ज़्यादा हम थोड़े से खाने में ही ले लेते हैं, तो उसको आप ना लें तो ज़्यादा अच्छा है।
1: इसके अलावा मानसिक फिटनेस भी उतनी ही आवश्यक होती है। तनाव कम करने के लिए ध्यान, योग, अच्छी नींद लेना, संगीत सुनना, किताबें पढ़ना और परिवार के साथ समय बिताना, ये बहुत मददगार साबित होते हैं इसमें।
0: बिल्कुल, और जीवन के अलग अलग चरण हैं, जैसे किशोरावस्था हो, या जो गर्भावस्था है, प्रसव के बाद का समय है, या रोजनवृत्ति का समय है, ये महिलाओं की शारीरिक इसमें जरूरतें जो होती हैं वो बदलती रहती हैं, इसलिए समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच कराना और विशेषज्ञ की सलाह लेना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, ये जो रजोनिवृत्ति की तुमने बात की, तो उस समय भी महिलाओं को बहुत समस्याओं का
0: बिल्कुल
1: सामना करना पड़ता है उनको, जैसे हॉट फ्लशेस आना और बार बार मुंह सूखना, प्यास लगना, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं होती हैं उन्हें। तो घर के लोगों का भी तो ये कर्तव्य बनता है कि वो भी अगर ऐसी समस्या उनके साथ है तो थोड़ा उनका साथ दें और उनका ख्याल रखें। तो इस तरह से अब इन बातों का ख्याल रख के फिटनेस का ध्यान रखा जा सकता है। इसके
0: बिल्कुल
1: अलावा फिटनेस कोई विकल्प नहीं बल्कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर महिला स्वस्थ है तो ही वो अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएगी और सशक्त समाज की वो पहचान भी होती है।
0: बिल्कुल
1: इसके लिए महिलाओं की फिटनेस पर बहुत अधिक ध्यान देना
0: बिल्कुल, अगर आप
1: जरूरी
0: जिम
1: है।
0: नहीं जा पा रही हैं, डंबल्स नहीं है आपके पास, तो आप एक एक लीटर की जो बॉटल्स होती हैं है ना, उसके जरिए भी आप कर सकती हैं, डंबल्स का काम उससे ले सकती हैं, तो आप
1: बिल्कुल
0: घर में ही कुछ एक्सरसाइज हैं वो करेंगी ना, तो आपको फायदा दिखने लगेगा।
1: फिलहाल हम एक गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।

0: ब्रेक का समय पूरा हो चुका है और वो जो गीत हमने सुना शगुन फिल्म का, उसके पहले हम फिटनेस की बातें कर रहे थे। हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस बारे में अपने जो दिल के जो बातें थी या जो वो बताना चाहते थे हमें लिख भेजी है, तो हम एक एक करके हम अपनी सखियों को बताते हैं। एक साथी हमारी लिख रही है,
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: मूंगफली, काले चने हर महिला के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं।
0: और एक हमारी जो साथी है वो ये भी लिख रही है कि व्यायाम से एंडोर्फिन यानी कि जो हैप्पी हार्मोन से वो निकलते हैं जो तनाव, चिंता और मूड स्विंग्स को कम करते हैं। हड्डियों की मजबूती उम्र के बढ़ने के साथ महिलाओं में हड्डियों के कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हड्डियां मजबूत होती है। ऊर्जा और आत्मविश्वास फिट रहने से शरीर का स्टेमिना बढ़ता है, जिससे महिलाएं अपने दैनिक कार्य अधिक ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ कर पाती हैं।
3: जी, और एक और श्रोता है जो लिखती है कि मैं सुबह सैर को जाती हूँ, थोड़ा बहुत योग व्यायाम करती हूँ, बाहर का खाना जो होता है उसको खाने से परहेज करती हूँ कभी कभार को छोड़कर, और मौसमी फल सब्जी खाती हूँ। संगीत बहुत तरोताजा रखता है इसलिए विविध भारती के प्रोग्राम सुनना नहीं छोड़ती हूँ। मनोरंजन के लिए सखी सहेलियों के साथ गेट टुगेदर भी करती हूँ।
0: क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। और एक साथी हमारी ये भी लिख रहे हैं कि योग और प्राणायाम मानसिक शांति और लचीलेपन के लिए, योग सबसे उत्तम है। पिलेट्स, कोर स्ट्रेंथ और बॉडी पोस्चर सुधारने के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है। ब्रिस्क वॉकिंग या जॉगिंग हृदय स्वास्थ्य के लिए सप्ताह में कम से कम 150 मिनट यानी कि रोजाना 30 मिनट तेज चलना फायदेमंद होता है। और इस तरह की फिटनेस से संबंधित बहुत सारी बातें हमारे सखियों ने हमें लिख करके भेजी, तो हम उन सभी को धन्यवाद कहते हैं। और अब हम बात करते हैं मणिपुरी साड़ी के बारे में। तो मणिपुरी जो साड़ी है ये साड़ी आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से यानी कि रानियों के समय से काफी लोकप्रिय है। पुराने समय में इस साड़ी को रानियां भी पहना करती थी। मणिपुर की साड़ी को कारीगर मशीन का इस्तेमाल करके नहीं बल्कि हाथ की बुनाई से बनाते हैं।
3: जी, यही इसकी खासियत भी है। इसे बनाने में कुल 15 से 20 दिनों का समय लगता था और मणिपुर की साड़ियों को आज भी महिलाएं खास मौकों पर पहनती हैं। इन साड़ियों को पहनकर वो अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। मणिपुरी साड़ी का इतिहास बहुत पुराना है। ये राजघरानाओं की जो राजघराने होते थे उनकी परंपरा और महिलाओं के सामाजिक सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है।
0: हाँ, बिल्कुल। वैसे भी जब कोई भी महिला जब साड़ी पहनती है तो एक एलिगेंट लुक, मतलब यूं कह सकते हैं कि बहुत सुंदरता उसमें नजर आती है। और जब हमारे देश में विभिन्न तरह की साड़ियां बनती है, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह की साड़ियां बनती है, और जब कोई त्योहार आता है तो उस प्रांत की वो खास जो साड़ी है वो पहनी जाती है, तो सब महिलाएं एक तरह की साड़ी पहनती है, उस खूबसूरती का तो कहना ही क्या है ना। और मणिपुरी साड़ी और कपड़ों में दिखने वाले प्रसिद्ध टेम्पल डिजाइन और मोइरांग फी कहा जाता है जो डिजाइन होते हैं उनका नाम है ये। और इस डिजाइन का आविष्कार मोइरांग साम्राज्य की जो राजकुमारी थी थोड़बी, उन्होंने किया था। और मणिपुरी साड़ियों को प्रिंट या डाई करने के लिए पहले के समय में पेड़ों की छालों, पत्तियों और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता था।
3: बिल्कुल, पहले तो इसी प्राकृतिक तरीके से ही बनाते थे, कुछ भी अलग से रंग नहीं इस्तेमाल करते थे। इन सभी चीजों से कपड़ों पर कलर किया जाता था। यही कारण है कि ये साड़ियां सालों साल अपनी चमक नहीं खोती हैं। मणिपुरी साड़ी जो होती है वो सिर्फ रानियों तक सीमित नहीं थी बल्कि आज भी ये अपने हल्के और आरामदायक फैब्रिक, टेम्पल बॉर्डर और खूबसूरती के लिए महिलाओं के बीच काफी चलन में है।
0: बिल्कुल। और ये साड़ियां मलबरी सिल्क, एरी सिल्क और कॉटन सिल्क ब्लेंड से तैयार की जाती है। ये सिल्क हल्का और सॉफ्ट होने के कारण बेहद आरामदायक होता है। इन साड़ियों पर बनी टेम्पल बॉर्डर साड़ी के लुक को और खास बना देती है। मणिपुरी संस्कृति में रंगों का विशेष महत्व है और प्रत्येक रंग का अपना प्रतीक और अर्थ होता है।
3: जी, जैसे कि लाल रंग प्रेम और जुनून का प्रतीक होता है, जबकि हरा रंग उर्वरता और समृद्धि को दर्शाता है। पीला रंग खुशी और शुभता से जुड़ता है, जबकि सफेद रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक है। ये साड़ियाँ हथकरघे पर बुनी जाती हैं, मुख्य रूप से इनमें सूती और रेशमी धागों का प्रयोग होता है।
0: हाँ, और ये जो रंग बिरंगी साड़ियाँ होती है ना, वाकई में ये अलग अलग जो रंग होते हैं, चटकदार जो रंग होते हैं वो देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं। और कई महिलाएं तो हर तरह के रंगों
3: जब वो त्योहार जब वो पहन के आती ना तो पता चलता है जहाँ त्योहार है।
0: बिल्कुल। और कुछ साड़ियाँ तो ऐसी होती है जिसमें मिले जुले रंग होते हैं, बहुत सारे रंगों की एक ही साड़ी बनी होती है, तो वो भी बड़े एक इंद्रधनुष के रंगों की तरह बड़ी खूबसूरत लगती है। आजकल कुछ आधुनिक डिजाइनों में मिश्रित धागों का भी प्रयोग किया जाता है। महीन बुनाई और सादगी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है और इसके मुख्य प्रकार हैं फानेक, मयेक, नाइबी, क्षेत्रीय धारियां वाला सबसे लोकप्रिय पारंपरिक फानेक है, कनाप फानेक विशेष अवसरों पर पहना जाने वाला सिला हुआ ये एक रूप है। ये अलग अलग तरह के नाम हैं जो अलग अलग डिजाइन को दिए गए हैं
3: जी। और फिर है मोइरोंग फी। मोइरोंग फी जो होता है वो प्रसिद्ध पारंपरिक वस्त्र जिसकी सीमा जो यानी बॉर्डर जो होता है उस पर विशेष आकृतियां बुनी जाती हैं और इसे GI मान्यता भी प्राप्त है इस वाले इसको। और वांगखे फी ये बेहद महीन और पारदर्शी मलमल यानी कि मसलिन जैसी जो होती है साड़ी वो होती है और शुरुआत में इसे शाही परिवार के लिए वांगखे क्षेत्र में बुना जाता था।
0: और जी सामी लामी फी ये बुनाई और कढ़ाई का एक अद्भुत संयोजन है जिसमें जानवरों पारंपरिक प्रतीकों को उकेरा जाता है
3: जी। और कभी से मणिपुर में प्रतिष्ठा योद्धाओं का प्रतीक माना जाता था। पारंपरिक रूप से इन साड़ियों को सूती, कॉटन और रेशम जो होती है एरी और मलबरी धागों से हाथों द्वारा बुना जाता है। इन्हें रंगने के लिए प्राकृतिक जड़ी बूटियों और पेड़ों की छालों का उपयोग किया जाता था।
0: हाँ, तो इस बार अगर जब भी आप मणिपुर जाएं तो या फिर आपके कोई दोस्त कोई रिश्तेदार अगर जाते हो तो वहां से एक साड़ी जरूर मंगवाइएगा, उनसे कहिएगा कि हमारे लिए एक मणिपुरी साड़ी लेकर आई है। चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं। हाँ, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे।

0: हमारा ये जो सेगमेंट है ना कि शब्द हमारा और विचार आपके, तो इसमें आज का जो शब्द है वो फिजूल खर्ची है, तो इस बारे में हमारे साथियों के, हमारे सखियों के क्या विचार हैं वो जान लेते हैं। हमारे एक साथी ये लिखते हैं कि फिजूल खर्ची मतलब समय या संसाधनों का बिना ठोस आवश्यकता खर्च में लापरवाही बरतना। ये एक ऐसी आदत है कि व्यक्ति अपनी आय के मुकाबले ज्यादा खर्च करके सिर्फ दिखावे के लिए पैसे लुटाता रहता है, अंत में कर्ज में डूब जाता है और तब उनकी आंखें खुलती है तब बड़ी देर हो चुकी होती है। खर्च करने के बारे में एक गुजराती मुहावरा है कि पछेड़ी प्रमाणे सोड़ ताड़वी, इसका मतलब ये होता है कि चादर के हिसाब से पैर फैलाना। खर्च
1: बिल्कुल
0: के साथ बचत की आदत भी डालें, वो आपके बुढ़ापे में एक लाठी जैसा सहारा बन सकती है।
1: जी। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि फिजूल खर्ची, भाई इस रोग से प्रायः सभी ग्रसित होते हैं, और ऐसा इसलिए है कि अपने वास्तविक आवश्यकताओं की जानकारी ही नहीं है, और एक पर एक फ्री का लोभ भी समाया हुआ है, फिर मानव की प्रवृत्ति भी संग्रह करने की है। इस दृष्टिकोण से फिजूल खर्ची होना स्वाभाविक ही है। अक्सर ऐसा होता है ना मंजू जी, जब हम कुछ लेने जाते हैं, जो हम लेने जाते हैं अगर उसके साथ में कुछ और एक्स्ट्रा मिल रहा होता है, कम दाम का मिल रहा होता है, या एक पर एक फ्री होता है, तो हम उसको जरूर उठा लेते हैं, चाहे हमें उसकी जरूरत हो चाहे ना हो।
0: हाँ बिल्कुल, ये समझ करके कि ये तो फ्री मिल रहा है हमें, लेकिन
1: हाँ
0: ऐसा होता नहीं है। उसका कुछ तो हमें भुगतान करना ही होता है जो कि हमें पता नहीं चलता है।
1: जी
0: हमारे एक साथी ये लिख रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग और आकर्षक विज्ञापनों के प्रभाव में आकर अनावश्यक वस्तुओं को खरीदना, बजट न बनाने और बचत के महत्व को न समझने की आदत, गलत वित्तीय आदतें जैसे फिजूल खर्ची, बिना बजट के खर्च करना और बचत न करना जो कंगाली की शुरुआत कर सकती है। आय
1: जी
0: से अधिक खर्च करने पर व्यक्ति कर्ज के दुष्चक्र में फंस जाता है। मानसिक तनाव, वित्तीय असुरक्षा के कारण परिवार में कलह और मानसिक अशांति बढ़ती है।
1: जी और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि फिजूल खर्ची एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है। आज की दिखावे की दुनिया में लोग अक्सर आवश्यकता से अधिक खर्च कर बैठते हैं। हमें अपनी आय के अनुसार ही खर्च करना चाहिए और अनावश्यक वस्तुओं की खरीद से बचना चाहिए। सादगीपूर्ण जीवन और मित्रता हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं, इसलिए फिजूल खर्ची छोड़कर बचत और समझदारी की आदत अपनाना ही जीवन की सच्ची समृद्धि है।
0: और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि फिजूल खर्ची को रोकने का अर्थ कंजूसी करना नहीं बल्कि मितव्ययता, यानी कि सोच समझकर खर्च करना है, इस आदत को अपनाना है। इसके लिए व्यक्ति को किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि यह उसकी आवश्यकता है या केवल एक इच्छा। बजट बनाकर जीने और अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखने से ही आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है।
1: बिल्कुल
0: और एक साथी ने ये भी लिखा है कि फिजूल खर्ची एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है। तो इन सब आदतों से, इन बातों से हमें बचना है और फिलहाल एक गीत
1: गीत
0: सुनना
1: सुनना
0: है।
1: है।

0: गीत एक चटपटा सा गाना हमने सुना और अब ज्वार की कुछ चटपटी रेसिपीज हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि हमारे प्रांत में ज्वार नहीं होता है,
1: अच्छा।
0: महाराष्ट्र जाने पर वहाँ ये रोटी खाई जाती है, बहुत अच्छा लगता है और वहीं के लोगों से बनाना भी हमने सीखी है। और अब तो वैसे पैकेट में सारी चीजें मिल रही है, आटा भी मिल जाता है। ज्वार की रोटी मुझे बहुत अच्छी लगती है और अब मैं थोड़े ढंग से उसे बना भी लेती हूँ,
1: अरे वाह।
0: क्योंकि उसे बनाने में थोड़ी सी मुश्किल आती है ना, वो टूट जाती है
1: टूटती
0: किनारों
1: है
0: से,
1: जी।
0: इसलिए तो उसको बनाना भी एक टेक्निक होती है और हर किसी के हाथों में ये हुनर नहीं होता है, तो हमें भी सीखना चाहिए। लिखती है ये कि मैं रात के खाने में ज्यादा ज्वार की रोटी खाती हूँ, किसी भी तरह की तीखी चटनी और सब्जी के साथ खाई जाती है, पर मुझे ये ठेचा और गुड़ के साथ बहुत अच्छी लगती है। ठेचा एक तरह का महाराष्ट्र में बनाया जाने वाला एक तरह की चटनी होती है, मसाला भी कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारी लहसुन होती है, थोड़ा अदरक हरी मिर्ची होती है और फिर उन सबको थोड़ा भून लिया जाता है, थोड़ा मूंगफली के दाने डाल करके, और फिर उसे पीस लिया जाता है नमक डाल करके,
1: अरे
0: और थोड़ा
1: वाह,
0: दरदरा सा इसे रखा जाता है, उसे ठेचा कहते हैं
1: बिल्कुल
0: महाराष्ट्र
1: एकदम मुंह में पानी आ जाए ऐसा रेसिपी बता दी आपने
0: बिल्कुल पारंपरिक जो
1: जी।
0: रेसिपी होती है, व्यंजन जो होते हैं ना, उन्हें बड़ी मेहनत से बनाया जाता है, हाथ से कूटना पीसना और इस तरह के कुछ अच्छी तरह से उन्हें सेकना, चूल्हे के ऊपर पहले तो सेका जाता था, तो ये जो प्रोसेस होते थे इसमें उन चीजों का एक स्वाद जो है
1: बिल्कुल
0: वो निखर
1: बढ़
0: कर
1: जाता
0: आता
1: था।
0: था।
1: खाली मिक्सी में आप पीस दें तो वो स्वाद नहीं आता जो हाथ से पीस के आता है।
0: बिल्कुल, अब और भी
1: हाँ
0: व्यंजन
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल। एक हमारे जो श्रोता है उन्होंने लिखकर भेजा है, ज्वार आटे की राब।
0: अच्छा।
1: तो इसके लिए हमें चाहिए 4 चम्मच ज्वार का आटा, 4 चम्मच घी, आधा चम्मच अजवाइन, 3 चम्मच काजू बादाम की कतरन, 4 चम्मच गुड़, आधा चम्मच ड्राई जो अदरक का पाउडर होता है वो, और 2 कप गर्म पानी सजावट के लिए ड्राई फ्रूट्स की कतरन। अब सबसे पहले एक कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें अजवाइन डालकर 1 मिनट के लिए इसको भून लीजिए अच्छे से, और बाद में ज्वार का आटा डालकर धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लीजिए। बाद में अदरक का पाउडर, गुड़ और पानी डालकर अच्छे से मिक्स करके धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लीजिए। बाद में काजू बादाम की कतरने डालकर वापस से 2 मिनट के लिए पका लीजिए। तो अभी हमारी जो टेस्टी गर्मा गर्म जो ज्वार आटे की राब है वो बनकर तैयार है। इसको ड्राई फ्रूट से सजा
0: बिल्कुल।
1: सकते हैं।
0: और एक साथी ने लिखा है कि ज्वार एक अत्यधिक पौष्टिक और ग्लूटेन मुक्त अनाज है, जो फाइबर, प्रोटीन और खनिजों से भरपूर होता है। इसके सेवन से वजन नियंत्रण और पाचन क्रिया बेहतर बन रहती है। ज्वार के आटे और साबुत ज्वार से कई स्वादिष्ट व्यंजन बन सकते हैं। अब पहले ज्वार की रोटी या भाकरी के बारे में इन्होंने लिखा है कि ज्वार के आटे में गर्म पानी और थोड़ा सा नमक मिलाकर नरम आटा गूंथ लें और हाथ या बेलन की मदद से गोल बेलकर धीमी आंच पर इसे सेकें, तो इस तरह से तो ये रोटी बन जाएगी। हालांकि इन्होंने जितनी आसानी से लिखा है उतनी आसानी से वो बनती नहीं है।
1: बनती नहीं
0: ज्वार का चीला किस तरह, पुड़ला जिसको बोलते हैं, वो किस तरह से बनाएं कि ज्वार के आटे में दही, पानी, कटी हुई सब्जियां जैसे कि प्याज, टमाटर, गाजर और इसके अलावा नमक और हरी मिर्च मिलाकर एक घोल बना लें, इसका वो
1: अच्छा।
0: तैयार कर लें और तवे पर तेल लगाकर वो घोल जो है वो फैला दें और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेके, अचार या दही के साथ इसको खा सकते हैं, चाय या कॉफी के साथ भी खाया जा सकता है। हाँ, ये थोड़ा आसानी से बनाया
1: बन
0: जा
1: सकता
0: सकता है।
1: है।
0: इसी के साथ इन्होंने ज्वार का उपमा किस तरह से बनाए वो भी लिखा है कि रात भर भीगी हुई साबुत ज्वार को कुकर में उबाल लें, पैन में राई, करी पत्ता, प्याज और अपनी मनपसंद सब्जियां भुने और इसमें उबली हुई ज्वार और मसाले डालकर अच्छी तरह मिलाएं और पकाएं। इस तरह से ज्वार का उपमा तैयार होता है।
1: वाह बहुत अच्छी चीज है ये तो। और साथ ही हम बात कर रहे थे ज्वार की जो खस्ता कचौड़ी होती है उसके लिए 1 कप गेहूं का आटा चाहिए, बेसन अभी उसमें आप ले सकते हैं,
0: हाँ
1: लेकिन ये तो उन्होंने गेहूं का बताया हुआ है, हमें तो चाहिए ज्वार का।
0: हाँ
1: तो हम बात करते हैं ज्वार भाकरी की। तो 2 कप ज्वार का आटा, 2 टेबल स्पून इसमें चावल का आटा चाहिए, 2 टेबल स्पून तेल और 1 टीस्पून अजवाइन, आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा कप बारीक कटा हुआ धनिया और 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा लहसुन, स्वाद के अनुसार नमक और भाकरी सेकने के लिए घी। सभी सामग्री को अच्छी तरह से आप मिला लीजिए और पानी की सहायता से उसका सख्त आटा आप गूंद सकते हैं। तो मतलब पतला नहीं रखना है, पतला तो वो अलग हो जाएगा फिर वो वैसा नहीं बनेगा। तो आटे को बराबर नींबू के आकार की छोटी छोटी सी लोइयों में आप बांट लीजिए, लोई को बेल कर भाकरी बना लीजिए, तवे को गर्म करके और धीमी आंच पर भाकरी को दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा सेक लीजिए, फिर घी डालकर लकड़ी के प्रेस से मतलब उस तरह से दबाते हुए अच्छी तरीके से उसको दोनों तरफ से धीमी आंच पर तब तक सेकिए जब तक वो कुरकुरी ना हो जाए, फिर अपनी पसंद की सब्जी या चटनी के साथ आप खा सकते हैं।
0: बिल्कुल। एक साथी हमारी लिख रही है कि ज्वार एक अत्यधिक पौष्टिक और ग्लूटेन मुक्त अनाज है जो फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है और इसके सेवन से ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल में रहता है। और ये लिखती है आगे कि मध्य प्रदेश और इसके आसपास के जो क्षेत्र है वहां ज्वार की पारंपरिक रोटी, स्वादिष्ट ज्वार की राब, ज्वार का ढोकला या मुठिया और कुरकुरी ज्वार की पूरी आसानी से बना सकते हैं। और ज्वार के कुछ व्यंजनों के बारे में लिखा है, इन्होंने रोटी के बारे में लिखा है जो कि हम बता चुके हैं इसलिए, और चिले के बारे में भी लिखा है और उसके बारे में भी हम बता चुके हैं, तो ये तो हम नहीं बता रहे। इसके आगे इन्होंने ज्वार की स्टफ्ड बाटी के बारे में लिखा है तो वो हम बता देते हैं। इन्होंने लिखा है कि ज्वार के आटे में अजवाइन, तिल और कसूरी मेथी मिलाकर आटा गूंथ ले, इसके अंदर आलू और मटर का मसालेदार मिश्रण भरे और बाटी की तरह इसको सेक ले या कम तेल में कचौड़ी की तरह तल ले और ये स्वाद और सेहत का एक बेहतरीन संगम है। इसके बाद इन्होंने ज्वार का उपमा बनाने के बारे में लिखा है कि साबुत ज्वार को कुछ घंटे पानी में भिगोकर उबाल ले और अब राई, करी पत्ता और अपनी मनपसंद की सब्जियों से तड़का लगा, ये भी हम आपको बता चुके हैं। और राब के बारे में इन्होंने लिखा है जो भी जिसकी रेसिपी भी हम बता चुके हैं।
1: बिल्कुल। एक छोटा सा ज्वार, ये ज्वार का डोसा है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक कप ज्वार का आटा, तीन बारीक कटा हुआ प्याज, तीन से चार बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, एक मुट्ठी कटा हुआ ताजा धनिया, तीन कप पानी और स्वाद के अनुसार नमक, दो चम्मच डोसा सेकने के लिए तेल चाहिए। अब एक बाउल में जो ज्वार होता है उसका आटा लीजिए, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, धनिया, नमक और पानी डाल लीजिए। सभी चीजों को बहुत अच्छे से मिलाकर उसका पतला घोल तैयार करें, तवा गर्म करें और हल्का सा तेल लगा दीजिए उसको, फिर तवे पर घोल को डालकर गोल गोल घुमाते हुए फैलाएं जैसे कि आप डोसा बनाते हैं, और धीमी आंच पर डोसे को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक सेक लीजिए, फिर इसमें आप कुछ भर भी सकते हैं आलू का मसाला या आप ऐसे भी खा सकते हैं।
0: बिल्कुल। जो लोग रसोई घर में काम करते हैं उन्हें पता होता है कि किस चीज से किस तरह की चीजें, और वो विभिन्न तरह के वो प्रयोग भी करते रहते हैं कि अरे इससे हो सकता है कि ये चीज अच्छी बन जाए, वो चीज अच्छी बन जाए, और इस तरह से बना के वो कुछ अलग अलग प्रयोग करके भी बना सकते हैं। हमारे एक साथी ने ज्वार के आटे का कप केक बनाने की रेसिपी भी हमें लिख के भेजी है, लेकिन अभी तो हम समय नहीं है कि उसे पढ़ पाएंगे, तो अगर हमारे कोई साथी बनाना चाहते हैं तो इस फेसबुक पेज से आप पढ़ सकते हैं और बना सकते हैं।
1: बना के देखिए।
0: एक गीत हम यहाँ सुन लेते हैं।

0: आरती देखो, जब हमारी पसंद की कोई रेसिपी बनती है ना, जो हमें बड़ी पसंद हो, स्वादिष्ट हो, तो हम भी तो अपने मन में कुछ सपने सजा करके बैठ जाते हैं कि आज
1: कि हम इसको किसके साथ खाएंगे।
0: बिल्कुल इस तरह के सपने सजाए जाते हैं। खैर, हम अपनी सभी सखियों सखाओं के लिए यही दुआ मांगते हैं हमेशा कि आप बहुत अच्छे सपने सजाएं और आपके सपने पूरे भी हों।
1: बिल्कुल
0: इसी के
1: स्वस्थ
0: साथ,
1: रहें।
0: हाँ, स्वस्थ रहें। इसी के साथ कार्यक्रम अब समाप्त करने की बारी है, तो आज्ञा दीजिए आप सभी को मंजू द्विवेदी
1: और आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: आज के मेहमान।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज हम एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि मुकेश हम सबके दिलों की धड़कन हैं। हम खुश हों या उदास हों, जिंदगी का कोई भी पहलू चल रहा हो, मुकेश के गाने हमारी जिंदगी में एक साथ चलते हैं और न जाने कितनी पीढ़ियों ने मुकेश की आवाज के साथ अपनी जिंदगी का सफर तय किया है। आज हम मुकेश की याद को नमन करते हुए एक खास प्रोग्राम लेकर आए हैं और इस खास प्रोग्राम में दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं, तो उनका तारुफ कराने से पहले उनकी आवाज सुनिए।
1: होठ

0: बहती है,
1: जिस देश में गंगा बहती है,
0: जिस
1: जिस देश
0: देश में
1: में गंगा
0: गंगा
1: बहती
0: बहती
1: है।
0: है।
1: क्या बात है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है और जिस देश में मुकेश की आवाज गूंजती है। तो स्वागत करते हैं जाने माने गायक मुख्तार शाह का।
2: नमस्कार यूनुस भाई, और सभी सुनने वालों को भी आदाब।
1: और मुख्तार भाई के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं गोविंद मिश्र, जो मुकेश की आवाज हैं और बहुत प्यारे इंसान। बहुत स्वागत।
0: नमस्कार
1: थैंक यू
0: यूनुस भाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।
1: मुख्तार और गोविंद जी। आप दोनों सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी जिंदगी में मुकेश कहां से शुरू होते हैं?
2: जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं जब म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ता था यूनुस भाई, तब वो हमेशा ऐसे गाने का शौक तो कुदरती तौर से था, तो गाना ऐसे ही गाया करते थे। टीचर कभी बोलते थे तो ऐसे कुछ भी रैंडम गाते थे, लेकिन वो मैं मुकेश जी के गाने समहाउ मुझे बहुत पसंद थे और वही मैं गाया करता था। और जब मैं हाई स्कूल में आया तब वो कभी कभी फिल्म के गाने बहुत मशहूर हुआ करते थे उन दिनों, मैं पल दो पल का शायर हूँ,
1: वाह वाह,
2: तो वो गाना मैं अक्सर गाया करता था जब भी ऐसा टाइम पास के तौर पे स्कूल के अंदर कोई वो पीरियड अगर फ्री है या कोई फंक्शन में गेस्ट नहीं आए हैं तो उनको टाइम पास करने के लिए किसी को बुलाना है तो मुझे बुलाकर वो गाना गाने बोलते थे, तो मैं यही गाता था। तो मेरे जो दोस्त थे तो मुझे मुकेश मुख्तार की जगह मुकेश मुकेश बुलाने लगे,
1: वाह
2: तो
1: वाह
2: इस
1: वाह
2: तरह से
1: वाह।
2: मेरा जहन भी मुकेश जी की आवाज की तरफ ज्यादा,
1: ये किस शहर की बात है?
2: अहमदाबाद की, जहां मैं रहता हूं, मेरी
1: जी
2: तो
1: बिल्कुल।
2: पैदाइश वहीं की है।
1: तो अहमदाबाद में स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हुए आपका
2: जी
1: जो झुकाव है वो मुकेश के गानों की तरफ हुआ।
2: जी
1: अब गोविंद की तरफ बढ़ते हैं। गोविंद, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ?
0: जी मैं तो हमेशा दूसरे सिंगर्स के ही गाने गाता था, लेकिन क्या है कि कुछ जो जानकार लोग थे संगीत के, और जहाँ पे मैं सीखता था बेसिकली इलाहाबाद, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, अब वो प्रयागराज हो गया है, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप मुकेश को ट्राई कीजिए, आपकी वॉइस जो है थोड़ा सा ऐसा सिमिलर आता है। तो मैंने धीरे धीरे धीरे धीरे सुनना शुरू किया, और मुझे याद है एक बार कंपटीशन में मुझे गाने का मौका मिला, तो तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात
1: हाँ,
0: नहीं, वो गाने का मौका मिला,
1: क्या बात है।
0: और वो गाने के साथ वो फर्स्ट प्राइज जब मुझे मिला तब थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे बढ़ा, और उसके बाद धीरे धीरे मैं सीरियस होता गया
1: क्या बात है,
0: इसमें।
1: तो वही गाना सुनाइए फिर।

0: को चाहोगी तो मुश्किल होगी।
1: क्या बात है, क्या बात है। एक और बात गोविंद, के इलाहाबाद शहर में पढ़ रहे थे और कंपटीशन वगैरह की तो बातें हुई, पढ़ क्या रहे थे या नहीं पढ़ रहे थे?
2: बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ।
1: ओ हो, ये इंजीनियरिंग और गायकी
2: दोनों अलग अलग है। अभी म्यूजिक का शौक था और 4 साल क्लासिकल ट्रेनिंग मिली मैंने प्रयागराज संगीत समिति से, और फैमिली में ऐसा कोई म्यूजिक में था नहीं, बट मेरा झुकाव थोड़ा उधर था तो
1: बगावत करनी पड़ी कि अब इंजीनियरिंग नहीं करेंगे।
2: कुछ सालों तक तो मुंबई में आने के बाद तो घर वालों को पता ही नहीं था कि मैं शोज करता हूँ। मैंने हमेशा झूठी बोला कि मैं जॉब करता हूँ।
1: अच्छा, ये भी हुआ है?
2: हाँ, गांव में जनरली से मम्मी पापा को पैसे की जरूरत पड़ती थी तो हमेशा मंथली जो भेजना भेज दिया। उसके बाद उन्होंने कभी पूछा नहीं कि तुम क्या करते हो, कितनी सैलरी है, कहाँ का जॉब है। तो बस वो चलता रहा। धीरे धीरे जब ये फेसबुक और इंस्टा में और सारे सोशल मीडिया यूट्यूब में वीडियोज आने लगे तब थोड़ा हाईलाइट हुआ, तब

0: बताया कि भाई मैं शोज करता हूँ।
1: मतलब इंजीनियर नहीं है,
0: हाँ
1: सिंगर
0: नहीं जी।
1: है। मुख्तार भाई आपने क्या पढ़ाई की है भाई?
2: मैंने कॉमर्स ग्रेजुएशन के बाद फिर LLB किया।
1: अरे बाप रे बाप, ये क्या मामला
2: और
1: है?
2: मतलब मैं ऑफिशियली ऐसे, मेरा तो एनरोलमेंट है एज ए लॉयर। जब पढ़ाई करता तभी मेरा दिल था बहुत यूनुस भाई के LLB करूंगा और वकील बनूंगा,
1: जी
2: तो वो मैंने पढ़ाई कंटिन्यू रखी। थोड़ा सा गाने का सफर शुरू हो गया था कॉलेज के टाइम में,
1: हाँ।
2: और फिर मैं जब एडवोकेट हुआ तब मैंने 2 साल म्यूजिक छोड़ के वकालत भी की फुल टाइम।
1: ये इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है।
0: सच में
1: कोर्ट रूम में आप जो है वो जिरह कर रहे हैं, तो जिरह की बजाय गाना ज्यादा अच्छा लगता है।
2: लेकिन शायद ऐसा था, डेस्टिनी बोलते ना
1: जी,
2: कि
1: जी।
2: तो मैंने शुरुआत की क्राइम साइड, मेरा लीगल प्रैक्टिस है आज भी, मतलब मेरा एनरोलमेंट है
1: जी।
2: और तो लेकिन वो जहन से कलाकार था, तो क्राइम की प्रैक्टिस के अंदर बहुत ज्यादा मन बहुत सेट हुआ नहीं, तो मैं धीरे धीरे थोड़ा उससे दूर होता गया। और कुछ हालात भी ऐसे हुए कि मुझे ऐसा चूज करना पड़ा कि या ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी या ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी,
1: हाँ, हाँ।
2: तो ऑफ कोर्स म्यूजिक मेरा पैशन था तो वही फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा।
1: क्या बात है। अच्छा, तमाम शहरों में बल्कि दुनिया भर में आप मुकेश को गाते हैं। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो आपको कई बार गाने पड़ते हैं,
2: हाँ।
1: क्योंकि वो पॉपुलर गाने हैं
2: जी जी।
1: पर मैं यहाँ चाहता हूँ कि अपने मन का कुछ सुनाइए जो आप को कम गाने का मौका मिला।
2: अमूमन शोज में नहीं रखे जाते ऐसे बहुत सारे गाने जो बहुत खूबसूरत गाने, जैसे अगर मैं बताऊं तो सारंगा तेरी याद
1: क्या
2: में,
1: बात क्या बात, सरदार मलिक साहब का संगीत है
2: जी जी। तो ये गाने अमूमन से कम होते हैं, जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है।
1: वाह वाह वाह,
2: तो ऐसे कुछ गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन अमूमन कम गाने का मौका आता है।
1: एक गाना मुझे याद आ रहा है, पुकारो मुझे नाम लेकर पुकारो।
2: क्या बात है, वो भी डांसिंग का ही म्यूजिक है।
1: ये डांसिंग का म्यूजिक
2: तो दो लाइनें हो
1: जरूर।

0: अब आप लोगों से एक बहुत ही जज्बाती सवाल मैं करने जा रहा हूं कि अगर कभी आपकी मुकेश से मुलाकात होती तो क्या कहते आप?
1: ये इमेजिन करना ही एक अपने आप में थ्रिल है कि कभी मौका नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली के अपने जिंदगी के, हम तो बहुत छोटे थे जब उनका इंतकाल हो गया।
0: जी जी,
1: लेकिन यस, कभी अगर मौका मिलता तो शायद उस वक्त हम स्पीचलेस हो जाते।
0: बिल्कुल,
1: क्या कहें कि आप बहुत अच्छा गाते हो या बहुत अच्छे सिंगर हो, क्या कहें। तो मतलब वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल।
1: तो ऐसे ही मुकेश जी की आवाज और उनकी पर्सनालिटी एक हमारे लिए आइडियोलॉजी की तरह है।
0: बिल्कुल गोविंद, आप बताइए।
2: मैं तो मुख्तार भाई बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं क्या बोलता उस टाइम पे अगर वो मिलते तो, क्योंकि जब भी हम गाते हैं उनको या सुनते हैं तो ये सीरियस बात है कि आंख बंद करके जब भी उनको सुनते हैं तो मैं खाली एक ही चीज इमेजिन करता हूँ कि कैसे गाया होगा। इतने सरल स्वभाव के आदमी,
0: बिल्कुल
2: एकदम सीधा सीधा गाना और एकदम ना कोई ये वो ऐसा कुछ भी नहीं, सीधा स्ट्रेट गा के एकदम दिल पे उतर जाना। वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता, उड़ता नहीं उनको।
0: क्या बात। अच्छा, मुकेश ने बहुत सारे भजन भी गाए हैं और कुछ तो गैर फिल्मी है, तो कुछ आप सुनाना चाहेंगे?

0: क्या प्यारा भजन, क्या बात है। और यहाँ ये जिक्र करना बहुत जरूरी है कि मुकेश जी को रामचरितमानस जो है उससे बहुत लगाव था और उन्होंने पूरी रामचरित अपनी आवाज में रिकॉर्ड की थी। और जो फिल्म म्यूजिक के कदरदान हैं और जो मुकेश के भक्त हैं उनके लिए वो एक बहुत बड़े तोहफे की तरह है, एक बहुत जरूरी एक चीज है जो संग्रह में रखा जाना चाहिए। मुकेश जी को जब हम सुनते हैं तो कई बार ये एक चीज उभर के आती है कि वो सैड सॉन्ग्स के बादशाह हैं। आप लोग क्या मानते हैं कि क्या ये बात उनको सिर्फ सैड सॉन्ग्स तक महदूद करना या सैड सॉन्ग्स के बादशाह कहना सही है? मुख्तार भाई,
1: मैंने जैसा उनका इंटरव्यू में उनके जबान से ये सुना है कि उन्होंने कहा कि भाई अगर मुझे 10 ऐसे लाइट सॉन्ग दिए जाएं और एक अगर मुझे इमोशनल या सैड सॉन्ग दिया जाए तो मैं सैड सॉन्ग गाना ज्यादा पसंद करूंगा। कलाकार जो होता है, मेरा अमूमन मानना है कि हमेशा वो दिल से जुड़ा होता है।
0: बिल्कुल।
1: और जो इंसान दिल से जुड़ा होता है उसको हमेशा इमोशंस और फीलिंग्स उनसे बहुत लगाव होता है। और इसीलिए सारे कलाकारों का मैंने देखा है ज्यादातर वो लोगों को सेंटिमेंटल या इमोशनल और सैड सॉन्ग्स ज्यादा अच्छे लगते हैं।
0: क्या बात है, ये बहुत प्यारी बात कही है कि जज्बाती होते हैं कलाकार, इसलिए जो सैड सॉन्ग्स हैं उनसे लगाव होता है। मुकेश जी को खास तौर पर सैड सॉन्ग से जोड़कर देखा जाता है। गोविंद, आप ये मानते हैं?
2: यही इंटरव्यू, बिल्कुल यही इंटरव्यू मैंने भी सुना था मुकेश जी का। यही था कि 10 अगर रोमांटिक सॉन्ग मुझे दिया जाए और एक सैड नंबर दिया जाए तो मैं सैड को ही प्रेफर करूंगा।
1: लेकिन लेकिन उसके बावजूद मुकेश जी ने काफी सारे रोमांटिक गाने गाए हैं। और मैं तो इनफैक्ट बहुत मरतबा जब ऐसा सुनता हूँ कि जो ऑडियंस होता है कभी बोलता है कि अरे यार मुकेश जी का प्रोग्राम है तो फिर रोने वाले गाने होंगे, तो ये बातें सुन सुनकर मैंने एक पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया कि जिसका टाइटल रोमांटिक मुकेश।
0: क्या
1: तो मतलब 3 घंटे सारे गाने रोमांटिक और मुकेश जी के गाए हुए, तो लोगों को ऐसा होता है कि अच्छा इनके तो इतने सारे गाने रोमांटिक भी हैं।
0: ये बहुत जरूरी बात है। तो एक रोमांटिक गाना आप लोग दोनों मिलकर
2: चार

0: था।
1: वैसे मुझे तो गाना वैसे वापस मुझे भी मनोज कुमार जी वाला ही याद आया था, तौबे मतवाली चाल, लेकिन मैं सोचा मनोज कुमार जी का ज्यादा वो हो जाएगा तो राज कपूर जी का गाना
0: क्या बात है,

0: रोमांटिक गानों की बात हो रही है और अभी मुख्तार भाई आपने कहा कि मनोज कुमार के ऊपर और राज कपूर के ऊपर मुकेश की आवाज तो इस गाने को चुना जाए, किन हीरोज के ऊपर राज कपूर को छोड़कर, क्योंकि वो तो मुकेश राज कपूर की आवाज तो थे ही, सबसे ज्यादा अच्छी लगती है मुकेश की आवाज, ये सवाल गोविंद आपके पास भी आने वाला है।
1: अब मेरा मानना है कि अगर राज कपूर मनोज कुमार जी के बाद, मुझे पर्सनली फिरोज खान के ऊपर उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं।
0: वाह, मुझे एक बड़ा प्यारा गाना याद आ गया है।
1: अच्छा,
0: लेकिन देखते हैं कि आप उसको गाते हैं कि नहीं।
1: और वैसे तो सुनील दत्त जी पर भी हैं उनके गाने, शशि कपूर जी पर काफी सारे गाने, जितेंद्र पर बहुत सारे गाने।
0: हाँ।
1: तो लेकिन मुझे पर्सनली, मेरा मानना फिरोज खान में मुझे ज्यादा उनकी आवाज अच्छी।
0: तो कौन सा गाना चुन रहे हो आप?
1: जो

0: क्या बात है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत इंदीवर का लिखा हुआ ये गाना सफर फिल्म से, और विविध भारती पर हम यही बात कहते हैं कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। हम अपने लिसनर्स की पसंद का बहुत खास ख्याल रखते हैं और इसीलिए आज मुकेश जी को नमन करते हुए हमने आप दोनों को बुलाया। तो गोविंद, अब वही सवाल आपके पास आ रहा है,
1: शशि कपूर जी के ऊपर बहुत सारे फिल्म आए गए उनके गाने,
0: वाह वाह,
1: जैसे फिल्म कभी कभी का,
0: हाँ

0: अच्छा लग रहा है कि गानों की बारिश हो रही है और हम बहुत शिद्दत से मुकेश को याद कर रहे हैं। मुख्तार भाई, पूरी दुनिया में जाकर आप शोज करते हैं, मैं विदेशों में आपके शोज की बात करने जा रहा हूं, जहां कोई यादगार घटना बताइए।
1: यानी अमूमन तो जैसे हम अब्रॉड जो शोज करने जाते हैं तो ज्यादातर तो हमारा क्राउड जो होता है अपना एशियन, उसमें भी अपना इंडियन क्राउड और अड़ोस पड़ोस के देशों के भी लोग जो होते हैं हमारा हिंदी सिनेमा को बहुत पसंद करते हैं।

0: वो लोग ही प्रोग्राम देखने आते हैं। और यादगार में अगर मैं कहूँ तो मुझे हॉलैंड, नेदरलैंड एक ऐसी जगह लगती है कि जहाँ पर मैंने थ्रू आउट द वर्ल्ड देखा है कि रफ़ी साहब की पॉपुलैरिटी सारे प्लेबैक सिंगर्स में सबसे ज़्यादा है, एक्सेप्टेबिलिटी भी उनकी सबसे ज़्यादा है। लेकिन नेदरलैंड और सूरीनाम, क्योंकि ज़्यादातर नेदरलैंड से लोग जो हैं सूरीनाम से माइग्रेट होकर आए हैं, ये एक जगह मैंने ऐसी देखी जहाँ रफ़ी साहब से कुछ ज़्यादा मुकेश जी को लोग पसंद करते हैं।
1: क्या बात है, क्या
0: एक ही देश, इसलिए मुझे वो देश बहुत अच्छा लगता है।
1: वाह गोविंद, जब आप गाते हैं तो फरमाइशें किस तरह के गानों की ज्यादा आती
2: है? सैड नंबर की ज्यादा आती है।
1: और उसमें भी कोई खास गाना जिसको आपको तकरीबन हर शो में गाना पड़ता है?
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: अच्छा,
2: इसकी बहुत रिक्वेस्ट आती है।
1: हाँ, बहुत ही जज्बाती गाना है।
2: हाँ, सारंगा तेरी याद में, सजनवा बैरी हो गए हमारे, ये सब बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है।
1: सजनवा बैरी हो गए हमारे, ये गाना सुनते हैं।
2: सजन

0: कौन होगा जिसको इस फिल्म से प्यार ना होगा, है ना। तीसरी कसम फिल्म का कौन सा गाना है जो आपके दिल के करीब है?
1: वो गाने तो उस फिल्म के सारे ही अच्छे थे
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जो दूसरे दो गाने जो बहुत पॉपुलर हैं, सज्जन रे झूठ मत बोलो और दुनिया बनाने वाले, वो गाने भी इक्वली इतने अच्छे और मुझे पसंद है।
0: अच्छा, तो दुनिया बनाने वाले सुनते हैं आपसे।

0: जब आप लोग गाते हैं तो बिल्कुल यूं लगता है जैसे मुकेश जी हमारे सामने मौजूद हैं और गा रहे हैं। अपने गले का किस तरह से ख्याल रखते हैं आप लोग, बारी बारी से बताइए। पहले मुख्तार।
1: बिल्कुल, आप ये सवाल मुझसे करते तो मैं कहता पहले इनसे पूछिए।
2: अब पर्टिकुलरली यूनुस भाई, थोड़ा सा गले का ख्याल रखने में एक तो बात यही होती है कि थोड़ा सा अपने वॉइस के लिए जो भी मैं तो बाकायदा म्यूजिक सीखा नहीं हूं, लेकिन मुझे जो थोड़ा सा उटपटांग आता है वैसे थोड़ा सा रियाज करना सुबह में, वो थोड़ा सा करते हैं। गले के लिए खास सबसे पहला वही जरूरी होता है, और दूसरा ये होता है कि शो से 3-4 घंटा पहले तक कोशिश करते हैं और ख्याल रखते हैं कि कुछ फ्राइड कुछ नहीं खा लें या खट्टा कुछ ऐसा नहीं खा लें, और ठंडे का परहेज तो हमेशा रहता है थोड़ा।
0: गोविंद, आप
1: आइसक्रीम वगैरह तब चलता है जब 3-4 दिन का गैप हो, तो ऐसा लगता है कि भाई अभी गैप है खा लो। हाँ। थोड़ा सा कर सकते, थोड़ा फ्राइड चीज कुछ हुआ। हाँ। क्योंकि समोसा मोसा मुझे बहुत पसंद है।
0: अच्छा।
1: तो मैं देखता हूँ कि 3-4 दिन का गैप है तो मैं खा लेता हूँ, अदरवाइज नहीं खाता। और कोशिश करता हूँ कि नींद प्रॉपर लूँ जितना हो सके, 7-8 घंटे की नींद लेता हूँ। और सुबह उठना जैसा मुख्तार भाई ने बोला कि थोड़ा सरगम पे तो लगता ही हूँ, मतलब नोट्स पकड़ के एक एक नोट सा नींद आ पाए सरगम, वो एक एक नोट पे रहता हूँ मैं।
0: बिल्कुल।

0: इलाहाबादी व्यक्ति को दुनिया में बाकी जगहों के समोसे पसंद आते हैं?
1: नहीं आते, लेकिन अब वो टेस्ट ऐसा करता हूँ, चला इलाहाबाद में ही खा रहा हूँ।
0: अच्छा। खान पान का बाकायदा परहेज होता है?
2: थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा ख्याल तो रखना ही रहता है।
0: अच्छा, ये बताइए कि मुकेश की बहुत सारी गजलें हैं और उनमें से कुछ गजलें आपके दिल के बहुत करीब हैं, ये मुझे पता है, तो किन गजलों का?
2: खूबसूरत उन्होंने जो गैर फिल्मी ये गजल वगैरह उन्होंने गाई है
0: जी,
2: लेकिन मेरा जो पर्टिकुलर मुझे जो बहुत पसंद है वो है

0: क्या बात है, ये बहुत ही शानदार एल्बम रहा है जिसमें बहुत कमाल की गजलें हैं, हमसे भागा ना करो गजालों की तरह, मेरे महबूब नहीं ये नहीं। मुकेश जी ने गैर फिल्मी एल्बम बहुत सारे किए और वो दौर ऐसा था जब प्लेबैक सिंगर्स अपनी पसंद के गानों के लिए गैर फिल्मी एल्बम्स करते थे। लता जी ने किए, आशा जी ने किए, मन्ना डे ने बहुत सारे किए, रफी साहब की गजलें मौजूद हैं। तो अच्छा, गोविंद मुकेश के ही गाने आप सिर्फ सुनते हैं या जब सुनने की बारी आती है तो?
1: मैं सच बोलूं तो आने वाला एक्सेप्ट कर रहा हूं कि जब मेरा शो होता है, जब रिहर्सल होता है, रिहर्सल के एक दिन पहले ही मैं मुकेश जी को एकदम सीरियस होकर सुनता हूं।
0: अच्छा,
1: नहीं तो मेरे फेवरेट तो हमेशा रफी साहब रहे हैं। और
0: क्या बात है,
1: रफी साहब को मैं बहुत सुनता हूँ।
0: तो फिर अब मैं ये चाहता हूँ कि रफी साहब का एक गाना आप सुनें। ये तो अलग ही हो जाएगा मामला, है ना?

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

यार ये जो है ना ये अच्छा एक्सपेरिमेंट हो गया, अब मुझे आइडिया आ गया। अब मुख्तार भाई आपको भी रफी का गाना गाना पड़ेगा। ऐसा किसी ने किया नहीं होगा लेकिन यहाँ तो होगा ये।

0: पहली बार आपसे हमने रफी साहब को सुना कि
1: मैंने भी अच्छा मैंने भी
0: ये देखिए ये ऐसा सिर्फ आरती में ही पॉसिबल है, ऐसा शोज में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब अगर लोगों ने सुन लिया तो
2: हो सकता है कभी ऐसा कुछ फरमाइश आ जाए।
0: अच्छा, जब आप फुर्सत में होते हैं तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुकेश के गाने सुन रहे हों, तो किन किन कलाकारों के गाने सुन रहे होते हैं?
2: मैं रफ़ी साहब सभी के फेवरेट रहे हैं, उनके गाने बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, और ऑफ कोर्स मैं कभी किशोर कुमार जी के भी गाने कुछ मुझे पसंद हैं तो वो मैं सुनता हूँ अगर वक्त मिला तो।
0: गोविंद?
1: मैं गुलाम अली साहब को बहुत सुनता हूँ, खाली टाइम पे मैं गुलाम अली साहब को ही सिर्फ सुनता हूँ, बहुत मज़ा आता है उनकी हरकतों को, उनको सब एकदम ऐसा डूब जाता हूँ पूरी तरह से।
0: वहां हमने गजलों की बातें की तो यहाँ पर भी जो है, लेकिन अब ये कह के फंस गए गुरु।
2: मैं वो सोच ही रहा था,
1: सोच के जो है
0: चुपके चुपके रात दिन
1: चुपके

0: शिकाशी की का वो जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन।
1: एक पूरा दौर रहा है गजलों
0: यस
1: का, जब
0: यस
1: गुलाम अली के कैसेट्स कौन होगा जिसके कलेक्शन में नहीं हुआ करते
0: हाँ
1: होंगे।
0: एग्जैक्टली
1: आप लोग बहुत शोज करते हैं और ट्रैवल भी करते हैं अपने शोज के लिए। मुकेश की आवाज में अलग अलग गानों की अदायगी लाइव ऑडियंस के सामने, कितने दबाव और तनाव की बात होती है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और हर दिन एक जैसा तो नहीं होता है।
0: तनाव तो रहता है जब ये, क्योंकि कमर्शियल प्रोग्राम्स करने रहते हैं जहां लोग एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं आपके साथ के गानों के, एक तो वॉइस के अंदर रिजेम्बलेंस और उसके बाद उनके उनको गाना, तो उसका टेंशन तो हमेशा रहता है। इतने सारे मतलब इतने सालों से प्रोग्राम कर रहे हैं, इतने सारे प्रोग्राम कर चुके हैं थाउजेंड्स में, लेकिन अभी भी गाने का, और स्पेशल जब पहला गाना गाने स्टेज पर जा रहे होते हैं तो दिल ऐसा अंदर से धड़क तो रहा ही होता
1: क्या
0: कि
1: बात
0: भाई
1: है।
0: लोग एक्सेप्ट कर लें, आवाज ठीक से निकल जाए, आवाज चल जाए,
1: हाँ
0: क्योंकि वो हमारा क्रिएशन तो है।

0: हम किसी और का गाया हुआ गाना है और मुकेश जी की आवाज को उसको कॉपी करना है, तो वो थोड़ा सा भी अगर ऐसा सोचते अगर 5-10% भी अगर उसको जस्टिफाई कर सके तो, और मैं मेरे ख्याल से उतना ही करते हैं जिसके बदौलत लोग इतना प्यार देते हैं।
1: आप 5-10% नहीं करते हैं, आप इसका उल्टा करते हैं, मतलब 99% 100% करते हैं। गोविंद, कितना टेंशन होता है शो से पहले?
2: टेंशन तो बहुत रहता है, और जैसा मुख्तार भाई ने बोला पहले गाने के लिए सच में बहुत टेंशन रहता है, दिल से धक धक धक धक करता रहता है। और मैं तो ग्रीन रूम में हुआ, मेरा जब नंबर आने लगता, जैसे पहला गाना मेरा ही है तो मुझे टेंशन पहले स्टार्ट हो जाता है।
1: अच्छा।
2: और मैं कर्टन के सामने खड़ा भगवान को बोलता रहता हूँ, आप संभाल लेना, आप स्टेज संभाल लेना, बस और कुछ नहीं।
1: अच्छा, इस टेंशन को ईज करने के लिए क्या तरीका है आप लोगों का? गहरी गहरी सांस लेना, क्या करते हैं? जैसे इन्होंने कहा भगवान से कहते हैं भाई संभाल लेना।
0: ये तो सबसे बड़ी बात ही है, टेंशन को ईज करने के लिए
1: ऊपर वाले को
0: हाँ, उसको तो रिक्वेस्ट करना ही रहता है कि भाई संभालना।
1: बिल्कुल। एक चीज, हाँ, ये सवाल पहले आएगा कि मैंने आपको कई जगह गाते हुए देखा है कि आप लिरिक्स के साथ नहीं गाते, अमूमन आपको सब गाने याद हैं
0: जी,
1: ये कितनी चैलेंजिंग बात होती है? ऐसा नहीं लगता है कि कभी कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया?
0: नहीं, क्या है कि बचपन से एक गाने का जो शौक रहा, तो पुराने दौर में जब हम छोटे थे तो हम लोगों को पता है, हम फिल्में जब जैसे देखने जाते तो स्टोरी भी पूरी याद होती थी।
1: बिल्कुल।
0: और अपने दोस्तों में कभी डिस्कस करते थे कि ऐसा होता तो वैसा होता, तो वो गाने भी उसी वक्त से मुझे सारे गाने, इनसे इतना लगाव था, इतने दिल से जुड़े रहे इन गीतों के साथ, वो तब से याद हैं। तो वो आज तक ऐसे एक सिस्टम कुदरत ने अंदर इतनी मेहरबानी की है कि वो एक सेट रखा है कि मैं स्टेज पे जाता हूँ, मैं कभी ऐसा सोच कर भी नहीं जाता हूँ कि अच्छा इसका पहला अंतरा क्या है, सेकंड क्या है, वो स्टेज पे याद आते जाता है, वो
1: चलता चला जाता है।
0: हाँ,
1: तो कभी मैंने आपको लिरिक्स के साथ गाते हुए नहीं देखा, इसलिए मैंने कहा कि ये बात जो है ये तो पूछनी जरूरी है कि कितने गानों का खजाना दिमाग में जमा कर रखा है।
0: और वो मैंने क्या है कि कभी रखा भी नहीं रेफरेंस के लिए, मैं कागज इसीलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि जिस दिन साइकोलॉजी एक बैक ऑफ द माइंड मैंने मैसेज दे दिया कि अब भाई एक रेफरेंस के लिए है तो वो नजर वहां जाएगी। कहते ना कि अब जैसे बैंडेज खरीदते तो आपको चोट लगती है,
1: अरे
0: खरीदना ही नहीं चाहिए बैंड।
1: गोविंद, कितने गाने याद रहते हैं और डायरी की जरूरत पड़ती है?
2: हाँ, कभी कभी पड़ती है, जैसे मुख्तार भाई ने बोला अभी कि थोड़ा रेफरेंस के लिए ना, वो दिमाग में मेरे बैठ गया है वो चीज, कुछ लाइनों को देखना पड़ता है, मतलब बहुत बार गाया है लेकिन फिर भी वो देखना ही पड़ता है, होता है। लेकिन कुछ गाने बहुत याद है, कुछ गाने एकदम पूरे याद है, लेकिन कुछ गानों को जिनको मतलब अमूमन कभी नहीं गाया है या पहली दो बार गा रहा हूँ, दो तीन बार गाने के बाद तो वो याद ही हो जाता है।
1: फिर सालों से आप लोग शोज कर रहे हैं और एक तरह से शो जो है वो जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं, तब भी रिहर्सल कितनी मायने रखती है? हर शो के पहले एक रिहर्सल होती है।
0: मैं अब इन दिनों अभी काफी सारे मतलब रिहर्सल मैं स्किप करने लगा हूँ, बहुत नहीं जाता हूँ रिहर्सल में, लेकिन ये हाँ कभी जैसे प्यारे भाई का अगर कोई प्रोग्राम है या आनंद जी भाई के साथ करें, विजू भाई के साथ कर रहे हैं, तो वो रिहर्सल पर्टिकुलरली अटेंड करने जाता हूँ क्योंकि एक थोड़ा सा लर्निंग लेसन रहते हैं वहाँ पे। और बाकी अब म्यूजिशियंस और वो सब सारे इतने नोन हैं इतने सालों से, तो अब वो एक सबको एक लिस्ट दे दो और थोड़ा सा स्केल फोन पे डिस्कस कर लो तो काम वैसे चल जाता है।
1: बिल्कुल।
0: अनलेस के कोई ऐसा रेयर गाना गा रहे हो तो थोड़ा सा दिक्कत देखना पड़ा।
1: गोविंद, आप बताइए।
2: नहीं, रिहर्सल तो ठीक है, जो अगर हम रेगुलर गाने गा रहे हैं तो उसकी जरूरत तो नहीं पड़ती है क्योंकि सारे म्यूजिशियन भी वैसे ही हैं, और आज के टाइम पे चाहे सिंगर हो म्यूजिशियन हो, सब इतना मेहनती है, सब मेहनत करते हैं, सब अपना 100% स्टेज पर देते हैं, चाहे वो सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, साउंड हो, कोई भी हो। लेकिन हाँ, कुछ पर्टिकुलर कुछ अलग गाने मिल गए, कुछ कोरस वाले गाने मिल गए तो रिहर्सल की जरूरत पड़ती है।
1: बिल्कुल। मुख्तार भाई, बहुत सारे लेजेंड्स के साथ मैंने आपको शो करते हुए दिखा है
0: जी,
1: तो जैसे प्यारे भाई ही हैं
0: जी, जी।
1: या आनंद जी भाई हैं या और तमाम लोग हैं, मतलब सिंगर्स भी बहुत सारे तमाम लोगों के साथ, उनकी कुछ यादें हैं, उनके साथ शो की यादें हमारे साथ बांटिए।
0: मैं मतलब मैंने कभी अपनी जिंदगी में जब छोटा था, गाना मैंने शुरू किया, अहमदाबाद में था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कुदरत ऐसा मौका भी देगी कि ये लोगों के साथ मिलना होगा या इन लोगों के साथ कोई स्टेज पे खड़े रहने का मौका भी मिलेगा। तो मैं ऊपर वाले का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये मौका दिया। जैसा कि हम सुनते थे कि भाई ये जो लेजेंड्स होते हैं तो जब इनके साथ काम करो तो इनके काम करने का तरीका, इनकी डिटेलिंग, इनका ऑब्जर्वेशन, वो देखकर ही पता चलता है कि इसीलिए ये लोग महान हैं। तो जैसे कि मैं बताऊं कि अगर प्यारे लाल जी के साथ एक प्रोग्राम कर रहा था तो सारे म्यूजिशियंस बजा रहे हैं,

0: और जैसा मैं सुनता था तो वो मेरे साथ बात भी कर रहे थे, और वो जब जुम्मा चुम्मा दे दे वाला म्यूजिक आगे का चल रहा था, तो वो जैसे स्टॉप हुआ तो उन्होंने पर्टिकुलरली चार कीबोर्ड वाले थे, तो उसमें से एक ही कीबोर्ड वाले को उन्होंने बोला कि आप वो बजाइए, आप क्या बजा रहे थे, और वही इंसान गलती कर रहा था वो जगह पर। तो
1: इतनी
0: ये जो
1: बारीकी से
0: इतनी
1: वो
0: बारीकी से जो सुनना,
1: जी। और
0: ये
1: प्यारे भाई के बारे में ये बहुत मशहूर है कि वो 20 वायलिन में से भी एक को पहचान लेंगे कि तुम
0: हाँ,
1: गलत बजा रहे थे।
0: एग्जैक्टली
1: तो
0: एग्जैक्टली।
1: ये तो कमाल की बात है। उनके साथ बहुत रिहर्सल्स, बहुत शोज किए हैं आपने, तो कोई एक गुरु मंत्र जो उन्होंने आपको दिया हो।
0: मुझे वो ऐसा कहते थे कि आपके थोड़े से जो लैंडिंग, जहां आप नोट्स आपको करते हैं, वो थोड़ा सस्टेन करना या उसको थोड़ा सा करेक्ट करना, जो उन्होंने मुझे बताया था। तो वो एक उन्होंने मुझे बताया, और वो मैं कोशिश करता हूँ कि जैसा उन्होंने मुझे बताया है, तो लैंडिंग नोट्स को, जो गाना जहाँ से, जो लाइन जहाँ खत्म होती है, तो उसको जो सस्टेन करना, तो कोशिश करता हूँ वैसे ही करने की।
1: मुझे लगता है कि वो गाना जो आप कई बार प्यारे भाई के साथ स्टेज पर गा चुके हैं, वो जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली,
0: तार में सच
1: वो
0: कहना
1: गाना सुनते हैं आपसे।
0: तार

0: क्या बात है, इस गाने के बारे में जो एक ट्रिविया है वो भी बता दीजिए, द गुड द बैड द अगली।
1: वो जो म्यूजिक उन्होंने किया हाँ। तो मैं वो मुझे प्यारे भाई ने बताया कि हमने उसका बाकायदा पेड करके वो लिया हुआ म्यूजिक, किराया हुआ नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कमाल है कि इतनी बड़ी हॉलीवुड की फिल्म और उसका जो म्यूजिक है, वो जो थीम है, वहां से उन्होंने
1: जी
0: क्या शानदार तरीके से उसको गाने में बदला है, ये बहुत बड़ी बात है, कमाल की बात
1: है। एग्जैक्टली यस।
0: तो ये गाना पूरा सुनते हैं रिकॉर्ड से।

0: गोविंद अब आपकी तरफ आते हैं, तमाम तरह के शोज किए हैं, तो को सिंगर्स के साथ कुछ दिलचस्प अनुभव? कभी ऐसा होता है कि लाइंस भूल जाते हैं लोग या ऐसा कुछ?
1: हाँ, एडजस्ट करना पड़ता है, कभी कभी तो होता है। और काफी सारी फीमेल सिंगर के साथ जब मैंने गाए तो कई फीमेल सिंगर्स ऐसी थी जिन्होंने कोई कोई गाने में लाइन भूल जाती थी, तो वो याद मुझे रहता था, तो मैं खाली उस इशारा करके मैं संभाल लूंगा, मैं गा लूंगा, मैं दो लाइन तीन लाइन आगे गा के फिर उनको सपोर्ट करता कि अभी तुम गाओ।
0: क्या बात है, क्या बात है, ये भी करना पड़ता है। सर आप भी ऐसा करते हैं?
2: नहीं, आमतौर से ऐसा कभी, यस ऑफ कोर्स, अगर को सिंगर अगर है, कहीं हमारी गलती हो गई तो शायद उसने संभाल लिया, उसकी गलती हुई तो हमने संभाल लिया, पब्लिक को नहीं पता चले एज लॉन्ग एज, तो वो तो कोशिश तो करनी पड़ती है।
1: हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई नया गाना हो जिसका रिहर्सल नहीं हुआ हो टाइम कम की वजह से, तो हमें फीमेल सिंगर को बोलना पड़ता है कि काउंटिंग करके मुझे बताना मेरा स्टार्ट कहाँ से होने वाला है।
0: वाह वाह,
1: तो बता के वो पहले खाली ऐसे टच कर देंगे तो हम शुरू हो जाते हैं।
0: पब्लिक को समझ नहीं आता,
1: पब्लिक को समझ नहीं आता था बस।
0: एक चीज और बहुत ही जरूरी बात जो मुझे लगता है कि जो एस्पायरिंग सिंगर्स हैं उनके लिए बहुत काम की होगी, और वो ये है कि आप दोनों लोग स्टेज पर जब परफॉर्म करते हैं तो बहुत अदाबाजी के साथ नहीं करते हैं कि उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नीचे झुक गए, तिरछे हो गए, टेढ़ा मुंह कर लिया, आप लोग बहुत सलीके से और बहुत नफासत के साथ गाते हैं।
2: तो ये मेरे ख्याल से हम जिनके गाने गाते हैं मुकेश साहब के, तो उनके गानों की डिमांड भी वही है कि अगर उनको उसी तरीके से गाना चाहिए जैसा हम गा रहे हैं, शायद अगर हो सकता किशोर कुमार जी के गाने गा रहे होते तो उसकी डिमांड वो होती कि उसके अंदर थोड़ी चंचल, थोड़ा सा उछल कूद, थोड़ा सा ऑडियंस में चले जाना, या वो वहां होता।
0: बिल्कुल गोविंद,
1: मैं तो मुकेश जी के वीडियोस जितने देखे हैं उसमें उन्होंने सब सीरियस होके गाया है,
0: वो तो हार्मोनियम लेके
1: होता है, लेकिन वो एंट्री कैसे करना है, कैसे खड़े होना है, वो चीज मैंने मुख्तार भाई से सीखा है।
0: मैंने क्या बात है,
1: काफी शोज इनके साथ किए हैं तो मैंने इनको सिर्फ नोटिस किया है कि ये कैसे एंट्री कर रहे हैं, कैसे खड़े हैं, कैसे गा रहे हैं, कितनी सादगी से गा रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो इसीलिए मैंने ये बात पूछी,
2: इसीलिए आज मॉडेस्टी
1: नहीं, मैं बस वो चीज इनसे ही मैंने सीखा है। और सिंगिंग में भी बोलूं तो मुकेश जी को मैं सुनता हूं, लेकिन मुकेश जी को सुनने के बाद एक बार इनको जरूर सुन लेता हूं।
0: क्या बात है,
1: इन्होंने कैसे गाया।
0: अब मैं चाहता हूं कि आप दोनों लोग मिलकर कोई गाना गाएं, तय कर लीजिए कि वो कौन सा गाना होगा। मुखड़ा अंतरा, दूसरा अंतरा भी हम सुनना चाहेंगे, जितना आप गा सकते हैं। तो बताइए कि आप लोग कौन सा गाना चुन रहे हैं जिसमें एक शुरू करेगा, दूसरा उस गाने को आगे बढ़ाएगा, फिर अंतरे आएंगे।
2: यस, एक बहुत ही सच्चाई के पर लिखा हुआ जो गाना है, सज्जन रे झूठ मत बोलो।
0: क्या बात, शैलेंद्र जी का गाना, फिल्म का नाम तीसरी कसम, शंकर जयकिशन।
2: सज्जन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सज्जन रे झूठ मत बोलो,

क्या बात है, कितना शानदार माहौल आप लोगों ने बनाया, कितना अच्छा लगा। ये गाना भी ऐसा है जो एक जिंदगी का जरूरी सबक सिखाता है जी।

0: पार्श्वगायक मुकेश की याद में आज हमने एक विशेष पेशकश आपके सामने रखी। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद थे गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र। इनसे बात की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज आपने सुना इस बातचीत का पहला भाग। मुकेश जी से जुड़ी बातें और यादें इतनी सारी हैं कि इस कार्यक्रम का अगला भाग भी हम लेकर आ रहे हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन शाम 4 बजे। आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को पेश किया जुबैर खान ने। तो अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज पिटारा लाया था आज के मेहमान।
1: आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।

तो विविध भारती का सफर अभी के लिए बस यहीं तक। श्रोताओं, विविध भारती के कार्यक्रम आज आप फिर से सुन सकेंगे रात्रि 9 बजे FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

दुआएं तेरी जब खाली सी लगेगी और मन्नत के कलावे भी सुने सताएंगे, जिंदगी के उन कठिन पलों में, जिंदगी के उन कठिन पलों में आत्मबल के कुछ उत्साही बोल ही तुझे अपनाएंगे, आत्मबल के कुछ उत्साही बोल ही तुझे अपनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं युववाणी, मैं हूँ कंचन रोशन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की बात से, राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस। जी हाँ दोस्तों, 22 जुलाई जो कि 1947 से ही भारतीय इतिहास का वह गौरवशाली दिवस रहा है जब संविधान सभा ने भारत की आन बान और शान तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में अंगीकृत किया था। फ्रेंड्स, हमारा तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं बल्कि राष्ट्र की एकता, अखंडता, स्वतंत्रता, बलिदान और गौरव का अमर प्रतीक है। दोस्तों, हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आज उत्सव का माहौल है। आज जो तिरंगा हम गर्व से फहराते हैं

वह अचानक अस्तित्व में नहीं आया। वह कई दौरों के राजनीतिक संघर्षों और त्याग की कहानी कहता है। राष्ट्रीय ध्वज की जो यात्रा है वह बड़े उतार चढ़ावों वाली रही है। इतिहास गवाह है कि शुरुआत में विभिन्न ध्वज का प्रयोग किया गया। वर्ष 1906 में लाल, पीले और हरे रंग की पट्टियों वाला एक प्रारंभिक ध्वज फहराया गया था। समय के साथ इसका स्वरूप बदला। इसमें कभी सात तारों का समावेश हुआ तो कभी गांधी जी के सुझाव पर चरखे का प्रतीक भी शामिल हुआ। सबसे निर्णायक मोड़ आया वर्ष 1931 में, जब एक प्रस्ताव पारित हुआ, एक ऐसा ध्वज जो केसरिया, सफेद और हरे रंग की पंक्तियों के साथ चरखे को केंद्र में रखता था। इसके साथ ही इस ध्वज को सांप्रदायिक पहचान से परे संपूर्ण राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक बनाया गया। अंततः फ्रेंड्स, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे मुक्त भारतीय राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार किया। स्वतंत्रता के इसमें चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक का धर्मचक्र स्थापित हुआ, जो इस ध्वज को आज के रूप में, या हम यूँ कहें कि मूलतः जो अभी हमारे पास राष्ट्रीय ध्वज है उसके रूप में पूर्णता प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो हुई हमारी ध्वज की जो यात्रा है उसका सारा रूप। अब हम चलते हैं संगीत की दुनिया में, सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpress@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।
1: दोस्तों, देशभक्ति का हम सब के लिए निश्चित रूप से बहुत ही अहम ओहदा है। अगर हम बात करें दैनिक जीवन में इसका क्या अर्थ हो सकता है, कैसे हम देशभक्ति के मार्ग में प्रशस्त हो सकते हैं, तो दोस्तों, नागरिक होने के नाते सभी कर्तव्यों का पालन स्वेच्छा से करना बहुत ही जरूरी है। और इसी प्रकार का संस्कार, इसी प्रकार की आदत आने वाली पीढ़ियों में भी हम डेवलप करके काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ ही सामाजिक जिम्मेदारियों की बात करें तो कमज़ोर वर्ग जो हैं उनकी मदद करना, पर्यावरण की रक्षा करना, सामाजिक सद्भाव बनाए रखना, सभी प्राणियों जीवों का हित सोचना और किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना, इस प्रकार के छोटे जीव और प्राणियों को निश्चित रूप से जो हमारी शिक्षा है वो उसी समय काम आ सकेगी जब हम इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप में क्रियान्वित कर पाएंगे। और वास्तव में शिक्षा का सार्थक मतलब भी तभी बन पाएगा। और निश्चित रूप से इन सब चीज़ों को हमें समझते हुए आगे बढ़ते हुए कईयों को जोड़ने की भी मुहिम बनानी चाहिए ताकि हम और अधिक जागरूकता इन सारे विषयों को लेकर बनाए रख सकें। इसके साथ ही बात करें राष्ट्र की संस्कृति और विरासत के जो सम्मान हैं उसकी भावना को जीवंत रखना, उसे आगे बढ़ाना और उसके तहत ही हमें जिस प्रकार से हम अपने प्रयास कर सकते हैं उन्हें जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करना। दोस्तों, ईमानदारी और नैतिकता, अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में ईमानदारी और नैतिकता का पालन अगर हम करेंगे, सच्चे मन से अगर इस प्रकार से पालन करेंगे और यही सारी चीज़ें आदर्श के रूप में हमसे छोटे जो हैं आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं या हम यूँ कहें कि बच्चे हैं, भाई बहन हैं, वो सारे सीख सकेंगे और राष्ट्र के प्रति जो सच्ची सेवा है उसको भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। राष्ट्रहित में कार्य करते हुए हमें व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में कार्य करने वालों का ग्रुप बनाना होगा। नवाचारों के साथ, तकनीकी और वैज्ञानिक सोच के साथ जो पर्यावरण है, प्रकृति है, उसको संरक्षित करने और प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी अलग अलग प्रकार के कार्यों के माध्यम से अपनी आहुति देनी होगी। यही सारे कार्य हैं जो हमारे देशभक्त होने का परिचय भी देते हैं और आने वाले समय की आवश्यकता भी है। दोस्तों, यहाँ सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
6: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
5: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
7: दोस्तों, हम बात कर रहे थे देशभक्ति और हमारी जो ड्यूटीज़ है देश को लेकर उसकी। जी हाँ, देशभक्ति को दैनिक जीवन में कई तरीक़ों से प्रदर्शित किया जा सकता है। अगर हम बात करें अपने आसपास, स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है नागरिक अपने एरिया में स्वच्छ एरिया को स्वच्छ रखना, उसमें अपना योगदान देना, उसके लिए एक ग्रुप बनाकर कार्य करने की जिम्मेदारी ले सकता है। इसके साथ ही जो शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार करके भी गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हुए उनको आगे बढ़ने में मदद करके और स्वयं शिक्षा प्राप्त करके ज्ञान का जो प्रसार है वो करके भी राष्ट्र के विकास में वह योगदान दर्ज कर सकता है। इसके साथ ही जो स्थानीय उत्पाद है उनको खरीद के और उनका उपयोग करके स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करके हम काफ़ी हद तक अच्छा कार्य कर सकते हैं। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकना और उसका संरक्षण करना देशभक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू हमेशा से रहा है। निश्चित रूप से हमें इसको लेकर भी एक्टिव होना होगा। साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना और उसे रोकने में अपनी मदद करना भी राष्ट्र के प्रति एक सच्ची सेवा की भावना को प्रदर्शित करेगा। दोस्तों, देशभक्ति केवल एक भावना ही नहीं बल्कि ये एक जिम्मेदारी भी है। एक राष्ट्र का विकास और प्रगति उसके नागरिकों के योगदान पर ही निर्भर करती है। जब नागरिक अपने दैनिक जीवन में देशभक्ति का प्रदर्शन करते हैं तो वह राष्ट्र के प्रति अपनी जो प्रतिबद्धता है उसको मजबूत कर रहे होते हैं और एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का जो निर्माण है उसमें योगदान देने का भी यही तरीका है। देशभक्ति सामाजिक एकता और सद्भाव को तो बढ़ाती है, साथ ही इसमें राष्ट्र के प्रति प्रगति भी दर्ज की जाती है। भारत में देशभक्ति की भावना के बहुत से उदाहरण सदियों से चले आ रहे हैं और हमें भी इसी प्रकार का उदाहरण एक आदर्श के रूप में कायम करना होगा। दोस्तों, ये तो बात हुई हमारे ड्यूटीज़ को लेकर। अब हम चलते हैं संगीत की ओर, सुनते हैं ये सॉन्ग।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagaur@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagaur@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

0: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 015-82-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: जब तक हार के हम बड़ा चूर होंगे, प्रकृति के सामने बहुत मजबूर होंगे, उन कंटक जैसी परिस्थितियों में आत्मविश्वासी व्यक्ति ही बस हिम्मत से भरपूर होंगे, आत्मविश्वासी व्यक्ति ही बस हिम्मत से भरपूर होंगे। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ आज का युवाणी बस यहीं तक। आपकी दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

युववाणी अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरवी चैनल है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम पणिहारी।

गिरनों बुरो कोनी पर बहना गिर के उठनो सीख, हर मुश्किल में ढूंढ जो जीवन री नई सीख। ये प्यारी सी बात के साथ मैं धीरज लाल नेचा हाजिर हूँ आप रे मन पसंद कार्यक्रम पणिहारी में। राम राम सा बहना बहना, आज रो जमानो चुको है वो घनी तेज चाल सु चाल रियो है, और हर रोज आपा देखा हाँ कि कितनी नई तकनीक है या जगह सोशल मीडिया है, ऑनलाइन जिकी पढ़ाया हो रही है और नई जिकी दुनिया भरी जिकी जानकारियाँ ये सब आपा ने एक क्लिक के माते ही मिल जाया करे है। तो देखो बहना, आज रही जिकी पीढ़ी है जितनी नई चीज़ें सीख रही है, बीती कई चुनौतियाँ भी के सामने आर खड़ी हो जाया करे है। तो देखो बहना, एड़ा बदलता समय के मायने सबसे ज़्यादा जो को बदलाव है अगर कोई महसूस कर रही है तो बा है अपनी युवा होती पीढ़ी, है ना। और खास कर देखो बहना, आप बात करा ना बेटियाँ की, तो बेटियाँ जकी है बेटियाँ एक तरफ तो देखो बहना, आप पढ़ लिख कर आपरे सपना ने पंख देवनी चाहे है, तो दूसरी तरफ वो जो को समाज है, परिवार है, और इसके अलावा बिना आपरे करियर, सोशल मीडिया और सुरक्षा, रिश्ता जेडी कई जिम्मेदारियां भी आर सामने खड़ी हो जावे है। तो बहना, बेटी के साथ है तो आपा ने ही आनो पड़ी, है ना, और बेटी रे मन की बात भी आपा ने ही समझनो पड़ी। तो आपने माते मोटी जिम्मेदारी है, क्योंकि देखो बहना, बेटी जकी है बा पिता से ज़्यादा माँ आपके मन की बात कह सके है, हर तरह की बात बा कह सके है। आज देखो जब आपा अखबार खोला और खबरां पढ़ा तो कई कटी आपा देखा कि बेटियां जकी है बे देश विदेश के मायने सफलता रा झंडा गाड़ रही है, और कटी आपा कुछ एड़ी घटनावां भी अपने सामने आ जावे जका सु मन जको है बहुत ज़्यादा दुखी भी हुए है। तो बहना, केवल चिंता करण सु काम नहीं चालेला, अब आ टेम है और जरूरत भी है बहना कि डांट डपट सु ज़्यादा आपा बैंक माते विश्वास करा, रोक टोक सु ज़्यादा आपा बैंक को बात करा, और बहना डर सु ज़्यादा आपा बहने समझदारी सु बहने बात करा। देखो बहना, युवा अवस्था जकी है आ जीवन रो सगलो संवेदनशील जको पड़ाव हुआ करे है, को बहना ये उम्र के मायने बेटी केवल शारीरिक रूप से ही बड़ी नहीं हुआ है बल्कि बीरी जकी सोच है, बिको व्यवहार है, एक के मायने भी बदलाव आवे है। तो बहना, जरूरत है कि परिवार जिका है बिने सही दिशा देवे, और को मजबूत व्यक्तित्व जद ही बनेला जद आपा बी के साथ खड़ा होवला बहना। बहना, बेटी सो खुलकर आपने बात करनी चाहिए। अब देखो बहना, कहवे है ना कि बेटी जद बड़ी हो जावे है आ माँ की सहेली बन जावे है। क्यों सहेली बन जावे? बेटी आपरी मन की बात चकी है एक सहेली की जिया ही माँ ने कहवे भी है, और लेकिन कई बार देखो बहना शर्म की वजह से और झिझक के कारण मन री बात बता नहीं सके हैं, लेकिन अगर अपन व्यवहार बी के साथ एकदम मित्रता पूर्वक होवेला तो बा आपरी मन की बात खुलकर था के साथ कर भी सकेला। अब देखो बहना, कई बार एड़ी घटनावा भी बेटी के साथ घटित हो जावे तो बा डरती केवे कोनी कि समाज काई केवेला या परिवार काई केवेला, माँ काई केवेला, कठी मारी पढ़ाई तो नहीं छुड़ाई देवेला, कठी ई चीज को दोष जको है मन खुद ने नहीं दे देवेला। तो ए एड़ी चीजा जकी है बेटी के मन में घर करती जावे है, और ई वजह से बेटी जकी है बा अपना लोगों से ही दूर होती चली जावे है। तो ध्यान आपने वो रखना है बहना कि बेटियों से आपने बातचीत करनी चाहिए, हर जो भी विषय है, बड़ा बच्चा को विषय, हर तरह की बात, चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे भी किसी की सहेलियाँ की बात हो, है ना, तो हर विषय माते आपने बातचीत करनी चाहिए बहना। और बच्ची अगर पढ़नी चाह रही है, आगे बढ़नी चाह रही है, आपका सपना पूरा करनी चाह रही है, तो बिने पूरा करण में आपने पूरी पूरी मदद करनी चाहिए। अक्सर वो हुआ करे बहना कि आपा तो बेटा की पढ़ाई माते तो घणो ही ध्यान देवा, बेटा की पढ़ाई माते खर्चो लाग रियो है, तो भी किया ही कर, भले आपने उधार ही लेना क्यों नहीं पड़ जावे, फिर भी आपा भी बेटा की पढ़ाई वास्ते जुगाड़ कराई हाँ। लेकिन जब बात बेटी की आ जावे तो स्थिति पूरी ही बदल जावे है। आपा सोचा हाँ कि बेटी तो आगले घरे जासी, आपा ने इतुनियाल बानी करेला, और भी की पढ़ाई वास्ते रुपया उधार लेनो आ तो बहुत बड़ी बात हो जाया करे बे ना। यहाँ तो माता पिता सोचे ही कोने कि बेटी की पढ़ाई वास्ते आपा उधार लेर भी ना पढ़ावा। लेकिन देखो बहना, अगर आपा भी ने पढ़ावा तो थे वो सोचो कि बाकी उम्र भर आपकी पढ़ाई के दम माते भी सोरी रेवेला, आत्मनिर्भर बनेला, पूरी उम्र बा
किसी और की मोहताज नहीं हो वेला। तो आ चीज़ भी तो आपने सोचनी चाहिए ना। तो और भी ने पढ़ाई भी पूरी करवानी चाहिए। अक्सर वो भी देखा हाँ कि बहना की कम उम्र के मायने बच्ची को ब्याह भी कर दियो जावे और इस वजह से बच्चे की पढ़ाई भी छूट जावे। बड़ी बहन की शादी हो रही है तो छोटी बहन ने भी साथे साथे पढ़ना ही देवे और पढ़ाउन के बाद में पछ तो आप सोच ही लो कि पढ़ाई कितनी खूब है ना। तो आपा वो ध्यान रखा बहना कि बच्ची के साथ है, मतलब आपा अगर खड़ा हो वहाँ तो जरूर बिना बाबी मजबूत होवेला, बिको व्यक्तित्व मजबूत होवेला, बिक माइन आत्मविश्वास आवेला। और दूसरो बात बहना कि अब बार देखो घणो ही सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा चल रही है, भी मैं हर तरह का जगह लोग है, मतलब भी अपने अच्छी चीज़ा भी सीखने मिले और बुरी चीज़ा भी अपने साथ हो सके है। तो हर चीज़ सु आपने अवगत करवानो चाहिए बच्चे ने कि भी को उपयोग जो को है वो एकदम सावधानी पूर्वक करनो चाहिए है। तो बेटी ने देखो बहना डर के मायने जीवनों में सिखाई जो, बल्कि भी ने सिखाई जो कि किया भी ने सजग रहनो है, किया सजग रेर बा किसी भी मुश्किल घड़ी सु निकल सके है ना। तो बेटी ने कुछ देखो बहना आपातकालीन जका नंबर है बेबी भी ने बतायोड़ा राखना चाहिए है कि अगर कोई एड़ी बुरी स्थिति के मायने बा फंस भी जावे तो भी ने ध्यान होना चाहिए कि किया भी ने निकलनो है। और भी ने भरोसा भी दिलाओ बहना कि हर परेशानी के मायने मैं थारे साथे खड़ा हाँ। तो बहना देखो बार मैं थाने भी बता दूं कि 181 जका नंबर है ये महिला हेल्पलाइन का नंबर है, इसके अलावा 112 जका नंबर है 112 ये पुलिस आपातकालीन सेवा का नंबर है, और इरे अलावा 1098 ये है चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर। तो ये आपने बच्चियां ने बताना चाहिए बहना। तो बहना बाता तो आप यहीं चलती रहेला, और भी घनी सारी जानकारी वाली बाता आप करा, लेकिन अबार वक्त है कि थाने एक प्यारो सो गीत सुनाई दियो जावे। तो सुना बेना वो गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।
1: देखो बेना, समय रे साथे साथे लोगों रो जो जीवन है वो पहला सु तो घणो ही सुविधाजनक तो हो ही गयो है। जो को देखो आपा काम हाथ सु करता और भी काम में घनी टेम भी लागती और मेहनत भी लागती, लेकिन आज जो को जीवन सोरुइयाँ भी हुई है, क्योंकि देखो कितनी सुविधाजनक चीज़ें जकी है, सामान जका है आपा घर के मायने ले रहे गए। हाँ जी, हाँ कि मतलब ठंडी हवा खानी है तो कूलर आपने तैयार है, पंखा है, ठंडो पानी पीना है तो फ्रीज तैयार है ना, कपड़ा धोने वास्ते वॉशिंग मशीन है, मिक्सर है, टीवी है, मतलब हर सुविधा जकी है बा आपने है। लेकिन अब देखो बेना, अब ये चीज़ा आप खरीदने वास्ते आप हजारों रुपया खर्चा करा भी हाँ, और इनके वास्ते एक एक रुपये जोड़ बचत भी कर इन्हें ले रहा हाँ। पर अगर घर लाया पछे अगर आप बैंक को सही रख रखाव नहीं करा तो वो सामान जो को है भी की उम्र कम तो होवेला ही ना, है ना, वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। इसके अलावा जकी रुपया की बर्बादी है आ भी अलग, क्योंकि देखो बार बार बार चीज़ अगर जल्दी जल्दी ख़राब हुई तो भी की बार बार आपने मरम्मत भी करवानी पड़ सी और बिजली री भी ज़्यादा खपत होवेला। तो आप वो ध्यान रखना है कि देखो बेना, एक समझदार जकी गृहिणी हुआ करें ना, बा न केवल घर ने साफ सुथरों रखे बल्कि घर के मायने जका मौजूद हर सामान है बैंको भी बात ध्यान रखे। तो देखो अब अगर आपने घर के मायने बढ़िया सो फर्नीचर है तो आप भी को भी ध्यान रखा, ताकि भी के मायने कोई तरीके को मतलब दीमक वगैरह है वो नहीं लागे। सूखा कपड़ा सुबह की साफ सफाई करा, समय समय माते भी अगर पॉलिश करवावा, और दूसरी बात अगर पानी वाली जगह सुबह ने दूर रखा तो फर्नीचर जो को है बहना वो लंबे समय तक चाल तो रेवेला। और अपने समय समय में आते जाँचनों भी चाहिए कि कटी दीमक नहीं आएगी है ना। और ये अलावा देखो बेना, घर के मायने फ्रीज है तो फ्रीज को भी आप ध्यान रखा, पीछे भी के हवा लागनी चाहिए तो ई वास्ते दीवार सुबी ने अपने थोड़ा दूर रखना चाहिए। और देखो अब जहाँ की गर्मी है तो आप बार बार अगर फ्रीज खोल रही है हाँ तो बिजली जकी है बात ज़्यादा खर्च हुआ करे और फ्रीज जो है वो जल्दी ठंडो भी नहीं हुए है, तो आज चीज़ भी अपन ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा कूलर को भी रख रखाव करना चाहिए। कूलर हूँ आप देखो ठंडी हवा तो खावा हाँ, लेकिन अगर भी कि कूलर की घास चुकी है आज समय समय माते बदल देवा तो बहुत ही बढ़िया रेवेला। और भी कि पानी री टंकी है आप भी अपन साफ रखनी चाहिए, ताकि एक तो बदबू भी नहीं आवे, दूसरा जगह मच्छर है बेबी पनपेला नहीं। तो एक कुछ बातें हैं बेना। और इसके अलावा देखो बेना, पंखा है, मिक्सर है, वॉशिंग मशीन है, एक भी अपने जकी है नियमित साफ सफाई रखनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए है। तो बेना अगर आप कुछ इस तरीका से आप अगर सामान अगर भी लेर आवा और बेको ध्यान भी रखा तो भी की उम्र बहुत बढ़ेला और आपने ध्यान रखना भी चाहिए। तो देखो बेना अब वक्त हो रही है कि थाने एक और गीतारी दुनिया में लेर चला और सुनावा और प्यारो सु गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
4: बहना देखो, आज पूरा दिन कितनी ज़्यादा उमस हुई ओड़ी ही, और लेकिन फिर भी देखो बरसात तो हुई को नहीं, है ना। पर बरसात थोड़ा दिना पहला कितना ही दिन हो गया भी बात ने, और कितना दिना पहला बरसात हुई थी, लेकिन अब देखो मौसम तो वाकई में मानसून रो है लेकिन बरसात नहीं हो रही है। आपा देखा बहना कि आज सो 10-20 साल पहला थे विचार करो कि मौसम आज रो मौसम और जो को इतना साल पहला रो मौसम में कितो ज़्यादा फर्क पड़ गयो है। पहला बरसात रो भी अपनो एक समय हो तो सर्दी अपनी चाल सो आती, गर्मी भी एक सीमा तक रहती, पर अबे कदे तेज गर्मी हुए, कदे बिन मौसम ही बरसात, और कदी तो मतलब कठी कठी तो आप देखा कि इतनी ज़्यादा ओलावृष्टि हो रही है और कदी लंबा समय तक सूखो पड़ियोड़ो रहे हैं, है ना। मतलब कि चटे पानी चीज है बटे इतनी ज़्यादा बरसात नहीं हो रही है, कटे किसान तो मतलब भी पानी वास्ते तरस ही जावे है। तो वो बदलाव जो को है बहना केवल मौसम रो नहीं है बल्कि वो प्रकृति रो एक संदेश है। आपने धरती माँ जिकी आपने अन्न देवे, पानी देवे, शुद्ध हवा, जीवन जीने री हर सुविधा देवे, आपा बदला में सोचो काय देवा धरती माने। आपा देर यहाँ बढ़तो प्रदूषण, प्लास्टिक रो ढेर और पेड़ा री जी की कटाई कर रही हैं आपा, पानी री बर्बादी। देखो बेना वैज्ञानिक जगह है बे आंकड़ा निकालिया है कि धरती रो जो को औसत तापमान है वो पहला सू 1.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुके है। तो आंकड़ो छोटो लागे है पर अक्सर मतलब इको जो को असर है ना बहना वो पशुधन माते पड़ रही है, पेड़ पौधा माते पड़ रही है, खेता में पानी सेहत माते कितो ज़्यादा पड़ रही है। धरती माँ ने बचावन वास्ते केवल आपा मतलब आपा सोचा हाँ कि केवल आपा पेड़ पौधा लगा दिया बस आपानी जिम्मेदारी पूरी, आ नहीं है बहना। छोटा छोटा काम रही जिके आपा आदत बना लेवा बेकाम ने, तो अगर आपा एक चीज़ें की शुरुआत करा तो वास्तव में बड़ा बदलाव आ सके है। जिया कि अगर आपा पानी री बचत करा, क्योंकि देखो एक एक बूंद जकी है अमूल्य है, तो बरसात रो जो को पानी है इन्हें भी बचावन रो अपने उपाय करना चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेड़ भी लगाना चाहिए, हर घर एक पेड़ हर वर्ष। तो आ चीज़ अगर आप सोच लेवा तो पेड़ों की संख्या भी ज़्यादा होएला। और इसके अलावा देखो बिना आप अगर प्लास्टिक रो उपयोग कर रही हैं हम तो एक उपयोग एकदम कम कर देना चाहिए। आप वो कर सका कि कपड़ा री या जूट री जी थैली है आ काम में ले सका, है ना। और इसके अलावा देखो घर और गाँव ने भी आपने स्वच्छ रखना चाहिए, जो कुछ जैविक कचरो है वो खाद बनावन रे काम आ जाया करे है। और ये तो आप ध्यान रखा यहाँ, इसके अलावा पक्षियों को भी अपन ध्यान रखना चाहिए, जीव जंतुओं को भी ध्यान रखना चाहिए, परिंडो है और दाणो बिंको पानी को आप अगर ध्यान रखा ला तो आ भी एक प्रकृति की सेवा है बहना। तो बहना आप इस तरीके से अपने धरती माँ की जिके अपने आपने सेवा कर रही है तो भैया आपा भी जिके अपनी जिम्मेदारी है यह पूरी कर सका हाँ। तो बहना वक्त हो रही है कि थान एक प्यारो सो और गीत सुनाई दियो जावे, तो सुना बहना वो गीत।

बढ़िया। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम श्रोताओं आकाशवाणी नागौर का। ये चिरमी चैनल है, शाम के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। इससे पहले सुबह अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: उधर राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही तीसरी बार स्थगन के बाद दोपहर में फिर शुरू हुई, तब भी विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन में चलाने में सहयोग करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
2: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को

0: करना, उसका समाधान करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा स्थिति के कारण झंडेवालान मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिया है। इससे पहले 16 मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा की गई थी। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिये शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। शुरुआती खबरों के अनुसार सुरंग में 25 लोग फंसे हुए हैं। हालांकि खराब मौसम के कारण बचाव कार्य प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन तक तेज बारिश हो सकती है। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आज महिला सिंगल्स मुकाबले में सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आज आप सुनेंगे कुछ बारिश से जुड़े नगमे। बारिश केवल मानसून नहीं है, ये बरसती बूंदे हैं, जीवन का संदेश देती है और ये है दुआओं का एक असर। प्रकृति की मधुर संगीत के साथ टिप टिप बरसता पानी देता है हर शख्स को नई जान। किसान लोग बड़ी बेसब्री से करते हैं इंतजार कुछ इस तरह से।

0: मंगेशकर और सुरेश वाडेकर के मिले जुले स्वरों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म वारिस का नगमा।
1: वर्मा मलिक के शब्दों को सजाया था संगीत से उत्तम जगदीश ने। FM 103.7 MHz पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं RJ महावीर के साथ फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की अगली पेशकश इस ब्रेक के बाद।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: बात कर रहे हैं बारिश की। अपने आप में सुकून, मानसून से पहले रहता है इसका इंतज़ार। चेहरे पे मुस्कान आ जाती है जब भी बारिश की बूंदें धरती पर गिरती है और हर मन नई उम्मीदों के साथ क्या उठता है, वाह बारिश आ गई है। बरसात की हर बूंद अपने आप में एक एहसास है भीगे हुए समय का। मिट्टी की सौंधी खुशबू देती है दिल को एक नया सुकून। श्रोताओं बातें हम यूं ही जारी रखेंगे इस ब्रेक के बाद।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: बारिश की हर बूंद एक नया एहसास है, एक उम्मीद है, एक आस है हर व्यक्ति के लिए और दिल इसीलिए कह उठता है कुछ इस तरह से। लीजिए सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक को फिल्म मोहरा में। आनंद बख्शी के बोलों को संगीतबद्ध किया है विजू शाह ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: भीगती रहे राहें, महकती रहे फिजाएं और ठंडी हवाओं के साथ बिजली की कड़क और दिल की तड़प कुछ इस तरह से बयां करती है कि बारिश अब तो आ जा। बातें हमारी यूं जारी रहेगी इस ब्रेक के बाद।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: बात कर रहे थे बारिश की, बरखा की रिमझिम दिल को अजीब सा सुकून देती है। एहतियात बरतने की बात यहाँ नहीं आती है, दिल झूम उठता है जब बारिश का मौसम होता है और सावन की दस्तक कुछ इस तरह से।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: ब्रेक से पहले भी आप सुन रहे थे किशोर दा को फिल्म मंजिल मंजिल में। योगेश के बोलों को संगीतबद्ध किया था राहुल देव बर्मन ने। और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। अब आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर।

0: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम मार्टी के स्वर, जिसमें आज के कलाकार हैं सीमा मिश्रा और साथी। कार्यक्रम की अगली पेशकश इस ब्रेक के बाद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर, जिसमें आज के कलाकार थे सीमा मिश्रा और साथी। श्रोताओं, ये आकाशवाणी नागौर का चिरमिरी चैनल है। शाम के 6:30 होने को है। कुछ ही पल में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात होंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में संसद में चर्चा के लिए तैयार। जयपुर में भाजपा और कांग्रेस ने पैदल मार्च कर एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर मेट्रो फेज टू के लिए सीतापुरा में भूमि पूजन किया। और प्रदेश में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लिए सरकारी अस्पतालों में प्रसव सखी व्यवस्था शुरू होगी। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन, और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, किंतु उन्होंने इस पर बाधाएं खड़ी की, जिससे मालूम होता है कि वे संवाद में शामिल नहीं होना चाहते हैं।
1: जो ऑपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन रखा गया। इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से भी नई दिल्ली में इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने विद्यार्थियों के संघर्ष को वास्तविक बताया। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर नए सिरे से काम करने की जरूरत पर जोर दिया। इधर प्रदेश में भी इस मुद्दे को लेकर भाजपा और कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के प्रदेश मुख्यालय की ओर कूच कर अपना विरोध जताया। भाजपा के पैदल मार्च को पुलिस ने पानी की बौछार कर रास्ते में रोक दिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता की ओर से प्रधानमंत्री आवास के बाहर दिए गए धरने को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। कांग्रेस की ओर से किए गए प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर मेट्रो फेज टू का भूमि पूजन किया। सीतापुरा स्थित मेट्रो यार्ड पर यह कार्यक्रम रखा गया।

0: इसके बाद श्री शर्मा ने मानसरोवर से छोटी चौपड़ तक मेट्रो में सफर भी किया। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रो के विस्तार से सार्वजनिक परिवहन को नई गति मिलेगी।
1: जयपुर के लिए मेट्रो बहुत आवश्यक हो गई थी। अभी जो हमने रूट लिया है वो प्रहलाद पुरा से लेकर के टोड़ी मोड़ तक लिया है। मैं जयपुर वासियों और राजस्थान वासियों को इस बात के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि इसका काम बहुत ही तेज गति से होने वाला है और ये जयपुर की लाइफ लाइन बनेगी। आने वाले समय में फेज 3 भी आएगा, फेज 4 भी आएगा।
0: 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की मेट्रो परियोजना के इस दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से टोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इस पर और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ये परियोजना केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऋण से वित्त पोषित होगी। इसका निर्माण कार्य सितम्बर 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जयपुर मेट्रो के फेज 2 कॉरिडोर में 34 एलिवेटेड और 2 भूमिगत स्टेशन होंगे। इसका इंटरचेंज खासाकोटी पर होगा। वहीं परियोजना के तहत सीतापुरा में अत्याधुनिक मेंटेनेंस डिपो भी बनाया जाएगा, जहां मरम्मत और रखरखाव की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मेट्रो का विस्तार राजधानी जयपुर के बढ़ते यातायात को व्यवस्थित करने में अहम भूमिका निभाएगा। ये रोजाना लाखों यात्रियों के सुरक्षित और सुविधाजनक सफर का आधार बनेगी, साथ ही राजधानी के विकास को नई गति देगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में प्रस्तावित नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से पहले व्यापक प्रशासनिक फेरबदल के निर्देश जारी किए हैं। चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि गृह जिले, गृह नगरीय क्षेत्र और गृह पंचायत समिति में तैनात अधिकारियों के साथ लंबे समय से एक ही स्थान पर काम कर रहे अधिकारियों को चुनाव से पहले हटाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि संबंधित विभागों को 15 अगस्त तक स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है।
3: नगरीय निकायों का हम पहले तो इनका चुनाव कराएंगे, जो लगभग 35 दिन का कार्यक्रम होगा और 2 चरण में ये संपादित होगा। पिछले 4 साल में 3 साल जो है, अगर वो उसी जिले में पदस्थापित रहे हैं किसी भी कैपेसिटी में, तो एक तो उनका ट्रांसफर हो और दूसरा जो गृह जिला है उनको स्थानांतरित किया जाएगा। इस बार हम लोगों ने जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी निरीक्षक और प्लस जो विकास प्राधिकरण के उपायुक्त और उनसे ऊपर के अधिकारी और नगर विकास न्यास के सचिव, उनको इस सूची में विशेष रूप से शामिल किया है, क्योंकि ये पद भी प्रभावशाली है।
0: राज्य में 2 से अधिक संतान वाले भी पंचायत और निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। राज्य विधानसभा की ओर से इस साल मार्च महीने में पारित राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक और राज्य निर्वाचन आयोग के नए दिशा निर्देशों के अनुसार करीब 30 साल पुराने नियमों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार सरकारी अस्पतालों में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव सखी व्यवस्था शुरू करने जा रही है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों, जिला चिकित्सालयों और ज्यादा प्रसव भार वाले प्रथम रेफरल इकाइयों में ये पहल चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की शासन सचिव ने बताया कि मातृ और शिशु सेवाओं को और अधिक भरोसेमंद बनाने के लिए ये पहल की जा रही है। इसके तहत पिंक एप्रिन में तैनात नर्सिंग कर्मी, ANM या अन्य प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्य कर्मी प्रसव सखी के रूप में काम करेंगी। वे अस्पताल पहुंचने वाली हाई रिस्क गर्भवती महिला के साथ भर्ती होने से लेकर प्रसव तथा उसके बाद की देखभाल तक के हर चरण में सहयोग करेगी। जरूरत पड़ने पर रेफरल प्रक्रिया में भी समन्वय सुनिश्चित करेंगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक चिन्हित अस्पताल में 24/7 मातृ शिशु हेल्प डेस्क बनाई जाएगी, जो गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों के लिए प्रथम संपर्क केंद्र के रूप में काम करेंगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही 104 जननी एक्सप्रेस, हेल्प डेस्क और प्रसव सखी की एकीकृत व्यवस्था से गर्भवती महिलाओं के लिए घर से अस्पताल तक निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने राज्य सरकार की युवा हितैषी योजनाओं को माई भारत पोर्टल से

0: जोड़ने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव आज जयपुर में माय भारत पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवा मामले और खेल मंत्रालय के सहयोग से पोर्टल को युवाओं के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में सशक्त बनाया जा रहा है। उन्होंने सभी विभागों को युवाओं से संबंधित योजनाओं, कौशल विकास, इंटर्नशिप, रोजगार, खेल और नवाचार से जुड़े अवसर एक ही मंच पर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। आज राष्ट्रीय ध्वज दिवस है। 1947 में आज ही के दिन तिरंगे को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकृत करने पर विचार विमर्श किया गया था। यह निर्णय केवल राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार करने के साथ ही देश की पहचान, एकता, लोकतांत्रिक आदर्शों की औपचारिक घोषणा थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने तिरंगे को एकता, अखंडता, स्वाभिमान और गौरव का अमर प्रतीक बताया है। आज राष्ट्रीय आम दिवस है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने वर्ष 1987 में आम को बढ़ावा देने के लिए इस दिन की शुरुआत की थी। ये दिवस जैव विविधता और कृषि अर्थव्यवस्था के महत्व को भी दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
1: आम हर खास ओ आम के लिए एक स्वादिष्ट फल ही नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। वेद पुराणों और महाकवि कालिदास की रचनाओं में भी आम का उल्लेख मिलता है। इसे प्रेम और समृद्धि का प्रतीक बताया गया है। वर्तमान में देश में आम की 1000 से ज्यादा किस्में उगाई जाती हैं। इनमें से विशिष्ट स्वाद, गुणवत्ता और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर कई को GI टैग यानी भौगोलिक संकेत प्राप्त है। देश में आम की लंगड़ा, सफेदा, दशहरी, चौसा, रतौल और अल्फेंजो प्रमुख किस्में पाई जाती हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है। वैश्विक उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 45-50% मानी जाती है। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर।
0: हज यात्रा 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है। केंद्रीय हज कमेटी ने बताया कि अब आवेदक 24 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पहले ये तारीख 20 जुलाई थी। इस मुकद्दस सफर पर जाने के इच्छुक लोगों की मांग पर इसे बढ़ाया गया है। गौरतलब है कि हज यात्रा के लिए राजस्थान से अब तक 4000 से ज्यादा आवेदन किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। राजस्थान पुलिस मुख्यालय में यंग प्रोफेशनल्स के 5 पदों पर संविदा भर्ती के लिए युवा अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती का उद्देश्य विशेषज्ञ युवाओं की सेवाएं लेकर अपराध नियंत्रण, नशा नियंत्रण, सड़क सुरक्षा, AI और नवीन आपराधिक कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन करना है। ज्यादा जानकारी राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में संसद में चर्चा के लिए तैयार। जयपुर में भाजपा और कांग्रेस ने पैदल मार्च कर एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर मेट्रो फेज 2 के लिए सीतापुरा में भूमि पूजन किया। और प्रदेश में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लिए सरकारी अस्पतालों में प्रसव सखी व्यवस्था शुरू होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से टोंक जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। जिले में पिछले माह विकास, सुशासन, स्वास्थ्य, ग्रामीण कल्याण और आधारभूत संरचना से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए। सुशासन के क्षेत्र में टोंक जिले ने विशेष उपलब्धि हासिल की। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर जून 2026 में जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण के आधार पर जिले ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि पर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 21 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि शिकायतों का पारदर्शी और संतोषजनक समाधान ही सुशासन की पहचान है और सभी अधिकारी इसी भावना के साथ काम करते रहें। जिले के मालपुरा क्षेत्र को इस महीने विकास की बड़ी सौगात मिली। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए जिला अस्पताल भवन और लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 4-लेन सड़क का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मालपुरा क्षेत्र में आने वाले समय में लगभग 1,500 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए जाएंगे। इनमें पेयजल परियोजनाएं, ब्रह्मा तालाब का सौंदर्यकरण, भूमिगत विद्युत लाइनें, सीवरेज व्यवस्था, आईटीआई की स्थापना, पशु चिकित्सालय भवन और सड़क विकास जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल है। जिले में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से 15 जुलाई से 5 दिवसीय विशेष स्क्रीनिंग अभियान चलाया गया। इसके तहत सभी गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व आवश्यक जांचें कर स्वास्थ्य की नियमित निगरानी सुनिश्चित की गई। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह चौधरी ने टोडा राय सिंह ब्लॉक की बैठक लेकर चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और मालपुरा जिला अस्पताल के लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण भी किया। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों से अभियान को पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सफल बनाने का आह्वान किया। ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से आमजन की समस्याओं का मौके पर समाधान लगातार जारी है। पिछले दिनों जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने टोडा राय सिंह और मालपुरा क्षेत्र की ग्राम पंचायत के ग्रामीण सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। शिविरों में आवासीय पट्टे, आयुष्मान कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और टीबी मरीजों को पोषण किट, मिनी किट तथा अन्य योजनाओं के स्वीकृति पत्र किए गए। उन्होंने किसानों से जैविक खेती अपनाने और एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की अपील की। मालपुरा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कचोलिया में आयोजित शिविर में एक महिला हगामी देवी की लंबे समय से बंद पड़ी सामाजिक सुरक्षा पेंशन कुछ ही घंटों के प्रयास से दोबारा शुरू कर दी गई। राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 के संबंध में सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से अजमेर संभाग स्तरीय जनसुनवाई अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत कुमार छाबा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमें टोंक जिले के जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, अधिवक्ताओं, सामाजिक संगठनों और विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने वीसी के माध्यम से भाग लेकर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। इस दौरान जिला कलेक्टर सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सहकारिता मंत्रालय के 5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जिले में सहकार सप्ताह आयोजित किया गया। सप्ताह के तहत कार्यक्रमों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्षों, व्यवस्थापकों और प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सहकारिता के माध्यम से किसानों, युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। टोंक जिले में भी एक बार फिर से मॉनसून सक्रिय हो गया है। मॉनसून के सक्रिय होने से कई स्थानों पर हल्की तो कहीं कहीं मध्यम बारिश हुई है। लोगों को गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली है। इसके साथ ही टोंक जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कहो सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामला माय संसद माय चर्चा सारू तैयार। जयपुर माय भाजपा और कांग्रेस पैदल मार्च कर और एक दूजा खिलाफ विरोध प्रदर्शन की ना। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर मेट्रो रेल परियोजना रा दूजा दौर सारू सीतापुरा माय भूमि पूजन की नो। और प्रदेश रा सरकारी अस्पताल माए बद्दा जोखिम वाली आस वाली लुगाइयां सारू प्रसव सखी व्यवस्था सरू करी जावेला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। संसद रा दोनों सदना री कार्रवाई नीट परीक्षा पेपर लीक मामला समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विपक्षरा सदस्यां रा हंगामा रा कारण आज ही ठीक ढंग नी चाल सकी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कहो कि सरकार पावस सत्र रा पहला दिन हुई नीट परीक्षा पेपर लीक मामला मथ चर्चा सारू तैयार है। संसद भवन परिसर में खबर नवीसा सागे बातचीत करता था कां रिजिजू कहो कि ई चर्चा सारू नियम तय कर जावना चाहिए। वे कहो के सरकार विपक्षरा दला ने ई मुद्दा माथे खुली चर्चा सारू बुलाया हा पण वे ई माथे अड़चन पैदा की नी।
3: जो ऑपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते, लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसके

0: मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं? हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
1: ए बीच भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में विपक्षरा नेता राहुल गांधी का न्यू काल प्रधानमंत्री रा रहवास सामे बिना मंजूरी धरनो देवण री कड़ी निंदा कीनी है। भारतीय जनता पार्टी रो आज नई दिल्ली में राखी ज्या संवाददाता सम्मेलन में बताई जियो के केंद्र सरकार विद्यार्थियों सागे है और नौजवानों रा भविष्य री हिफाजत करण माथ है वारो खास ध्यान है। विपक्षरा नेता राहुल गांधी री ओर ई मुद्दा माथे नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस राखी जी वे विद्यार्थियों री लड़ाई ने असली बताई। राहुल गांधी शिक्षा व्यवस्था माथे नुआ सिराऊं काम करण री जरूरत माथे जोर दीनो। प्रदेश में आई ई मुद्दा माथे भाजपा और कांग्रेस री ओर प्रदर्शन करी जिया। दोनों पार्टियां एक दूजा रा प्रदेश मुख्यालय री ओर कूच कर विरोध जतायो। दोनों पार्टियां रा पैदल मार्च ने पुलिस पानी री बौछार कर रोक दीना। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ लोकसभा में विपक्षरा नेता री ओर प्रधानमंत्री रा रहवास सामी दिया जिया धरना ने लोकतांत्रिक मूल्यां रे खिलाफ बतायो। कांग्रेस री ओर करी जिया प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राज्य रा पहली वाला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही शामिल भया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर मेट्रो रेल परियोजना रा दूजा दौर रा काम रो सीतापुरा मेट्रो यार्ड माए भूमि पूजन कीनो। इन पाछे वे मानसरोवर छोटी चौपड़ ताई मेट्रो रेल माए सफर कीनो। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका मुख्यमंत्री कहो कि मेट्रो रेल सेवा रो नेटवर्क बध जावणो सार्वजनिक परिवहन और तेज वेला।
2: जयपुर के लिए मेट्रो बहुत आवश्यक हो गई थी। अभी जो हमने रूट लिया है वो प्रहलादपुरा से लेकर के टोड़ी मोड़ तक लिया है। मैं जयपुर वासियों और राजस्थान वासियों को इस बात के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि इसका काम बहुत ही तेज गति से होने वाला है और ये जयपुर की लाइफ लाइन बनेगी। आने वाले समय में फेज 3 भी आएगा, फेज 4 भी आएगा।
1: 13,000 करोड़ रुपयों भत्ता खर्च वाली मेट्रो परियोजना रा दूजा दौर माए प्रहलादपुरा टोडी मोड़ ताई 41 किलोमीटर लंबो कॉरिडोर विकसित करियो चावेला। और ब्यूरो माना खबर नवीसू।
3: ये परियोजना केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऋण से वित्त पोषित होगी। इसका निर्माण कार्य सितम्बर 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जयपुर मेट्रो के फेज 2 कॉरिडोर में 34 एलिवेटेड और 2 भूमिगत स्टेशन होंगे। इसका इंटरचेंज खासाकोटी पर होगा। वहीं परियोजना के तहत सीतापुरा में अत्याधुनिक मेंटेनेंस डिपो भी बनाया जाएगा, जहां मरम्मत और रखरखाव की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मेट्रो का विस्तार राजधानी जयपुर के बढ़ते यातायात को व्यवस्थित करने में अहम भूमिका निभाएगा। ये रोजाना लाखों यात्रियों के सुरक्षित और सुविधाजनक सफर का आधार बनेगी, साथ ही राजधानी के विकास को नई गति देगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश में प्रस्तावित नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव ने साफ कोई सागे निपक्ष और शांतियों करावण सारू मोटा पैमाना माथे प्रशासनिक फेरबदल रा हुकम दीना है। आयोग साफ कीनो है कि गृह जिला, गृह नगरीय क्षेत्र और गृह पंचायत समिति में तैनात अहलकारा सा गई लंबा वगत एक ही ठौड़ काम कर रहा अहलकारा ने चुनाव पहली हटाया जावेला। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह बतायो कि संबंधित महकमा ने 15 अगस्त ताई तबादला रो काम पूरो करण सारू कही चियो है।
4: नगरीय निकायों का हम पहले तो इनका चुनाव कराएंगे, जो लगभग 35 दिन का कार्यक्रम होगा और 2 चरण में ये संपादित होगा। पिछले 4 साल में 3 साल जो है अगर वो उसी जिले में पदस्थापित रहे हैं किसी भी कैपेसिटी में, तो एक तो उनका ट्रांसफर होगा और दूसरा जो गृह जिला है उनको स्थानांतरित किया जाएगा। इस बार हम लोगों ने जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी निरीक्षक और प्लस जो विकास प्राधिकरण के उपायुक्त तो और उनसे ऊपर के अधिकारी और नगर विकास न्यास के सचिव, उनको इस सूची में विशेष रूप से शामिल किया है क्योंकि ये पद भी प्रभावशाली है।
1: राज्य में अब 2 32 संतान वाला ही पंचायत और निकाय चुनाव लड़ सकेला। विधानसभा ओरों इन साल मार्च महीना माय पास करी जिया राजस्थान पंचायती राज संशोधन बिल और राज्य निर्वाचन आयोग रा नुआ दिशा निर्देशां रे मुजब इनू जुड़िया 30 साल जूना नियम ने खत्म करतियो चियो है। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। राज्य रा सरकारी अस्पतालां माय घणा जोखिम रो सामो कर रही आस वाली लुगाईयां रा सुबिता सारू प्रसव सखी व्यवस्था सारू करी जावेला। प्रदेश रा मेडिकल कॉलेजां जुड़िया अस्पतालां जिला अस्पतालां और बत्ता जापा वाली प्रथम रेफरल इकाईयां माय न्यारा न्यारा दौर माय ओ सुबितो मुहैया करायो जावेला। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग रे शासन सचिव आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि पिंक एप्रिन माय तैनात नर्सिंग कर्मचारी एएनएम या दूजी सिखावण लियोड़ी महिला स्वास्थ्य कर्मचारी प्रसव सखीरा तौर काम करेला। वे बत्ता जोखिम सागे आवण वाली आस वाली लुगाईयां रे अस्पताल माय भर्ती भेवण लेर वहां पाछरी देखभाल ताई रा हर काम माय मदद करेला। श्रीमती राठौड़ बतायो कि हर चिन्हित अस्पताल माय 7 दिन 24 घंटा काम करण वाला मातृ शिशु हेल्प डेस्क बनाया जावेला। वह कहो कि 104 जननी एक्सप्रेस हेल्प डेस्क और प्रसव सखीरा तालमेल वाली व्यवस्थाओं आस वाली लुगाईयां ने घरों अस्पताल ताई बिना अड़चन सेवा मुहैया कराउनो तय करियो जावेला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास राज्य सरकार री नौजवाना रा भला सारू चलाई जा रही योजनावां ने माई भारत पोर्टल नु जोड़वा रा हुक्म दीना है। वह माई भारत पोर्टल ने असरदार तरीकों लागू करण सारू आज जयपुर माई राखी जी मीटिंग माई बोल रहा है। मुख्य सचिव कहो कि युवा मामलात और खेल मंत्रालय री मददू ई पोर्टल ने नौजवाना सारू सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म रा तौरू और मजबूत बनायो जा रियो है। वह सगला महकमा ने नौजवानों जुड़ी योजनावां कौशल विकास इंटर्नशिप रोजगार खेल और नवाचार जुड़िया मौका एक ही मंच माथे मुहैया करावन रा हुक्म दीना। आज राष्ट्रीय ध्वज दिवस है। साल 1947 माय आज इरा दिन तिरंगा ने आजाद भारत रा राष्ट्रीय ध्वज रा रूप माय स्वीकार करण रे बारा माय विचार करी चियो हो। ओ फैसलो देश रा झंडा ने स्वीकार करण सागे देश री पहचान एका और लोकतांत्रिक आदर्शां रो औपचारिक ऐलान हो। ई मौके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जनता ने शुभकामनावां देता थका। तिरंगा झंडा ने एका अखंडता खुद रो मान और गौरव री अमर निशानी बतायो। आज राष्ट्रीय आम दिवस है। आम ने बधावो देवन सारू राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड साल 1987 माय ई दिन री शुरुआत कीनी ही। ओ दिवस जैव विविधता और खेतीबाड़ी में जुड़ी माली व्यवस्था रो महत्व ही बतावे है। पेश है एक रिपोर्ट।
5: आम हर खासो आम सारू केवल स्वाद वालो फल ही नहीं बल्कि भारत री सभ्यता और संस्कृति रोई अभिन्न हिस्सो रियो है। वेद पुराण और महाकवि कालिदास री रचनावा माए ई आम रो जिक्र आवे है। इन्ने प्रेम और बरकत री निशानी मान्यो जावे है। मौजूदा दौर माए देश माए 1032 भातरा आम री पैदावार ली जावे है। आमाए वो खास स्वाद गुणवत्ता और क्षेत्रीय पहचान रा आधारू

0: 24 जुलाई करीची है। हजरा मुकद्दस सफर माथा जावन सारू प्रदेश हूं हाल ताई 4032 अर्जियां दाखिल करी जा चुकी हैं। 26 जुलाई दीतवार ने आकाशवाणी प्रसारित किया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विचार बतावेला। आ हर महीना प्रसारित किया जावन वाला इन कार्यक्रम रे 136वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही 24 जुलाई ताई मुफ्त नंबर 1800117800 माथे सुझाव भेज सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम जरिए ये विचार भेजा जा सके है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय माए नौजवान पेशेवरां रा 5 ओहदा माथे संविदारा आधार भर्ती सारू युवा उम्मीदवारों अर्जियां मांगी जी है। जानकार नौजवाना री सेवा लेर अपराधा और नशारी लत माथे काबू करण, सड़का माथे हिफाजत, एआई और नुआ आपराधिक कानूना ने असरदार तरीका लागू करण सारू भर्तियां करी जा रही है। आखिर माए खास समाचार एक फेर सुन ले रहो। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कहो सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामला माए संसद माए चर्चा सारू तैयार। जयपुर माए भाजपा और कांग्रेस पैदल मार्च कर एक दूजा रे खिलाफ विरोध प्रदर्शन कीना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर मेट्रो रेल परियोजना रा दूजा दौर सारू सीतापुरा माए भूमि पूजन कीनो। और राज्य रा सरकारी अस्पताल माए बत्ता जोखिम वाली आस वाली लुगाइयां सारू प्रसव सखी व्यवस्था सारू करी चावेला। इसागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो चावेला। नमस्कार।
1: FM 103.7 MHz पर श्रोताओं, ये है आकाशवाणी नागौर का चिरमिर चैनल। शाम के 7 बजे है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेतीबाड़ी।

खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनिया सगला बायान बाया ने रणवीर भाई रा घणे मानसू राम राम। भाया जद भी चौपाल माते आवा हाँ, नितनो ही कामरी बात होती रहे। और हमारे इन दिना में देखा हाँ तो देखो चौमासो लागुड़ है, और चौमासे में मायने भाई लोग है जो आपरी फसलां न्यारी न्यारी बायोड़ी है, कोई कुणी कड़ी फसल की तैयारी कर रहा, कोई किणी री देखभाल कर रहा, कई कीड़ा मकोड़ा या कई जीव जंतु भया एड़ा भी वह जकाऊँ आपा ने देखो कि यूं लागे कि भाई वो खाउन सू वो काटन सू जहर चढ़ जावे, जो टांटिया है बिच्छू है। और कई बार यूं देखा हाँ कि पेट में गर्मू सू या किणी और कारण सू जे मुंडे में छाला हो जावे, तो पचे जानकार भाई कहे कि भाई मधुमक्खी रो शहद है जो चाटो तो ऐ तो है जो तैयार हो जाए। तो अड़ा ही जो जीव कही वह जका अपने वास्ते घना लाभकारी, अपन वास्ते भी लाभकारी और अपनी फसलों रे वास्ते भी लाभकारी। तो भैया आज आप बात कर रहे हाँ मधुमक्खी पालन री, के इंडो पालन किकर करा। यूं तो कई थोड़ा देखा हाँ कि मधुमक्खियाँ रा छत्ता है जो लागोड़ा रहे, और बामे भी देखो कि शहद वैर भाई लोग शहद वैर भाई लोग कहे कि भाई 15 दिन तो है जो मधुमक्खी है जो शहद बनावे, यार 15 दिन आ रहा मान जे आप काम नहीं लेवा तो पाचो है जो खार भी छत्ते ने जो खाली कर देवे। मधुमक्खी पालन की बात करा तो ओ लाभदायक कृषि व्यवसाय है, इन्हें कम पूंजी थोड़ी सी जगह और बिना जमीरे भी शुरू करियो जा सके। इनमें शहद तो मिले ही है, इनके अलावा मोम है, वीवैक्स है, पराग है, जेड़ा उत्पाद भी मिले, और किसानारी इनकम बढ़ाने में और फसलों रे परागण वास्ते भी मदद करे। तो की कर शुरू करे किसान भाई अगर मधुमक्खी पालन करना चाहे।

तो इन वास्ते हंगाओ पहली जरूरत आ पड़े कि भाई किनी काम ने शुरू करा तो मेरी जानकारी चाहिए, अधूरी जानकारी या बिना जानकारी है जो आप काम करा तो वो अपने वास्ते लाभदायक नहीं रहे, घाटे रो सौदो बन जाए। तो इन वास्ते प्रशिक्षण की बात करा, ट्रेनिंग की बात करा, तो काम शुरू करें पहला प्रशिक्षण लेनो घणो जरूरी, यानी कि जानकारी लेनी कि भाई मधुमक्खी पालन करा तो करा की करा। नेड़ो कृषि विज्ञान केंद्र है या राज्य खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड है, बटन है जो को संपर्क कर भाई है जो को जानकारी लेवे। पछी बात आवे जगेरी, तो मधुमक्खियां रे छत्ता ने एड़ी जगह माते राखना जटे आगती पागती भरपूर मात्रा माने फूल है, पौधा है और पीने रो साफ पानी है जो को मिलतो रहे, क्योंकि फूला ने पसंद करे, पौधा ने पसंद करे, बारे माते मधुमक्खी बैठे तो वे भी जकी फसल है फूलाली पौधाली बगीचाली वह फसल भी है जो को जोरदार पड़े और अटीने है जो को मधुमक्खियाँ भी जोरदार है जो को पनपे। जरूरत उपकरणारी पड़े तो उपकरणारी बात करा तो मौन पेटिका जकन बी बॉक्स नाम जान सका हाँ, रानी मक्खी ने रोकण वास्ते क्वीन एक्सक्लूडर धुएं रो डिब्बो दस्ताना और जालीदार टोपी की जरूरत है। प्रजाति की बात करा तो भारत में खास रूप इटालियन मधुमक्खी जके ने एपिस मेलीफेरा नाम सुन जान सका आ ज़्यादातर आ पाली जाए क्योंकि अशांत स्वभाव रही है और शहद है जो को ज़्यादा देवे। लाभ और इनकम री भाई बात करा तो एक मौन पेटिकारी कीमत लगे टगे 4,000-5,000 रे बिचे हुए और एक डिब्बे एक सीजन में औसतन 25-30 किलो ताई शहद है जो को लियो जा सके। इनके अलावा खेता में डिब्बा राखण सू फसलों रो उत्पादन भी बढ़े, यानी कि जकी फसल जटे डब्बा पेटियां राखी उड़ी है तो वह फसल है जो को वह भी बधी भी में भी है जो को फायदो हुई। सहायता की बात करा तो भारत सरकार राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन इनने तहत आर्थिक सहायता और सब्सिडी भी प्रदान करे, इन वास्ते नाबार्ड या राष्ट्रीयकृत बैंकों है जो को लोन भी मिले। तो इन तरह से मधुमक्खी पालन ने व्यवसाय ने आधुनिक तरीके से समझ और है जो को अच्छो मुनाफो कमाया जा सके। आ तो भैया मधुमक्खी पालन की बात हुई, इनके अलावा अपन देखा कि हमार चौमासे री रुत और कैबुत में कह के पानी रा पग हरिया, इन टाइम में हरियाली अपन देखनी चाहवा और हरियाली जद वे जट बिरखा वे, कहो भी है कि रही मन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी री इतनी महिमा, चाहे आप शरीर की बात करा तो शरीर में कह रिपिये में 12 आना है जो को पानी है जने आपनो शरीर रहे और मोती जकेर माने चमक है नहीं पानी री, वह चमक रहता नहीं मोती चमके वही पानी री चमको ही चमके। मानस कहबत में कहवे कि भाई इन आदमी रो तो पानी उतर गयो, कहवा चले नहीं, यानी कि पानी ना अठे पानी रो मतलब इज्जत सु है, मिनक री इज्जत है जने मिनक कही जे। चून के वे आटे ने बिना पानी सूखो आटो किन काम रो, तो जारी नारी जगह है जो पानी री महिमा है। एरा मार जूं दे कहाँ के भाई बिरखा री रुत, एरा आप आशा करा के इंद्र भगवान कठी तो मेहरबान हुआ, ए कठी देखो छांटा छिड़का थोड़ा हुआ कठी घना हुआ और कठी हुणने है जो त्यार है रोजिना बादलिया निकल है भाई लोग उड़ी कह के कठी बिरखा होगी और कठी है जो बेगी जूझ। तो इन मौके अपन और ध्यान रखनो है के जठे भी बरसात हुए बरसात रे पानी ने है जो को भेड़ो करना। भारत सरकार शुरू कर जोड़ो एक राष्ट्रीय जल संरक्षण अभियान भी है, इंडो उद्देश्य बिरखा रे पानी ने ज्यादा से ज्यादा भेड़ो करनो और जमीन रे पानी रे स्तर ने बदावनो, इंडो मुख्य उद्देश्य है कि भाई बिरखा रो जल ज्यादा से ज्यादा भेड़ो करा जक्यों कहीं एक जमीन रो भूजल स्तर में सुधार आवे, जल संकट है पानी रो संकट तो कम हुए और जल संरक्षण के प्रति लोगों ने माने जागरूकता फैलानी भी जरूरी और आने वाली पीढ़ियों के वास्ते जल संसाधन जगह भी है जो टांका है नाडी है नाडिया है ट्यूबवेल है वारी है जो को जानकारी आने वाली पीढ़ी ने भी वह कि भाई पानी घणो कीमती है।

0: और इन्हें बचाना जरूरी है। और उपयोग की बात करा तो विवेकपूर्ण और सतत उपयोग सुनिश्चित करना, यानी कि पानी ने आप फालतू कठे नहीं बेवन दा, जितनी जरूरत है उन्हें हिसाब है जो काम में लेवा। इन वास्ते कहीं कर सका कि जो घर की छता माते जे बिरखा आवे तो बिरखा रो पानी बटे भेड़ो कर सका, बिरखा रे पानी ने टांका या जका भूमिगत कुआ है वटे भी ढलान में जटे भेड़ो हुए बटो कुआ नमा देर पानी रो है जो जमीन रो स्तर बढ़ा सका, तालाबा में कुआ में जलाशय ने वारी है जो साफ सफाई रखा जके वो पानी भी शुद्ध वे और पीण सारू काम देवे। इनके अलावा जटे हरियाली है वट है जो इंद्र भगवान की मेहरबानी वे तो पेड़ ज़्यादा में ज़्यादा इन मौसम में पेड़ लगावा और जल स्रोत जका भी है बानी रुखाली करा, बानी रक्षा करा, बानी साफ सफाई रखा और ऐसो प्रयास करा जके शुद्ध बिरखारो पानी अपने हमेशा वास्ते काम आवे। ए तो भाया बात हुई मधुमक्खी पालन की बात हुई, केसता रहन अभियान की बात हुई और हमें लेवा ब्रेक।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: हाँ तो भया चौपाल सू कई तरह की बात होती रहे और अपना किसान भाई भी भांत भांतरा धंधा करे, कई पशुपालन नो काम करे, गाया राखे, भैंसियाँ राखे, बकरियाँ राखे, मुर्गा राखे, कई तरह रहे जो पालन पोषण करे, रापरी आजीविका करे और लाभ भी कमावे, कई है जो पशुआ ने राख और मारे दूध सू डेयरी व्यवसाय भी चलावे। इनके अलावा कई भाई लोग भांत भांतरी खेती जका ने पानी रो साधन यानी कि सिंचाई रो साधन है तो वे है जो को वेड़ी खेती करे जका में पानी ज़्यादा चाहिए। और गणकरा भाई ऐसा भी है जका खेती कड़िया तो है पर बारानी खेती जके ने आप कह सका कि भाई बिरखा माते आधारित, जटे बिरखा हो ही जने बिरखा हुई तो उड़ीक राखे और बिरखा ऊँता ही है जो भाई बरसात खेती करे। और इनने मायने भी कई भाई लोग है जो ज़्यादा पैदावारी लेने वास्ते आज री आधुनिक तकनीक अपनावे और रसायनारो ज़्यादा है जो प्रयोग कर और ज़्यादा उत्पादन लेवे। कई भाई है जिसका जमीन ने स्वस्थ रखने वास्ते, अपनी धरती ने स्वस्थ रखने वास्ते, अनाज ने स्वस्थ रखने वास्ते और इंसान ने स्वस्थ रखने वास्ते जैविक खेती अपनावे यानी कि देसी खेती, देसी तरीका। तो भांत भांतरी है जो विचार भांत भांतरा धंधा किसान भाई करे। आज मने एक ऐड़ा किसान भाई मिलिया जकाऊ हताई हुई तो वह हताई आप तई पूर्ति करा तो लो सुनो।
3: आज एक किसान भाई मिलिया जका खासा यूं जवान लागे बा हताई करा। राम राम सा।
4: राम राम सा। राम राम सा।
3: कई नाम आप रो?
4: माना बजरंग सिंह है।
3: बजरंग सिंह गांव?
4: गांव जाकाणिया।
3: जाकाणिया रे उनाला। तो कई डाण्या में रहो गांव में?
4: बे अपार टाइनिया और बे गांव और बे एक ही है वो
3: बेड़ो ही है लगे तो।
4: हाँ।
3: कहीं काम धंधा?
4: काम तो खेती आलू ही कर ला और यहाँ मैं मार्बल टाइल आलू भी करूँ और यहाँ था तो खेती आलू भी करा बरसात चौकी हुई वजन।
3: तो बरसात हूँ वह का और कोई कुआ ट्यूबवेल
4: नहीं? बरसात हुई वह
3: बरसात हूँ। हमके बिरखा कैडी हुई?
4: हाँ बिरखा तो यहाँ कम हुई, यहाँ आस है के हुई
3: पहली हुई बच।
4: हाँ पहला हुई नहीं
3: कद
4: पहला सवा महीनो पहला हुई।
3: ओ खासा टाइम पहला।
4: हाँ
3: तो कहीं बी टाइम में खेतिया करी जी ही का खेतिया हमें हुई?
4: हाँ बी टाइम देखो देसी बाजरी वाली खेती हुई है हमें मोटी बावा।
3: और कई भाई देखो के आजकल बजरंग सिंह यूं है के 60 दिन वालों है जो धान ज्यादा बावे थे पते कैसा बाया करो?
4: मैं तो बे बहू चौकड़ी बहू 60 दिन वाला बहू कौन
3: देसी बाया करो
4: देसी बावा
3: जका टाइम ज्यादा लेवे पचके?
4: टेम तो ज्यादा ले ही बे पण है या निरोगा
3: बे बता।
4: हां
3: बामे राम में कई फर्क है?
4: बामे राम रात दिन रो फर्क है। ओ ए 60 दिन पाक जिया दोयो पाके ई चौकड़िया में ऑटोमेटिक ही पाके कुदरत हुई
3: भाई जका देसी है

0: जैसे अपन चौकड़िया बोला, अभी में और भी स्वाद में कहीं फर्क है?
1: स्वाद में देखो पापड़ रबड़िया में हम काम आवे है, अलग ही स्वाद हुए यार देसी यार।
0: भाई देखो मोटा तो दाल भी बने हैं, पापड़ी बने हैं, बड़ी बने हैं, तो बापच कहीं देसी मोटारी और तरह।
1: देसी मोटा रही है और तरह रही है, आदमी निरोगा रहे, देसी देसी वे रही, एक अंग्रेजी अंग्रेजी वे।
0: आजकल देखा हाँ बदन सिंह के जका भाई है ज्यादा पैदावारी लेने हिसाबू बार बार है जो को दवाई रो छिड़काव करे, तो बीच में आपने कहीं लागे जमीन माते कहीं असर हुआ?
1: हाँ अभी मत देखो जमीन ने नुकसान ही पहुंचे आने वाले टाइम में, धीरे धीरे धीरे धान कम ही हुई नहीं जना, पर देसी खाद घनी है, गाय रखो भैंसिया रखो बाहरी खाद डालो तो दो यारी जरूरत ही कौन पड़े अपन।
0: भाई देसी खाद तो थे तो पचे खेती करो जन देसी खाद ही दो।
1: हाँ पर देसी दवा गाय भैंसिया रख रही हाँ जने देसी दवा।
0: देसी खाद दो, देसी खाद एकर देवड़ी पच कितने टाइम तक काम दे देवे?
1: बात तो देखो 12 महीने चाल जी अब एक कर दिया, बाद में जिया गर्मी मौसम आवे भी टाइम खाद दे दो, आंधियों की रेत जल्ले जन बा ऑटोमेटिक ही गाय उपजी
0: और
1: आवे।
0: ये थोड़ा थोड़ा असर तो 2-3 साल तक कह रहे।
1: हाँ 3 4 5 साल तानी रवे, पर आप भी यहाँ धन है जन का ही है सालों साल नागता रहा।
0: सालों साल खाद नागता रहो,
1: हाँ
0: जने
1: एक्स्ट्रा है
0: जने दूजी है जो को अंग्रेजी खाता नहीं जरूरत को पड़न।
1: आप मोला में ही कौन अंग्रेजी वे कैडी।
0: जब बाजरी की खास कर बात करा तो जकी बाजरी देखो सप्रे जके में करे लोग यूरिया देवे, एक आदेशी बीमारी में कहीं फर्क?
1: भी मेरी में रात दिन तो फर्क है नहीं, एक देखो सियाले में आप रोटी कर खावा बाजरी देसी बाजरी भी कोई अपन रोग लागे को नहीं, ए दोया वाली खावा जन कोई रोग लागी कोई की हुई कोई टाबर बीमार कणी की कणी की, हम देसी में बीमारी हमारी की कौन लागे। हाँ
0: देसी में कोई तरह की बीमारी कौन, जमीन भी निरोगी रही
1: हाँ
0: और जीमण नाला भी निरोग रहे
1: जिमन
0: और
1: जमीन निरोगी मिनक भी निरोगा,
0: मेहनत भी नहीं रोगा, और चारों जो को कहीं काम में लो पजा कुतर जकी वह जकी
1: कुत्तर धन ना कहाँ गायन ना कहाँ भैंसिया ना कहाँ।
0: पशुआना,
1: हाँ
0: तो पशु नहीं फायदो।
1: पशु नहीं फायदो,
0: जन देखो यूं तो कई तरह का फायदा।
1: फायदो घणो ही वे कि यहाँ पर 12 महीने पशु आ रहे नीरो जावे मोल लाणो कौन पड़े, नहीं जन बारू बे गंवारा कचरो मोल लावा जन आपा नुकसान है, एक तो महंगा मिले पच बे दोयार आवे पच गाया री टीका लगाना पड़े बे बीमार हो जावे।
0: ओ जन देखो देसी दानों तो फायदो ही फायदो।
1: हाँ देसी तो फायदो ही फायदो है।
0: कई बार आप यूं देखा बजरंग सिंह के बिरखा थोड़ी लेट सेट हो जावे तो बी टाइम में अपना देसी बाजरी कहीं कई दिन तक रह जावे।
1: हाँ रह जाओ देखो 100 महीने हो गयो बाजरी हाल भी यहाँ थोड़ा सा कहीं है पत्ता भी हल्का मुरझाई गया, पण बे ठीक है हम बरसात होगी काल पाची
0: कई
1: हम
0: बरसात कितनी हुई
1: होगी यहाँ 4 4 5 5 आंगण है।
0: भाई थोड़ी थोड़ी हुई,
1: हाँ पण उम्मीद है भगवान दे ही हो।
0: पर हम आपने कहीं लागे जो चौमासेरी ऋतु तो मात है तो
1: हाँ
0: बिरखा कहीं और उड़नी उड़ीक
1: हाँ
0: है
1: हाँ बिरखा तो वही हाल सावन
0: बिरखा।
1: पड़ियो बहादुरी हो।
0: ओ कई बार आप देखा हाँ बजरंग सिंह के सावण बरस तो ही निकले यार,
1: हाँ
0: कदी कदी है जो को सावण में वे कौन भादवे में हुए।
1: हाँ अब बार उगी अषाढ़ में उगी तो सावण मान लो बार आप 100 महीनों कौन हो तो आप निदान काट ले वहाँ
0: ओ
1: तो आप नहीं एक शरीर नहीं फायदो और खेत नहीं फायदो खेती नहीं फायदो जन भी नुकसान कौन।
0: देखो बजरंग सिंह कई भाई यूं कहे कि भाई आप हाथों इतनी मेहनत कट करा किक करा एक एड़ो के एड़ी दवाई छिड़कता जके वो आप कचरो फूस वही नहीं बीहू निदान हो जावे तो वो भी घातक।
1: वो तो घातक ही है पचा कचरो वे को नहीं भी वे कचरो तो वही है वो दोया भली कितनी छिड़को कचरा तो वही है आप
0: पण वो
1: देखान।
0: आ मुरझा जावे
1: हाँ
0: पण बेसू जमीन ने नुकसान,
1: जमीन ने फसल ने भी नुकसान है यहाँ पर
0: निदान करनो कितो जरूरी है हर फसल वास्ते।
1: निदान देखो यहाँ कसी निकालनी जरूरी है वो के धान तिस कौन करे, मान लो बरसात 10 दिन लेट उगी तो वो धान ने नुकसान कौन वे।
0: नुकसान को गए और देखो के जो को निदान करोड़ बोई दान और तरह ही हुई पता।
1: हाँ धान तो देखो थोड़ो कहीं है ज्यादा ही मिल लिया अपन कम कौन मिले।
0: कई भाइयों आलस कर दे कि भाई अबे कचरो तो माए उबा रहने दो तो भी मैं
1: बिम देखो हम खुद ही आलस कर ले जन हमें धान तो कम ही हुए जन बे दो टाइम पास करे जन मार ऑटोमेटिक कम हुए हो।
0: तो ये वास्ते आप मानना है कि निदान तो टाइम मत करना जरूरी
1: ना निदान टाइम मत करना जरूरी ना पर गाय भैंसियारी खाद जरूरी हो।
0: और घास फूस माए पच वह जगह न कहीं काम में लो।
1: घास फूस आप पहाड़ आप गाय भैंसियार लिया वहां भारो कर
0: तो
1: खेत
0: गया
1: बारो कर
0: बेचार
1: ले। हाँ
0: चरण न काम आ जाए। आ तो सा जोरदार बात और पच भी रवान इरम कहीं काम करना पड़ी जो बाजरी बात करा या मोठारी बात करा। खास कर वही काम रहे।
1: हाँ वही का। और निदान हुई जावे फिर बाद में सीटियां पाके जन सीटियां काट लां पच कड़ब काट लां जन बा कड़ब।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: डोडो बोले रे जिनावरिया, कोजाराम प्रजापति रु गायड़ो गीतड़ो भाया आप तय पूग्यो और हमें बारी है बाजार भावरी। नागौर मंडी में आजरा भाव इन बांत रिया, मूंग बिकिया है 5,500 लेने 7,600 रुपये कुंटल और गंवार री बोली लागी है 5,000 लेने 5,725 रुपये कुंटल ताई। इणिज बात जीरे रा भाव रिया है 17,000 लेने 21,500 रुपया कुंटल ताई और सौंपरा भाव रिया है 7,000 लेने 12,500 रुपया कुंटल। ये सब गोली बोली आज 9,000 लेने 13,400 रुपया कुंटल ताई लागी और असालियो बिक्यो है 5,800 लेने 6,050 रुपया कुंटल। दाणा मेथी रे भाव 5,800 लेने 6,000 रुपया कुंटल ताई रिया और सिंधी सुवेरी बोली 6,000 लेने 7,400 रुपया कुंटल ताई लागी। तारा मेरे रे भाव 5,500 लेने 6,200 रुपया ताई रिया और जवारी बोली 4,500 लेने 5,800 रुपया ताई लागी। काला तिल बिकिया 9,000 लेने 11,000 रुपया कुंटल और सफेद तिल 10,000 लेने 12,000 रुपया कुंटल ताई बिकिया। चना रा भाव 5,000 लेने 5,600 रुपया ताई रिया और सरसों रा भाव 7,600 रुपया कुंटल रिया। ए तो हुआ नागौर मंडी रा भाव और हमें भया यूं है कि चालता चालता बातें तो घनी और करता, पर इन टाइम रे माने चौमास री रुत तो आपने इन पात्रों ध्यान रखनो कि कठी सड़क मारे पानी बहतो वे खाडू खाडू लिया वे या बहतो पानी है तो बिने पार करनो बड़े हावचेती हूँ और नाडी पोखर तालाब जठे भी पानी इकट्ठो हुड़ो वे बटे हैज को टाबरा ने जावण नहीं देना, क्योंकि टाबर कोड कोड आया है जो को देख पानी देखने वास्ते जावे तो पानी रो कोई थक को नहीं। ऐडी सावचेती राखनी और हमें हावचेती आई चौपाल रुबे टाइम पूरो तो आप रणवीर भाई ने दिरोशी करा राम राम।

खेती बाड़ी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम श्रोताओं आकाशवाणी नागौर का, ये चिरमी चैनल है। लीजिए अब सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। आप सबका स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी होती है तब तक वह कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो खुद कचरा हो जाती है। इसलिए हमेशा संगठित रहें और बिखर कर कचरा न बने।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद एकता और संगठित रहने का सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। श्रोताओं, हमें पहला संदेश मिला है कोका भिलाई

0: छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का, लिखते हैं
1: डॉक्टर कामिल बुल के 24 तारीख को सुने, बेल्जियम में जन्मे कैसे भारत को अपना कर्मभूमि बना लिया, रामचरितमानस पर शोध किया और कामिल बुलके से कामिल बुलके बाबा बन गए। बहुत अच्छा लगा इतनी अच्छी जानकारी और प्रस्तुति के लिए। उमंग टीम को बहुत बहुत बधाई।
0: और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर का।
1: भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा और सुरेंद्र कौर रंधावा जी का।
0: और गणेशवाड़ी कोल्हापुर महाराष्ट्र से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार जी का।
1: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए के अंतर्गत आज की कड़ी। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं भारत के अनूठे मेलों की,
1: ऐसे मेलों की जो प्रयास है समुदायों को उनकी संस्कृति से जोड़ने का। इनके बारे में लोगों को अधिक पता नहीं है, लेकिन वे अपने आप में सचमुच अद्भुत हैं, जीवंत हैं और प्रेरणा देने वाले भी। तो कल हमने चर्चा की थी असम राज्य के जॉनबील मेले की, जहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली का आज भी प्रचलन है।
0: आज हम चलेंगे एक और सुंदर और मनोरम उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय राज्य नागालैंड और जानेंगे एक और मेले के बारे में। इसे हॉर्नबिल मेले के नाम से जाना जाता है। तो विमलेश जी, अब चर्चा को आगे बढ़ाइए।
1: जी अजीत जी, श्रोताओं, हॉर्नबिल महोत्सव या मेला नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक मेला है। इसे त्योहारों का त्योहार यानी फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। अजीत जी, आप जानते हैं कि ये कब मनाया जाता है?
0: जी विमलेश जी, हॉर्नबिल मेला हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है।
1: जी,
0: ये कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया जाता है।
1: लेकिन
0: विमलेश जी, एक स्वाभाविक प्रश्न मेरे मन में आता है और वो ये है कि इस उत्सव या मेले का नाम हॉर्नबिल क्यों पड़ा?
1: अजीत जी, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने।
0: जी,
1: इसका जवाब भी उतना ही सुंदर है। हॉर्नबिल एक पक्षी है जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये जबरदस्त उड़ान भर सकता है। इसके पंख इतने शक्तिशाली होते हैं कि जब ये उड़ता है तो उसके पंखों की फू फू जैसी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है।
0: जी विमलेश जी, पूर्वोत्तर भारत में विशेषकर नागालैंड में इस पक्षी को यानी हॉर्नबिल पक्षी को साहस, सम्मान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
1: जी, यही वजह है कि नगा परंपराओं में विशेषकर सर के आभूषणों में हॉर्नबिल पक्षी का प्रतिरूप अवश्य दिखाई देता है। आइए अब जानते हैं कि क्या होता है हॉर्नबिल मेले में।
0: श्रोताओ, इस मेले में रंग बिरंगे पारंपरिक नृत्य देखने को मिलते हैं।
1: जी,
0: जिनमें सबसे लोकप्रिय और आकर्षक है युद्ध नृत्य।
1: जी,
0: युद्ध नृत्य में पुरुष योद्धा पारंपरिक हथियार लेकर नृत्य करते हैं। तेज ड्रम की ताल, वॉर क्राई और तालबद्ध पैरों की गति के साथ ये नृत्य होता है।
1: जी
0: विमलेश जी, एक बहुत विशेष बात तो हम भूल ही गए थे, ये तो बता दें कि इस मेले के दौरान एक बड़ी खास प्रदर्शनी होती है।
1: जी,
0: जिसे मोरुंग कहते हैं।
1: जी,
0: ये मोरुंग होता क्या है?
1: अजीत जी, मोरुंग नागालैंड की जनजातियों का युवा आवास हुआ करता था। ये बांस और लकड़ी से बना हुआ बड़ा सामुदायिक भवन होता था।
0: जी, प्रत्येक गांव में कम से कम एक मोरुंग अवश्य होता था। वहाँ जनजातीय इतिहास, युद्ध कौशल, वाद्य संगीत और लकड़ी के हस्त कौशल सिखाए जाते थे।
1: जी, यहाँ हस्तशिल्प, हैंडलूम यानी हस्तकरघा, स्थानीय व्यंजन इत्यादि प्रचुरता से मिलते हैं।
0: श्रोताओं, ये उत्सव नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रदर्शन है।
1: जी,
0: यहाँ आकर लोग असली नागा जनजातीय जीवन, आतिथ्य और उनकी परंपराओं की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी नागालैंड के बेहद खास मेले हॉर्नबिल उत्सव की।
1: जी,
0: कभी नागालैंड जाएं तो इस मेले का आनंद जरूर लें।
1: जी,
0: तो अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
1: मोरुंग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मोरुंग किसे कहते हैं? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश हमें भेज सकते हैं। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है सुंदरिया।
1: कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक प्यारी गाय सुंदरिया की कहानी बताई गई है और उसके माध्यम से बच्चों को संदेश दिया गया है कि पशुओं में भी भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं।
2: एक समय की बात है, हरियाणा के एक गांव में एक किसान रहता था।

0: नाम था हीरा सिंह। निर्धनता के कारण बड़ी मुश्किल से उसके परिवार का गुजारा चलता था। उसके पास एक गाय थी, नाम था सुंदरिया। उस गाय के कारण हीरा सिंह से गांव वालों को बड़ी ईर्ष्या होती थी। निर्धनता का ये हाल था कि हीरा सिंह सुंदरिया के लिए चारा भी नहीं जुटा पाता था। वो भी गाय को बहुत प्यार करता था। वो चाहता था कि किसी प्रकार गाय को अच्छा चारा मिल सके, लेकिन तंगी पीछा नहीं छोड़ती थी, इसलिए कई बार उसके मन में एक विचार आया।
1: अब तो सुंदरिया को पालना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कहां से आएगा उसके लिए चारा? यहां तो परिवार के खाने के लाले पड़े हुए हैं। सोचता हूं उसे किसी धनी किसान को बेच दूं, कम से कम अच्छा चारा तो मिलेगा उसे।
0: लेकिन हीरा सिंह अपने बड़े बेटे जवाहर सिंह से डरता था, क्योंकि उसे सुंदरिया गाय से बहुत लगाव था। जवाहर सिंह सुंदरिया को प्यार से मौसी बुलाता था। समय बीतता गया और आखिर परिवार की दरिद्रता समाप्त करने के लिए हीरा सिंह नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गया। वहाँ एक सेठ के यहाँ उसे चौकीदार की नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ ने कहा,
2: हीरा सिंह, शहर में आजकल दूध की बड़ी किल्लत हो रही है।
1: जी मालिक, ये बात तो है।
2: पता नहीं जो दूध तुम दुकानों से लाते हो वो ठीक भी है या नहीं, बहुत मिलावट चल रही है। तुम तो हरियाणा के हो, सुना है वहां की गायें बड़ी अच्छी और दुधारू होती हैं। एक काम करो, तुम हमारे लिए किसी अच्छी गाय का प्रबंध कर दो।
1: जी मालिक, कोशिश करता हूँ। वैसे एक गाय है मेरी निगाह में।
2: अच्छा,
1: ऐसी कि साक्षात कामधेनु, दूध भी 15 सेर से ज्यादा ही उतरता है और उसके 200 रुपए तक लग चुके हैं।
2: भाई इतनी अच्छी गाय है तो 10 रुपए अधिक हम दे देंगे। ये लो 100 रुपए, बाकी तुम्हारे आने पर मिल जाएंगे।
1: जी मालिक।
0: दरअसल हीरा सिंह के मन में उसकी प्यारी गाय सुंदरिया ही थी। सोचने लगा, यहाँ आएगी तो अच्छा चारा भी मिलेगा और मैं उसकी सेवा भी कर लूंगा। हीरा सिंह उसी दिन गांव चला गया। जैसे तैसे अपने बेटे जवाहर को समझाया और गाय लेकर दिल्ली आ गया। सेठ जी ने गाय को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। ऐसी स्वस्थ सुंदर गाय उन्होंने पहले न देखी थी। दूसरे दिन सेठ जी ने पास के एक ग्वाले को बुलाया और गाय उसके सुपुर्द कर दी। हीरा सिंह का दिल भरा जा रहा था। उसने सेठ जी से कहा,
1: सेठ जी, गाय की नौकरी पर मुझे ही लगा दीजिए, चाहे पगार कम ही दीजिए।
2: ये नहीं हो सकता हीरा सिंह। भाई हमें तुम जैसा दूसरा ईमानदार और मेहनती चौकीदार कहाँ मिलेगा? तुम्हें तो यहीं ड्योढ़ी पर ही रहना होगा।
0: ग्वाले ने सुंदरिया को ले जाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन गाय टस से मस नहीं हुई। अपनी भोली आंखों से वो हीरा सिंह को ही देख रही थी, मानो कह रही थी, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। हीरा सिंह ने गाय को थपथपाया, पुचकारा और बोल उठा,
1: मेरी प्यारी सुंदरिया, अब चली जाओ ना, मैं यही तो हूं तुम्हारे पास। तुम चिंता ना करो, अरे मैं तुम्हें देखने आता रहूंगा, मेरी प्यारी सुंदरिया।
0: अनमने मन से सुंदरिया चल दी। लेकिन अगले ही दिन कुछ विचित्र हुआ। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाया।
2: हीरा सिंह, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आज गाय का 5 सेर दूध भी नहीं उतरा। तुम तो कहते थे कि 15 सेर से भी ज्यादा दूध मिलेगा।
1: सेठ जी, कल ही तो मैंने पूरा 15 सेर दूध दुहकर आपको दिया था।

0: मैं झूठ क्यों बोलने लगा?
1: ये बात तो है, लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो कल फिर देखते हैं।
0: जी सेठ जी।
2: लेकिन दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सेठ जी को गुस्सा आ गया, बोले,
1: हीरा सिंह, तुमने सचमुच मुझे धोखा दिया है। गाय को ले जाओ और मेरे पैसे वापस करो।
0: लेकिन मालिक, पैसे तो मैं गांव भेज चुका हूँ और उसमें से काफी मकान की मरम्मत में खर्च हो गए। अब पैसे कहाँ से लौटाऊं?
1: तो ठीक है, पैसा मैं तुम्हारी पगार से काट लूंगा।
2: अब रोज रोज यही शिकायत आने लगी। कभी गाय दूध बहुत कम देती, कभी चारे को मुंह तक नहीं लगाती। हाँ, एक बात जरूर थी, जब हीरा सिंह उसे देखने जाता तो बहुत प्रसन्न हो जाती और चारा भी खा लेती। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हीरा सिंह को निहारती रहती, मानो कह रही हो, मुझे वहाँ क्यों भेज दिया। एक रात की बात है, हीरा सिंह अपने कमरे में सो रहा था कि तभी
0: सुंदरिया, तुम? मेरी प्यारी सुंदरिया।
2: वो अपराधी भाव से उसे देख रही थी, मानो कह रही हो, क्षमा करना, मेरा वहां मन नहीं लगा, इसलिए रस्सी तोड़ कर आई हूँ। मुझे तो तुम्हारे संग ही रहना है। उस मूक गाय की आंखों में वेदना थी। हीरा सिंह भाव विभोर हो उठा। वो सुंदरिया के गले से लिपट कर तीर तक सिसकता रहा।
0: अब तू कहीं नहीं जाएगी, हम कहाँ चलेंगे? मैं अपराधी हूँ कि मैंने तुम्हें बेच दिया। लेकिन सुंदरिया, वो तो तुम्हारे भले के लिए ही तो था। लेकिन अब हम साथ रहेंगे। हाँ, मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं करूंगा। मैं सुबह ही सेठ जी से बात करूंगा।
1: आओ हीरा सिंह, कुछ बात बनी? गाय कैसी?
0: सेठ जी, मैं गाय को आज ही गांव ले जाऊंगा।
1: लेकिन उसके लिए जो पैसे तुमने लिए हैं, उनका क्या होगा?
0: सेठ जी, मैं उसे चुकाने के लिए मुफ्त में आपकी चाकरी करने के लिए तैयार हूँ। रुपए जब चुकता हो जाएं, तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं भी छुट्टी कर लूंगा। सुंदरिया का दुख मुझसे नहीं देखा जाता सेठ जी।
2: इतना कहकर उसने गाय की डोर थाम ली और कहा,
0: सेठ जी, गाय को गांव छोड़कर मैं आपकी सेवा में फिर आ जाऊंगा और रुपए वसूल होने तक मैं आपके यहाँ काम करूंगा। नमस्ते।
2: हीरा सिंह ने गाय को पुचकारा, थपथपाया और चलने लगा। सेठ जी का मन भी भर आया था, कहने लगे,
1: हीरा सिंह, इस प्यारी गैया के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अरे, तुमसे यहाँ मुफ्त में काम करवाकर क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? मान लो कि मेरे रुपए भी वसूल हो गए। जाओ हीरा सिंह, जाओ।
0: जी सेठ जी।
1: खुशी से जाओ हीरा सिंह, और हाँ, सुंदरिया का खूब ख्याल रखना, और जब कभी भी समय मिले हमसे मिलने जरूर आना।
0: धन्यवाद सेठ जी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुंदरिया। आशा है कि आपको जरूर ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है मेरा प्यारा दोस्त।
4: नमस्कार श्रोताओं, प्रेरक कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है।
5: ये कहानी है
2: पूर्वोत्तर भारत

0: एक राज्य मेघालय की। लेकिन कहानी सुनने से पहले आइए लेते हैं मेघालय राज्य की थोड़ी जानकारी। मेघालय शब्द दो शब्दों के मेल या संधि से बना है, मेघ और आलय।
1: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो मेघालय का अर्थ हुआ बादलों का घर। साथियों, प्राकृतिक सुंदरता में मेघालय का कोई सानी नहीं है।
0: जी हाँ साथियों, यहाँ जब तब अनायास ही उमड़ते बादल, ऊंचे ऊंचे पर्वत, कल कल करती नदियाँ और हरे भरे जंगल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। गारो, खासी और जयंतिया यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं।
1: मेघालय की राजधानी है शिलांग। ये कहानी शिलांग की है।
0: यूजीन लगभग 15 वर्ष का एक किशोर है। आज शिलांग शहर के पुराने बाजार में यूजीन चला जा रहा था। उसकी आंखें लगातार दुकानों के साइन बोर्ड्स पर ही टिक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई खास दुकान खोज रहा हो।
2: यहीं कहीं तो थी वो दुकान। कहाँ है वो? अब ये तो रही वो फूल वालों की दुकान। उसके बाद हाँ, वो रही।
0: उसे वो दुकान मिल गई थी। साइन बोर्ड पर एक पिल्ले की सुंदर सी तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था, पपीज फॉर सेल।
1: यूजीन को कुत्तों से बहुत लगाव था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो भी एक प्यारा सा कुत्ता पाले जो उसका दोस्त बन सके और उसके साथ खेल सके।
0: बात वास्तव में ये थी कि स्कूल में सहपाठी यूजीन के साथ रहने और खेलने से थोड़ा कतराते थे।
1: कुछ सोचकर वो दुकान में दाखिल हुआ।
2: हाँ, यहाँ से अंदर चलता हूँ। अरे वाह, कितनी सुंदर दुकान है और ले प्यारे प्यारे पपीस भी हैं। आजा आजा।
0: उसने कई बार अपने घर में कहा था कि वो एक प्यारा सा पिल्ला पालना चाहता है, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई थी। किसी पशु को पालना काफी जिम्मेदारी का काम होता है। एक पिल्ले को पालने के लिए यूजीन के माता पिता तैयार नहीं थे।
1: लेकिन अब यूजीन बड़ा हो गया है, अब वो खुद पिल्ले का ध्यान रख सकता है। इसीलिए आखिरकार वो मान ही गए। और आज
0: यूजीन पिल्ला खरीद सकता है अपनी पसंद का। यूजीन सीधा काउंटर पर दुकानदार के पास चला गया और बोला,
2: नमस्ते मैडम।
3: नमस्ते बेटा।
2: मेरा नाम यूजीन है, मैं एक पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उसका दाम बताएंगी?
3: देखो बेटा यूजीन, हमारे पास तो ढेर सारे पपीज हैं, सभी नस्ल के।
2: ओह।
3: लेकिन बेटा ये बताओ, क्या तुम सच में खरीदना चाहते हो?
2: जी बिल्कुल, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं?
3: बेटा बात ये है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ा तो है नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस देखो और चले जाओ?
2: नहीं,
3: क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं, देखने की जिद करते हैं, सारे बिल्ले देखते हैं और अंत में लिए बिना ही चले जाते हैं। इससे हमारा समय बर्बाद होता है ना, तो।
2: नहीं ऐसा नहीं है, मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ, मैं सच में खरीदूंगा। आप उनके दाम बताइए तो सही।
3: यूजीन देखो बेटा, सबसे कम दाम के हमारे पास लगभग 2000 रुपए के पिल्ले हैं। फिर 3,000 और ऐसे ही। मेरा मतलब नस्ल के हिसाब से और भी महंगे हैं।
2: अच्छा,
3: क्या तुम इतना पैसा दे पाओगे?
2: ओहो, अभी इस समय तो मेरे पास 1500 रुपए ही हैं। अब ये तो मैं आपको अभी तुरंत दे सकता हूँ, बाकी पैसे आपको कल दे सकता हूँ। मैं पापा से बात कर चुका हूँ, वो मुझे मेरी पसंद का पिल्ला लेने के लिए कह रहे थे, आप मुझसे कल तक ले लीजिए।
3: बेटा, ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना। समझो मेरी बात, वो क्या है कि अगर अभी तुम्हें पपी चाहिए तो तुम्हें पूरा पैसा भी अभी ही चुकाना होगा, समझे ना?
2: ठीक है मैडम, पर आप मुझे पपी दिखाइए तो सही, मैं आपको इसका मूल्य चुका दूंगा आज ही शाम तक। अब आया हूं तो पसंद करके ही जाऊंगा, अभी 1500 दूंगा और जब बाकी पैसे लाऊंगा तब मैं आपसे पिल्ला ले लूंगा।
3: ठीक है। शेल्बिलिन, शेल्बिलिन, अरे कहाँ हो भाई?
4: हाँ जी, बताइए।
3: देखो सारे पपीज ले आओ, ग्राहक कब से खड़े हैं, ध्यान रखा करो।
4: हाँ हाँ, अभी लाते हैं, बस एक मिनट।
1: थोड़ी ही देर में सामने एक छोटा सा दरवाजा खुला और 5-6 प्यारे प्यारे पिल्ले कूं कूं करते हुए सामने आए। वो ऐसे लग रहे थे मानो ऊन के गोले हों। सब के सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
0: यूजीन ने देखा कि उनमें एक पिल्ला था जो उछल कूद नहीं मचा रहा था। उसके सामने के दोनों पांव तो काम कर रहे थे लेकिन पीछे के दोनों पांव घिसट रहे थे। वो धीरे धीरे घिसटता हुआ सबसे पीछे पीछे आ रहा था।
3: अरे शेल्बिलिन, तुमसे कितनी बार कहा है इसे मत लाया करो, तुम्हें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती क्या? तुम फिर से इस पिल्ले को ले आए, हटाओ इसे।
4: ये तो बहुत शैतान है, पीछे पीछे आ ही जाता है, अभी ले जाता हूँ इसे, चलो शाबाश, वापस चलो।
2: एक मिनट, अब इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चल रहा है? आजा आजा, इधर आ।
3: ये जन्म से ऐसा ही पैदा हुआ है, सही होता तो इसकी बहुत कीमत होती, अब तो बोझ ही है हमारे लिए।
2: मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, कितनी कीमत होगी इसकी?
3: हैं? अच्छा, समझ गई बेटा, समझ गई, मुझसे मजाक कर रहे हो ना? अरे ये देखो, ये वाला कितना सुंदर है, महंगा तो है लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं इस वाले पिल्ले को खरीदने के लिए।
2: नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। वो वाला कितने का है?
3: अरे बेटा, कैसी बातें करते हो, ये बेकार है। अरे बिन पैर का पिल्ला, बहुत से लोग आते हैं इस दुकान में, हम तो इसे छुपाई देते हैं।
2: क्या?
3: वैसे भी ये भला किस काम का, कौन खरीदेगा इसे?
2: मैडम, मैं खरीदूंगा इसे, मैं इसे ही खरीदूंगा।
3: मगर क्यों? तुम्हें पता है ये तुम्हारे साथ खेल नहीं पाएगा, तुम आखिर इसे क्यों खरीदना चाहते हो?
2: मुझे यही चाहिए।
3: देखो बेटा, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम अभी जोश जोश में ऐसा कह रहे हो, शायद इसकी हालत पर तुम्हें दया आ रही होगी, है ना?
2: नहीं।
3: लेकिन सोचो, कुछ ही दिनों में अगर ये बीमार हो गया तो तुम इसे सड़कों पर या कहीं और छोड़ दोगे। और देखो, अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा।
2: जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके साथ, मैं इसके साथ कुछ नहीं होने दूंगा, ये अपने इन्हीं कमजोर पैरों पर चलेगा, चलेगा ना मेरे साथ, बनेगा ना मेरा दोस्त। अल्ले।
3: अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर इसे यूं ही ले जाओ।
2: यूं ही?
3: हाँ, अब इसकी भला क्या कीमत?
2: क्या मतलब? अगर इसकी टांगे खराब हैं, तो क्या इसकी कोई कीमत नहीं है?
3: अच्छा अच्छा समझी समझी, स्वाभिमानी हो, मुफ्त में कुछ नहीं लोगे, अच्छी बात है। तो ऐसा करो, इसके तुम बस 50 रुपए दे दो, खुश?
2: 50 रुपए क्यों? ये तो इसका अपमान हुआ ना। इस नस्ल के दूसरे पिल्लों की जितनी कीमत है वो ही इसकी भी है। मैं आपको इसके पूरे पैसे दूंगा।
3: पर बेटा ये तो
2: बताइए ना, इसकी नस्ल की कितनी कीमत है?
3: बहुत महंगी है, 2000 रुपए। मेरा मतलब है कि
2: तो यही इसकी कीमत भी है। अब ये रहे 1500 रुपए, और अब ये मेरा हुआ, मेरा दोस्त है ना मेरा दोस्त, तू यूजीन का दोस्त, तुम्हें शाम तक ले जाऊंगा दोस्त।
3: देखो बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं और जानवरों के लिए तुम्हारे इस प्यार का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन बेटा क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुमने इस पपी में ऐसा क्या देखा कि तुमने इसको ही चुना, वो भी इतनी कीमत देकर? आखिर क्यों बेटा?
2: आप पूछते हैं क्यों? ये देखिए मैडम, ये देखिए।
1: यूजीन नीचे झुका और उसने धीरे धीरे अपनी पैंट ऊपर उठाई। दुकानदार ने देखा यूजीन का बायां पांव घुटने से कटा हुआ था, नीचे का आधा पैर कृत्रिम था।

0: मैं भी इस पपी की तरह कूद नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, तो हो गया ना मैं भी बेकार बोझ।
1: अरे अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें करते हो, वो तो मैं बस
0: मैं भी मौका मिलते ही सबसे खुलना मिलना चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरी ये कटी टांग ने मुझे सबके बराबर नहीं होने दिया। और 5 साल की उम्र से जानता हूँ मेरे साथ कोई नहीं खेलता, ये सब मैं जानता हूँ, ये सब मुझे पता है
1: बेटा।
0: इसलिए मुझे लगता है कि ये पपी मुझे मेरी कटी टांग से नहीं पहचानेगा, मुझे मेरी दोस्ती और मेरे प्यार से पहचानेगा। मैं नहीं चाहता ये अभी से मेरी तरह आजादी को, प्यार को तरसे। आज से, अभी से ये मेरा हुआ, आजा मेरा दोस्त, आजा।
1: यूजीन बेटा, इस पपी को तुमसे बेहतर भला कौन समझेगा, और शायद ये किसी और के साथ उतना प्यार भी ना पा सके जो इसका अधिकार है। इसे तुम्हें सौंपकर मैं भी निश्चिंत रहूंगी। ये लो, ये अब तुम्हारा हुआ, लो।
0: आजा।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरा प्यारा दोस्त, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है रात्रि के 8 बजे। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा।
6: जमाने की बात करें या प्राचीन काल की बात करें तो तभी से
7: उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो, इसके लिए सरकार तैयार है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में मॉनसून सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया गया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने 2 बार स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू की और हंगामे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि श्री कल्याण बनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों की ओर से महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने की लिखित शिकायत मिली है। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में श्री कल्याण बनर्जी को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जाए, जिसे सदन ने ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया। श्री तेनेटी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद श्री बनर्जी को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने, कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इन मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, जिससे कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे शुरू होते ही विपक्षी दल हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कई विपक्षी सदस्य नीट के विरोध में नारे लिखी तख्तियां लिए हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को बोलने की अनुमति दी। श्री वेणुगोपाल ने कहा कि जिस तरीके से विपक्षी दलों और विद्यार्थियों के साथ पुलिस व्यवहार कर रही है वह बहुत अनुचित है। उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, इसके बाद सदन में पेपर लीक मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कराई जाए। अगर सरकार उनकी मांग स्वीकार करती है तो वे चर्चा के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि पेपर लीक मुद्दा कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का नहीं है, ये सभी लोगों से जुड़ा मसला है, इसके लिए सभी राजनीतिक दल लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के साथ पुलिस ने बर्बरता की, बेटियों के कपड़े फाड़े गए। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री सदन से बाहर नीट मुद्दे पर बयान दे सकते हैं, सदन में आकर इस मसले पर क्यों नहीं बोल सकते। इसके बाद श्री ओम बिरला ने कहा कि कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, ये बातचीत के दौरान तय होगा। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, विपक्षी सदस्य अपने अपने स्थानों पर जाएं और कार्यवाही चलने दें। श्री बिरला की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और हंगामा जारी रहा। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे श्री बिरला ने जैसे

ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की। उससे पहले ही विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन सदस्य उनकी बात पर ध्यान दिए बिना और नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। अध्यक्ष ने सदस्यों से सदन चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि आप प्रश्नकाल चलने दीजिए, प्रश्नकाल के बाद जिन विषयों पर नोटिस आए हैं उन सब पर चर्चा कराई जाएगी, लेकिन ये सब प्रश्नकाल के बाद ही संभव होगा। मैं आपके मुद्दे पर चर्चा देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि सदस्य सदन नहीं चलाना चाहते हैं, ये अच्छा संदेश नहीं है। उनकी किसी बात पर जब सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया तो श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही एक मिनट के भीतर ही 12 बजे तक स्थगित कर दी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर में चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामुदायिक अवसंरचना का सृजन करना है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, महिला केंद्रित पहलों, पेयजल, स्वच्छता, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, पशुपालन तथा अन्य सामुदायिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि पीएमजेवी के एक मांग आधारित योजना है और इस योजना के अंतर्गत निधियों का राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। योजना के अंतर्गत अनुमोदित पात्र परियोजनाओं के लिए निधियां जारी की जाती हैं। विगत 5 वर्षों के दौरान पीएमजेवी के अंतर्गत तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। इस अवधि के दौरान जिले के लिए न तो कोई निधि आवंटित या जारी की गई है और न ही योजना के अंतर्गत जिसे कोई कार्य किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गुन ने एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए आईटी अधिनियम 2000 के तहत 25 फरवरी 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों के भाग 3 में डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता का प्रावधान है। शिकायतों का निपटान आईटी नियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)(ख) अवैध सामग्री को हटाने या उस तक पहुंच को अक्षम करने के लिए मध्यस्थों को अधिसूचना का प्रावधान करती है। उन्होंने कहा कि शिकायतों के आधार पर सरकार ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। सरकार ने पिछले 2 वर्षों में अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने और आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67(क), भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 और स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 के उल्लंघन के लिए भारत में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सार्वजनिक पहुंच से प्रतिबंधित कर दिया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्नपत्र लीक मामले और इसके विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर लगातार 3रे दिन गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच जहां सरकार ने कहा कि वह नीट प्रश्नपत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही 3 बार बाधित होने के बाद अपराह्न 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में तीस्ता नदी पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएचपीसी की निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में 20 लोगों की मौत की जानकारी दी। सदस्यों ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। श्री राधाकृष्णन ने सदन को भारत में स्वदेश में विकसित पहली हाइड्रोजन ईंधन से संचालित रेलगाड़ी के परिचालन शुरू होने की भी जानकारी दी और इसे स्वच्छ, टिकाऊ तथा तकनीकी रूप से उन्नत रेल परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
उन्होंने कहा कि सदन इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और रेल अधिकारियों को बधाई देता है। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे, सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष

अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। श्री खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उन्होंने कहा कि सोमवार को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई से उन्हें बेहद पीड़ा हुई है। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। श्री खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी हुई थी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद जब बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तब उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में हंगामा करने लगे। श्री हरिवंश ने सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि ये प्रश्नकाल है। आजादी के 50 वर्ष पूरे होने पर सदन में ये संकल्प लिया गया था कि किसी भी हालत में प्रश्नकाल और शून्यकाल चलाया जाएगा। अगर सदन अपनी बात पर कायम नहीं रहता है तो जनता के बीच क्या संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि सवालों के जवाब तैयार करने में कितना समय और जनता का धन लगता है, इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने अपील की कि कृपया प्रश्नकाल चलने दें, अपनी बात का असर ना होते देख श्री हरिवंश ने एक मिनट के भीतर ही बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्यवाही को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और आसन की व्यवस्था मिलने पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं और छात्रों के भविष्य के लिए नीट परीक्षा से जुड़े विषय पर चर्चा के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। सरकार ने एक एक करके जो भी कदम उठाए हैं उन्हें देश के सामने रखना हमारा दायित्व है। श्री रिजिजू ने कहा कि उन्होंने कई दलों के सदस्यों से बात की है और वे सभी चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारेबाजी करके सदन को बाधित करती है, जो ठीक नहीं है। श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है, हमने पहले दिन से बात कही है, लेकिन चर्चा नियम के तहत होती है। चर्चा कब होनी है, कितनी लंबी होनी है और किस नियम के तहत होनी है, इसका निर्णय सभापति सभी दलों के नेताओं से बात करने के बाद लेंगे। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि सरकार हर अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने कहा, विपक्ष की ओर इंगित करते हुए कहा कि ये इंडी गठबंधन का व्यवहार बहुत गैर जिम्मेदाराना है। यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है। विपक्ष संसद की मर्यादाओं को तार तार करके प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहा है। सदन के नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार एक पारदर्शी और लोगों के हित में फैसले करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की जो जन विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, वे उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का प्रजातांत्रिक व्यवस्था और उसके मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी सदस्य नियम 267 के तहत कर चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि पिछले 4 दशकों में राज्यसभा में नियम 267 का इस्तेमाल दुर्लभतम मामलों में हुआ है। द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने सवाल किया कि दुर्लभतम मामला क्या होता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जिस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है वह दुर्लभतम ही है। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और उपसभापति हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में नीट प्रश्न पत्र लीक मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच आसन की अनुमति से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, कांग्रेस ने चर्चा की मांग की थी, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, अब विपक्षी सदस्य शर्त रखकर चर्चा टालने की कोशिश कर रहे हैं।
उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपने कहा है कि नियम 267 का उपयोग दुर्लभतम मामलों में किया जाता है, जो घटना हुई है उससे अधिक दुर्लभ से दुर्लभतम मामला भला और क्या हो सकता है, बच्चों पर बल प्रयोग किया गया है। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने हंगामा तेज कर दिया और उपसभापति हरिवंश ने सदन में व्यवस्था बनते न देख बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा की कार्यवाही संचालन संबंधी नियम 267 के तहत सभापति की अनुमति से कोई सदस्य अत्यंत

0: Every government program, Sunya Singh, Boyane, Boyane, Tobriane, Jodane, Motane, Udane, Bertane, Jimdane, Hatikardane, Shabani, Abriko, Kiri, or Hogi.
1: A loon Kiri, or Ungaran Gana,
2: Rom Ramsha.
0: Hey, bye.
1: Kaiko Kaka.
0: Hey, Kaiko Kaka, Kita Dora Bol down, Hela Mark down, and do Hadadni Hundeho.
1: Are Agi.
0: Hey, bye.
1: Kaiko Kaka.
0: Amara gave Ranga Mutubule, Aldek Bejaki, Jika Kerke. मायने बड़ा बुजुर्ग है
1: हाँ
0: आई उनका मान सम्मान करना चाहिए
1: हाँ काका केंतर हागे लोटो जला काका देखो तो भी टाइम है तो आज को जो को काम करा बच और किकर करा मान सम्मान बताओ
0: आज वो भजो किकर करा ओ हो हो आई तो माने दोरी लगे बुजिए ने
1: सॉरी काका सॉरी
0: आ हो ही के देते हो ए बेटा हम तो कहते हैं कि जो घर का बड़ा बुजुर्ग घर में रहे होता है ना
1: हाँ।
0: उसका घर में शांति सुख संपदा सब रहे होती है
1: सही काका
0: है तो बड़ा बुजुर्ग है कोई बूढ़ा ठाडा है तो उनका टाइम पर रोटी जिमाओ टाइम पर उनका कपड़ा धबधा है जो भी है धो दो चाह पानी टाइम पर दे दो तो वो कितना खुश होता है
1: सही काका टाइम दवाई पानी दिलवार बे हजार निरो घर में ना जन काका आप मारी हो और काका बे तो अनुभव री फैक्ट्री है बन की तो एक्सपीरियंस हुए
0: हाँ जो पुराने अंगन जी को गान है जी को बेटा की कितनी नहीं है
1: हाँ पुराना ज्ञान काका कीमती गणो
0: के जी को हई के उनता झूठा नहीं के उनता है
1: हाँ सही बात सही हूँ कौन हर दिन कौन काका सही हो काका सही हो काका
0: तू तो केवे बेटा तू केवे मानवी मने कनी कनी री साजा जन बच गई करू बूढ़ा बाप जी ए भाई वो भाई है फोन पीन पीन कर ले रहा है हाका करी बुझे
1: हेलो
0: आयो
3: पका राम राम
0: ए राम राम जाई राम राम जाई आप रो न्याओ भिजो खोखे नीर गाँव भिजे ओ
3: नाम है बंसी लाल जाखार गाँव सलूंडिया तहसील नोखा
0: ओ हो बंसी जी सलूंडिया में क्वाई करो
3: तरह का अभी तो ऊपरली टाइम आई रही पूरा करा टाइम अभी बैठा बैठा
0: अरे यो मत करो ने उम्र की देख ले लियो
3: उम्र 70 साल आएगी काका
0: जो माला भेरो राम जी को नाम लियो हल्दी जाऊन को नाम मत लियो ना
3: ठीक ठीक
0: और भी जो गांव में परिवार में शिव गया नहीं हो
3: कई कमी कहानी है बरसात की कमी है बरसात नहीं हो रही है
0: ए राम जी गरीब वीरा और राम जी मान ने जो राखो देखो पाचो मानसून छाए जी को करी हो
3: देखो बरसात कर देना तो पड़े राख दे नहीं ना तो मामला गड़बड़ है
0: अरे नहीं नहीं राम जी माते देखो ने जो राखो ए लुनगे
1: कैको काका
0: ए भाई जी तुमसे बात करना चाहता बोलो हेलो
3: हाँ लुन भाई राम राम
1: राम राम सर राम राम सर पगे लागू यो
3: मौत करो फूलो फलो बदो परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन पास हो
1: वा सा वा पण थे या के विचार करो थे तो बार देखो एकदम फ्री हो जाना कटी आगी नेड़ी कथा बसती वे तो बटे जाया करो और ज्ञान लिए करो चोको
3: बेटा फ्री जे कोनी अभी
1: आ फ्री जे कोनी तो बेटा बेटे या हमने के राम जी तो हुन ले याद करा जना
3: हां राम जी ने याद करा बैठे बैठे
1: और पोता उतार की लोटो जलावे टेमो
3: आओ टेमो काम कर रहा है
1: मालका काल दे चिड़ोकला तो कोनी हुए थे
3: नहीं नहीं वेम दिलास के कौन कौन दे चिड़ो रोटी कौन दे
1: हाँ सही इतनी हमल तो है के चिड़िया रोटी दोरी आता है
3: हाँ, तो।
1: और प्रोग्राम केड़ोक लगे
3: प्रोग्राम जोरदार लगे अड्डी का यहाँ को कौन याद लगे दो साल
1: अच्छा एड़े बताओ जो को खारो खारो है पर मेरा फल हुआ जो का मीठा हुआ
3: है बेटा
1: एड़ो किसो रूकड़ो हुआ जो को चाखिया तो खारो हुआ बिंगा फल मीठा हुआ
3: भाई वो तो मन तो नीमड़ो ही लगे
1: अरे नीमड़ो ही हुआ पचे
3: निम्बोली
1: लगे

0: किती मिठी चाला चाला उतरी
1: हाँ मिश्री दो भाग लगा दे रही निमकी निंबोली माने खरी लागे
0: अच्छा आज कहीं होनोला
1: वही दो निमकी निंबोली हेलो
0: काका आयो
2: हाँ
0: ताजी के वही जान दो
2: वही जी हमारी बेटी।

0: राम राम काकू।
1: ए राम राम शाही, राम राम शाही, आपरो न्याओ वीडियो को के नीर गांव वीडियो।
0: गुटा राम बोलो, बिरोजपुर।
1: आओ हो गुटा राम जी, बिरोजपुर में कोई करो
0: किराना की दुकान है काकू।
1: आज ओ हो कैसे चले मारे बीरा?
0: ठीक चाल काकू।
1: आओ ठीक ही चाल नी जी जी, राम जी की दियो। ए रसोई को हगलो हो दो राखो।
0: हगलो राखो काकू।
1: अरे वाइशा वा क्या कहना,
0: थोड़ा इधर लो बात कर मां बाबू है।
1: ए करौ शा
0: राम राम काकू।
1: ए राम राम शाही, राम राम शाही, आपरो नाम बीजो को किनी?
2: शिवलाल नाम है।
1: ओ शिव जी क्या नो?
2: ठीक है बेटा, आपकी कृपा हूँ।
1: ए राम जी की कृपा पूजन मोहन सम्मान जो उम्र की दीख ले लियो।
2: 75।
1: ए चाबिया ध्यान रखे थोरो
2: राखे थे।
1: ए राखनो जी जी पी रहा हूँ। और भी जो गांव में परिवार में सब क्या नहीं हो?
2: सब ठीक है जी।
1: ए तो काको एक सवाल करे, उसका जवाब बिनोगे कहीं?
2: सवाल आए तो बता दे काका जी।
1: ए तो 5 बार बोल दो, कच्चा पापड़ पका पापड़ दे दा बोल।
2: वो तो कौन बोली थे काका जी? जीप दादी है।
1: भाई के कौन बोलू मैं तो?
3: काका भाई जी नहीं बोले जन, अब कड़ा थे ही बोलर दिखाओ देखा। रोजिन रोजिन भाई जी बोलो।
1: अरे मारी जी बात तो
2: लोनी भाई जी
3: है।
2: ओ लोनी भाई जी।
3: हाँ
2: राम राम सा,
3: राम राम सा, राम राम सा।
2: ए काको जी, तले घना लोगा ने आ वो कच्चा पापड़ पक्का पाकड़ कच्चा पाकड़ कर बो रहे गाई है।
3: अरे आज काके के नु बोलो आ तो देखा काके जी बंट खावे के मऊ कौन बोली जे हाथा जोड़ी करे। अब देखो सर टाबर पड़ा वजन तो बोली जे बूढ़ा के तो दो रही है।
2: हाँ दो रही है, पीछे तो डाल गया दो रही बोली जा पूछ दो
3: कहीं काका देख लो धाका बेली कहीं के
1: वे हाजी के होता है। मैं तो हाथ जोड़ता मारू नहीं बोली जाए
2: जरा।
1: ए आज कहीं पुरुषा धन भोगा में
2: आज माता जी को भजन सुना दे जो।
4: काका राम राम।
1: ए राम राम शाही, राम राम शाही, आपरो नाम विदाओ काकिनी गांव भिजो।
4: गांव ढींगसरा है सा।
1: आई ढींगसरो कौन फिर मो?
4: हुड़जा राम जी नायक।
1: ओ हो हुड़जो जी ढींगसरा में कोई करो?
4: बेटा निनाण करा बस आज कौन वे काका?
1: ए करी राम जी मां ने जोरा को देखो पाछो मंडे हमें आज हुआरे में उजी हो, टेंशन मत करो थे।
4: ठीक सा काका।
1: ए थानी प्रोग्राम के शोक लागे?
4: काका फोन को लागे ने कितने दिन यहाँ कपड़ू लाग रहे नहीं है।
1: ए आज आई जो हजावड़ी होगी तो काको एक सवाल करी जवाब करोगे कहीं?
4: हाँ काका आए तो कर दे वहाँ।
1: हाउ जी जी जवाब दीजियो। ए हुनो सा।
4: हाँ सा।
1: ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप पूरे भारत में कहीं पर भी ले जाओ उसकी कीमत नहीं बदलती है?
4: काका आज तो कौन आवे काका? एक गाड़ी हूँ फेंकू।
1: ए फेंको सा।
4: मुझे एक मान को सालो गाड़ी ये आड़ी का आदमी जाने वो कहीं नहीं जानता।
1: आज ए लूंगी। ए भाई ने मैं हराई दी और भाई मैंने हराई दी, आप काई करते है तुम जीता दोनों को?
3: अब काई करो काका, ते दोनों बराबर हो गया। अब हूँ पूछ रहा
1: हूँ। पूछ।
4: हाँ भाई जी पूछो।
3: हेलो।
4: हाँ जी भाई जी राम राम।
3: राम राम साहे, राम राम साहे, बताओ पानी में पीगले और बाद में ठसे रही आड़ी और तो नहीं आवाज़न थे थाल गाँव में के न बस?
4: अरे भाई जी कौन आवे मने तो?
3: आ तो वे रोटी।
4: ओ कोई बात नहीं भाई जी, माड़ो बताई दो भाई जी।
3: बताई दो।
4: नारियल वे नारियल।
3: अरे वासा वाजन काका थई बताई दो बे।
1: ए माला पैसे होई के दुनिया पूरी लड़ ना जी रे।
3: काका रे तो रिपिया वे रिपिया।
4: अनी रिपिया वे अनी।
3: हां कटी ले जो बुलाई बा कीमत बिती रे।
4: ठीक भाई जी ठीक बढ़िया। तो एक मार दोस्त नाम लेनो छ गुमाना राम जी देवासी।
3: अच्छा आज काई हुणोला?
4: माता जी करणी माता रे भजन सुनाए।
1: ए लुनगे
3: काई को काका?
1: ए भाई जी के माता जी रे भजन जाऊं दे तू।
3: ओला

0: हेलो काकू, नमस्कार।
1: ए नमस्कार शाही, रोम रोम शाही, आप रो जाऊं भिजो को किनेर गांव भिजो।
0: अपना गांव तो साहब सोइंत्रा है, सिरगढ़ तहसील में,
1: आओ हो।
0: और गणपत सिंह नाम है साहब।
1: आओ गणपत सिंह जी, कोई काम करो।
0: कहीं कौन साहब, आर तो फ्रीज बैठा था, खेती बाड़ी वगैरह की बाट देख रहा हूँ।
1: खेती बाड़ी की बाट देखो, पहले कहीं करते हो?
0: पहले मैं आर्मी हूँ, फौज हूँ, रिटायर्ड हूँ काकू, बार तो घर ही बैठा हूँ।
1: आओ हो फौजी साहब, जय हिंद।
0: अरे साहब आपने गणे मान, जय हिंद प्रणाम।
1: अरे वाह वाह, और गांव में परिवार में सब क्या आने हो?
0: सब बढ़िया है काकू, कोई आपकी दया हो, सब बढ़िया, रही खुशी है।
1: ऐसे मैंने खोके रामा शमा गई जो?
0: बिल्कुल काकू, हैंगारे आपने ही गणे मान, हमारी तरफ हो रामा शमा।
1: ए लुनगे
2: कई को काका,
1: ए भोजी साहब से बात करो, बोलो जय हिंद।
2: भोजी साहब जय हिंद।
0: जय हिंद लुनी भाई, कहीं हाल चाल है आपरा?
2: मारा तो ठीक है, पर थे फौज में रेवड़ा, पर थाने गांव में अबे की करावड़े, कई काम धंधा करो यो?
0: मैं आवड़ जावे धीरे धीरे, आप मेरे हथियाते हो सब चीज जावे।
2: अच्छा की ढूंगड़ा उंगड़ा लगाओ, खेती बाड़ी करो, कई करो?
0: हाँ अपने गांव में खेती बाड़ी वगैरह कर लो, बरसादरी कर लो, ट्यूबवेलरी कर लो।
2: हाँ क्या करे, फौजी आदमी है, जगह बा ठेर तो आदत पड़ोड़ी वे जू बेगा उठे और काम में लग उड़े रहे।
0: नहीं हावली बढ़िया है साहब, और करनी चाहिए, शरीर वर्जिश बढ़िया बनी उड़ी रहे।
2: एक आड़ी बता दो पुराना टेम वाली,
0: देखो कोशिश करो आज तो।
2: ए पुरानी टेम में बीसी चालती, जन बताओ सात बीसी कितना किला हुए?
0: बीसी चालती लुनी भाई, आए मने तो आइडियो नहीं आवे नो।
2: काका थाना आवे क्यों?
1: ए हम तो भोजी साहब की तरह हार गए, तुम बिता जो।
2: अरे काका बीसी

0: 20 किला जन 7-20 किला 140 किला ओ
1: वाह बीसी मैं देखियो कोई पुराने टाइम में बीसी और भूती है 140 है
2: भोजी साहब ने पूछो फोगा में कई पूछा
0: आज कई होनाला
1: आज मैंने कोई चंपा मेत्री बढ़िया सो गीत सुना ले दो
3: नाम भंवरलाल है बरली से बोल रहा हूँ
2: ओ भंवर जी बरली में कोई करो
3: कहीं करा खेती बाड़ी वाले करा
2: ए खेती बाड़ी मेहरबानी थोड़ो कम है अभी देखो मानसून पाछो छावे ध्यान रखियो
3: हाँ सर
2: ए और भी जो बरली में शिफ्ट किया गयो
3: सब राजी खुशी
2: ए प्रोग्राम कैसे लागे थानी हो
3: प्रोग्राम तो घने बच्चो लगे पर तो फोन कौन लगे आज 15-16 साल आज लगे फोन
2: अरे वाई सेवा की कोनी हजावड़ी होगी और भी जो ताबिया खाई करे हो
3: ताबिया खाई कर घरेलू काम ही करे दुकान को है
2: अरे वाई सेवा झोंकी बात उम्र की दीख ले लियो
3: ए 50-52 साल
2: ओ तो का को एक सवाल करे उसका जवाब बिनो
3: बोलो
2: ए बरसात आवे ने ध्यान तो राखो ना
3: हाँ
2: तो हुनो शा
3: सुनो
2: ए सात रंगी ए घटाई
3: अच्छा
2: सात रंगी ए घटाई बारिश में देती है दी कही क्या होती है बताओ
3: तो काका मेरे को पड़ियो
2: ए लुंगे
0: कई को काका
2: ए भाई को हमने हरा दिया तुम कहीं के उठाओ
0: अरे हूँ अबार भाई जी जीता है तो बच्चा
2: आज ये तो भाई जी को बोलो हेलो
0: हेलो
3: राम
0: राम साहब राम साहब भाई जी यो
3: हाँ
0: अब खाली टाइम हो जन कहीं करो चौके माते तास रमो कहीं राम राम करो
3: राम राम ही करा और कहीं करा
0: तो ये आप का नहीं ने चौके पर तास तो कोई कौन रम में
3: हाँ
0: फालतू बताओ कोई की आगे पाची हुए टाइम खराब हुए
3: नहीं नहीं तास और कोई कौन नहीं था
0: हाँ बढ़िया काम है सर काके आड़ी पूछी ना
3: हाँ
0: तो इंद्र धनुष हुए बरसात का मैं दिखे नहीं हो
3: हाँ वो इंद्र धनुष दिखे
0: आज कहीं होनाला
3: चंपा में तेरे कोई बढ़िया फोन आता
0: काका आयो
2: हाँ बेटा
0: भाई जी कैसे कोई जान दो
2: ओय जा मारी बेटी

0: हे मारे भैया ओ जो भयंगी बोयंगी शिवगी पिशिन को पोगाम
1: हेलो गोरबन
0: ई पोगाम में कोई बाई गीते भजने होना जाऊं ते तू काई गेउता हो
1: तो काका दी इतवार के दिन 12 बजे ले प्रार 1 बजे तई नगर आकाशवाणी फोन करना है।
0: आज फोन करना है नंबर तुम बताओगा का हम बताऊंगा?
1: काका मैं बता दूं।
0: ए बजो
1: 01582
0: हे
1: 240 168।
0: अरे वाह मारी बेटा एला बोल के जीरो नहीं कहते है उसको कहते मिंडी।
1: हाँ मिंडी एको पांचो।
0: हाँ आठो दुओ।
1: हाँ दुओ चोको मिंडी एको चोको आठो।
0: हाँ मारी जी से भूख गया होर लिख ले मारी बेटा। ए भाई।
1: हाँ काका।
0: ए के भाई फोन करिया उनका सुमे की कुमी में ले नहीं सीखा तो उनका पाना बांचो नहीं तुम्हारे काका को हाका करेंगे।
1: नहीं काका बार बांचू।
0: है बांचू बेटा।
1: अनिल भाई है कुकनिया बेरा सरू।
0: अहे।
1: मदन लाल भाई चरकड़ा हूँ।
0: अहे।
1: राजू बेड़ा रजलानी हूँ।
0: अहे।
1: ऊंटा लड़ू है प्रेमा राम जी।
2: इस कार्यक्रम में काका की भूमिका में थी सुभाष कंडारी और लोनी की भूमिका में थी भीकी देवी चौधरी।
0: ओ भाइयो
1: काको काका
0: अब बताओ आज के प्रोग्राम में तकनीकी है ओकाश का है
1: जितेंद्र कुमार।
0: आज के प्रोग्राम के प्रस्तुत गीता
1: अशोक कुमार गोयल।
0: ये दोनों देखो नींबू की हिकेंद्री बनावड़ी तुम्हारे हम ही गिलास करते हैं कि तुमको पाऊंगा जल्दी बोलो। अब बजा मारा संदेश लगाओ।
1: ए स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो।
0: हेलो गोरबन होते ही रहो। जब आप रे खोखे नेर हो गए
1: लून की नदी रहो सीख और करते हैं
0: रोम रोम श्याम।

हेलो गोरबंद, अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों पर आधारित फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी

है रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बेहतर रेल सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीक के कारण रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की गंभीर समस्या से निपटने के महत्व पर भी बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
2: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
3: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मॉनसून सत्र के लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। व्यवधान के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका। दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा। आज लोकसभा की

0: कार्यवाही 3 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के विचार सुने हैं और सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से कार्यवाही बाधित करने के बजाय विस्तृत चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
2: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।
3: हम एडजर्नमेंट मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से एडजर्नमेंट मोशन पे ये इश्यू भी डिस्कस कर सकते हैं।
1: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि सरकार से नीट परीक्षा लीक मामले पर युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिलने पर वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे पत्र में श्री वांगचुक ने कल रात अस्पताल में उनसे मिलने के लिए दोनों मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब तक केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने के आरोप में देश भर में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच से बाहर कर दिया है। लोकसभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गुन ने कहा कि सरकार शिकायतों के आधार पर ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में तोतापुरी आमों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तीनों राज्यों में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की आय में लगातार हो रही गिरावट की शिकायतों के मद्देनजर जारी किए गए हैं। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक में मंदिर प्रबंधन, दान प्रणाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, ट्रस्ट में रिक्त पद भरने और धार्मिक समिति के पुनर्गठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रस्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था पहले की तरह ही अडिग है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या स्थिर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते, पदोन्नति और पेंशन से संबंधित संशोधनों की सिफारिश करेगा। आयोग अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जो 4 वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण पत्रों के साथ सेवामुक्त हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट

0: साइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी इसी तरह के मौसम की स्थिति बने रहने का अनुमान है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: नामची जिले के एनएसपीसी की टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू दल काम कर रही है। कम विजिबिलिटी और मीथेन गैस के लीकेज के वजह से शवों को निकालना मुश्किल हो गया है। इस बीच सिक्किम सरकार ने मरने वालों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को सौंप दिए है। केंद्र सरकार के अलावा सिक्किम सरकार और एनएसपीसी ने मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना के समय टनल के अंदर कम से कम 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: कश्मीर में आज अनंतनाग जिले के लाल चौक इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतक पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी रूप से निर्मित माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस मालवन को शामिल किया है। ये नौका जलमग्न निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के साथ साथ बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी घटकों से निर्मित ये नौका आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बल देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिया शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केज से मुलाकात की। श्री सोनोवाल ने कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए परस्पर संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। इस बीच पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के युशी तनाका से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लक्ष्य सेन ने पहला गेम अपने नाम कर लिया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
2: बम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़ककर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई मिडकैप

0: ये निर्देश दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनाना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। श्रोताओं, सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गुलाम अली की गाई चंद गजलें। कल शब मुझे बेशक्ल की आवाज़ ने चौंका दिया। मैंने कहा, तू कौन है? उसने कहा, आवारगी। ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया है आवारगी में।

लपकती शाख ने, लपकती शाख ने जब सर उठाया, किसी का बागपन याद आया। मुझे वो गुलबदन याद आ गया, बहारों का चमन याद आ गया।

लीजिए सुनिए सुगम संगीत की अगली और आखिरी पेशकश गुलाम अली के स्वर में। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का जमाना याद है।

अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली के स्वर में चंद गजलें, कार्यक्रम सुगम संगीत में। श्रोताओं, ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम।

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मुकेश की आवाज में, शब्द रचना है साजन दहलवी की, संगीत रचना श्याम जी घनश्याम जी की और फिल्म का नाम है ठोकर।

आइए सुना जाए अगला और अंतिम गीत, जिसे लिखा है कमर जलाल आबादी ने। धुन है कल्याण जी आनंद जी की, फिल्म का नाम है छलिया, आवाज आप जानते हैं मुकेश की।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको एक दिलचस्प घटना बताते हैं। एक लड़का था जिसकी बहन की शादी हो रही थी और अभिनेता मोतीलाल चूंकि उसके रिश्तेदार थे इसलिए वो इस शादी में शामिल होने के लिए आए थे। चूंकि माहौल शादी के जश्न का था तो उस लड़के से कहा गया कि तुम गाना गाओ क्योंकि परिवार में सब जानते थे कि इसे गाने का शौक है। उस लड़के ने गाना गाया और सब लोग मुग्ध होकर सुनते रहे। मोतीलाल जी को लगा कि इस लड़के में प्रतिभा है। उन्होंने उसे मुंबई बुला लिया और बस यहां से फिल्म संगीत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया क्योंकि ये नौजवान था मुकेश चंद्र माथुर। जब तल

0: हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास को खंगालें तो जो सबसे रोशन सितारे हमें नजर आते हैं पुरुष गायकों में, वो हैं मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार। जाहिर है कि इन तीन मुख्य सितारों को अलग कर दें तो फिल्म संगीत के न जाने कितने अनमोल गाने फिल्म संगीत के इतिहास से हट जाएंगे। मुकेश चंद्र माथुर के अपने फैन रहे हैं और दुनिया के कोने कोने में रहे हैं। सबसे बढ़िया बात तो यह है कि मुकेश की गायकी में ऐसी सादगी, ऐसी सरलता है कि यूं लगता है जैसे वो हमारे लिए गा रहे हैं और हम उनके साथ गा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि आपके परिवार में अंत्याक्षरी हो रही हो, कोई पिकनिक हो, कोई अन्य उत्सव हो, गाने का माहौल हो, तो कोई ना कोई मुकेश का फैन आपको जरूर मिल जाएगा। यूं लगेगा जैसे मुकेश उसकी आवाज में गा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुकेश जी की जीवन यात्रा।
1: मैंने

0: सपने।
1: मुकेश चंद्र माथुर का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। पिता लाला जोरावर चंद इंजीनियर थे और मां थी चांद रानी। दरअसल पुरानी दिल्ली में पैदा हुए इस लड़के के जहन में संगीत की महक बहुत पहले से थी। बहुत बचपन से इस लड़के ने गुनगुनाना शुरू कर दिया था। ये वो दौर था जब सबसे बड़े गायक थे कुंदन लाल सहगल और सभी उनके दीवाने हुआ करते थे। जाहिर है कि यंग मुकेश भी कुंदन लाल सहगल के फैन थे। दसवीं पास की उस जमाने में इतनी पढ़ाई बहुत मानी जाती थी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग में काम करना शुरू कर दिया। तकरीबन यही दिन थे जब उनकी बहन की शादी हुई और वही घटना हुई जो हमने आपको इस कार्यक्रम की शुरुआत में सुनवाई थी। और इस तरह से मुकेश का मुंबई जाने का रास्ता खुल गया। हुआ यूं कि रंजीत मूवी टोन की ओर से एक विज्ञापन जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि एक नए गायक की तलाश जारी है। और फिर क्या हुआ कि चंदूलाल शाह के जारी किए गए इस विज्ञापन को देखकर मुकेश मोतीलाल जी के पास मुंबई आ गए। यहाँ आने के बाद उन्होंने पंडित जगन्नाथ प्रसाद से संगीत की तालीम लेनी भी शुरू कर दी और उन्होंने बड़ी शिद्दत से ये सपना देखा कि वो गायक अभिनेता बनेंगे। और ऐसा हुआ भी। सन 1941 आया, मुकेश ने अपनी पहली फिल्म साइन की निर्दोष। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया और गाया भी। यानी ये वो पहला

गाना है जो मुकेश जी ने गाया, पर इस गाने में मुकेश जी ने प्लेबैक नहीं किया, यानी किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए गाया। ये गाना था दिल ही बुझा हुआ है तो फसले बहार क्या।

मुकेश जी का पहला प्लेबैक गाना कौन सा था ये भी आपको बता देते हैं। सन 1945 में फिल्म पहली नजर बन रही थी। संगीतकार अनिल बिस्वास से मोतीलाल ने ये कहा कि आप मेरे लिए एक युवा गायक से प्लेबैक करवाएं। मुकेश की आवाज जब अनिल बिस्वास ने सुनी तो उन्हें ये आवाज जम गई और फिर मुकेश ने गाया अपना पहला प्लेबैक सॉन्ग पहली नजर फिल्म में।

जब कुंदनलाल सहगल तक इस गाने की ख्याति पहुंची और उन्होंने इस गाने का रिकॉर्ड सुना तो वो चकित रह गए। उन्होंने तपाक से ये सवाल पूछा, ये गाना मैंने कब गाया? इसके बाद उन्होंने मुकेश को अपने घर बुलवाया और कहा कि तुम गाने गाते जाओ। मुकेश एक के बाद एक कई गाने गाते चले गए और कुंदनलाल सहगल उस जमाने के सुपरस्टार, उस जमाने के लाजवाब गायक और अभिनेता मुकेश को मुग्ध भाव से सुनते चले गए। उन्हें लगा कि यही है मेरा उत्तराधिकारी और उन्होंने अपना रियाज वाला हारमोनियम मुकेश को भेंट कर दिया। ये कुंदनलाल सहगल का मुकेश के लिए आशीर्वाद था। सन 1941 में निर्दोष में अभिनय करने के बाद सन 1943 में मुकेश ने एक और फिल्म में अभिनय किया जिसका नाम था आदाब अर्ज। सन 1953 में उन्होंने फिल्म माशूका में अभिनय किया जहां उनकी हीरोइन थी सुरैया और सन 1951 में मल्हार फिल्म में अभिनय किया। संगीतकार रोशन की ये पहली फिल्म थी।

ये वो दौर था जब मुकेश कुंदन लाल सहगल की छाया में थे, उनके प्रभाव में थे और उनके जैसा गाया करते थे। सन 1948 में नौशाद ने दिलीप कुमार की फिल्म मेला के लिए मुकेश को गाने का मौका दिया और नौशाद के जरिए कुंदन लाल सहगल की छाया से बाहर आया उस जमाने का युवा पार्श्व गायक मुकेश। और फिर बस मुकेश की अपनी शैली तैयार हो गई। सन 1949 तक मुकेश का स्वर कुछ ऐसा हो चुका था।

सन 1948-49 का दौर भारत में फिल्म संगीत के बदल जाने का दौर था। कैसे, आपको बताते हैं। लगातार नई प्रतिभाएं आती चली जा रही थीं और इन नई प्रतिभाओं में शामिल थे युवा संगीतकार शंकर जयकिशन। शंकर सिंह रघुवंशी और जयकिशन पांचाल किस तरह से मिले, ये तो एक इतिहास है। राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म बरसात में संगीत देने का मौका दिया और इस युवा संगीतकार जोड़ी ने कई युवा कलाकारों से गाने गवाए, जिनमें से एक मुकेश भी थे। फिल्म बरसात में मुकेश ने दो गाने गाए थे। एक गाना था ये।

इसके बाद राज कपूर, शंकर जयकिशन और मुकेश की इस तरह से टोली बनी कि एक के बाद एक इनकी फिल्में आती चली गईं और इन तमाम फिल्मों में मुकेश के गाने आते चले गए। यहां तक कि मुकेश का आखिरी गीत भी राज कपूर की ही फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया था। ये कहानी बाद में, पहले आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बताते हैं। जरा सोचिए कि मुकेश ने किस संगीतकार के लिए सबसे ज्यादा गाया होगा। आपने सही सोचा है, शंकर जयकिशन के लिए मुकेश ने कुल 133 फिल्मों में पार्श्व गायन किया, जबकि कल्याण जी आनंद जी के लिए 99 फिल्मों में। जाहिर है कि कल्याण जी आनंद जी भी मुकेश के कम फैन नहीं थे।

चलिए फिर से पीछे चलते हैं, समय के चक्र को घुमाते हैं और पहुंच जाते हैं सन 1948 में। आप सोच रहे होंगे कि यहां हम क्यों आए हैं। दरअसल यहां हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि बरसात वो पहली फिल्म नहीं थी जिसमें मुकेश ने राज कपूर के प्रोडक्शन के लिए गाया था। राम गांगुली के निर्देशन में आग में वो ये गाना गा चुके थे।

अब राज कपूर के साथ मुकेश ने किन किन फिल्मों के लिए गाया, एक के बाद एक लड़ी में फिल्में और गाने पिरोते हुए आज के फनकार कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आप हमारे साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए जरा अपने पैंट को थोड़ा सा ऊपर मोड़ लीजिए, सिर पर एक टोपी पहन लीजिए और सन 1951 में चलकर उछलते हुए मेरे साथ गाए।

1964 में राज कपूर ने अपनी बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म बनाई, जो राज कपूर की पहली कलर फिल्म थी, फिल्म संगम। इस फिल्म में मुकेश ने ये मार्मिक गाना गाया था।

सन 1966 तक हम आ पहुंचे हैं और यहाँ हमारे हाथों में है फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक मारे गए गुलफाम। हमें याद शैलेंद्र की आ रही है जिन्होंने इस पुस्तक पर तीसरी कसम फिल्म बनाई और इस फिल्म में मुकेश ने बड़े मन से गाया।

और फिर सन 1978 मुकेश को अमेरिका की यात्रा पर जाना था और जाने से पहले जो आखिरी गीत उन्होंने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए रिकॉर्ड करवाया वो सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के लिए था।

इस गाने को रिकॉर्ड करने के बाद मुकेश ने एक लंबी उड़ान ली अमेरिका के लिए, और वहां से इससे भी लंबी उड़ान, वो इस फानी दुनिया को अलविदा कह के चले गए। ये बातें हुई राज कपूर और मुकेश के साथ वाले गानों की। लेकिन ऐसा नहीं था कि राज कपूर के लिए सिर्फ उनके प्रोडक्शन में मुकेश ने गाया हो। जरा 1950 में केदार शर्मा की बनाई फिल्म बावरे नैन का ये गाना सुनिए और याद कीजिए नीली आंखों वाले राज कपूर को।

अब आप सोच रहे होंगे ये भी कोई बात हुई कि पूरे आज के फनकार कार्यक्रम में केवल राज कपूर की बातें। अरे नहीं नहीं, ये नाइंसाफी हम नहीं होने देंगे। दिलीप कुमार के लिए जो प्लेबैक मुकेश ने किया वो तो लाजवाब था। फिल्म यहूदी का ये गाना सुनिए, शैलेंद्र के बोल हैं।

लेकिन ऐसा नहीं है कि दिलीप कुमार या मनोज कुमार के लिए ही मुकेश ने प्लेबैक किया हो। याद कीजिए काका राजेश खन्ना को फिल्म मर्यादा में।

जाहिर है कि फिल्मी दुनिया के न जाने कितने नायकों ने पर्दे पर होंठ हिलाए, लेकिन आवाज तो मुकेश की थी, यानी उन्होंने मुकेश के गीत गुनगुनाए। मुकेश को भले ही एक दर्द भरी आवाज कहा जाता हो और रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड के बुक स्टॉल्स पर जो गानों की किताबें मिलती हैं उनके शीर्षक हों मुकेश के दर्द भरे नगमे, लेकिन मुकेश केवल दर्द भरे नगमों के गायक नहीं थे। जब भीगा भीगा मौसम आता है तो भला कौन सा ऐसा मनमौजी व्यक्ति हो जो ये गाना न गुनगुना।

0: सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह।
1: खूबसूरत मौसम में मॉडर्न गर्ल फिल्म का ये गाना भी तो आपको याद आता है ना।
0: ये

यानी हम ये कहना चाहते हैं कि मुकेश ने तरह तरह के गाने गाए। वो केवल एक दर्द भरी आवाज नहीं थे, वो एक जिंदा दिल आवाज थे। मुकेश एक बेमिसाल शख्सियत जिन्होंने हर समय लोगों का भला किया। 27 अगस्त 1976, डेट्रॉइट मिशिगन, एक कॉन्सर्ट चल रहा है और मुकेश गाना गा रहे हैं। पर्दे के पीछे जाते हैं, दिल का दौरा पड़ता है और वो इस अनजान दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं। कॉन्सर्ट जारी रहता है, उनकी आवाज को आगे बढ़ाते हैं उनके बेटे नितिन मुकेश। उसके कुछ दिन बाद मुंबई के एयरपोर्ट पर एक ताबूत उतरता है। एयरपोर्ट पर बेसब्री से